0: शुभ प्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। सुबह के 7 बज चुके हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। आज शक संवत 1948 के आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। तदनुसार 8 अगस्त 2026, आज दिन शनिवार है। आपके स्वास्थ्य और सफलता की शुभकामनाओं के साथ हम आज का प्रसारण शुरू करते हैं।
1: जीवन सौरभ।

0: स्वामी विवेकानंद रोज की तरह अपने पीतल के लोटे को मांज रहे थे। काफी देर तक लोटा मांजने के बाद जब वो उठे तो उनके एक शिष्य ने कहा, आप रोज रोज इतनी देर तक इस लोटे को मांजते हैं, मुझे लगता है इसकी आवश्यकता नहीं है। सप्ताह में एक बार या दो बार मांज लें तो भी काम चलाया जा सकता है, इससे इसकी चमक बहुत फीकी तो नहीं होगी। विवेकानंद ने कहा, बात तो सही ही कहते हो, रोज रोज 5-10 मिनट इसमें बर्बाद ही होते हैं। उसके बाद उन्होंने उसे नहीं मांजा। कुछ दिनों में उस लोटे की चमक फीकी पड़ने लगी। कोई सप्ताह भर बाद स्वामी विवेकानंद ने अपने उसी शिष्य को बुलाया और कहा, तुमने कहा था तो मैंने इसे मांजना छोड़ दिया था, अब आज तुम फुर्सत में हो तो इस लोटे को साफ कर दो। शिष्य ने हामी भरी और कुएं पर चला गया। बहुत देर लोटे को मांजने के बाद भी वो पहले वाली चमक नहीं ला सका। उसने बार बार बार बार प्रयास किया, तब जाकर लोटा कुछ चमका। शिष्य लोटे को लेकर स्वामी विवेकानंद के पास आया। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, इस लोटे से सीखो, जब तक मैं इसे रोज मांजता था ये रोज चमकता रहा। तुमको इसकी रोज की चमक एक सी लगती होगी, लेकिन मैं देख पाता था कि मैं इसको जितना मांजता था ये उतना अधिक चमकता था। हर बार ये पहले से ज्यादा चमकदार हो जाता था। रोज न मांजने के कारण इसकी चमक जाती रही। ठीक ऐसे ही मनुष्य होता है, अगर वो अपने मन को रोज साफ न करे तो संसारी विचारों से उसका मन अपनी चमक खो देता है। ये प्रच्छालन तो रोज करना होता है। जीवन सौरभ।
1: नब्बे 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। और अब जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारा अगला कार्यक्रम होगा वैदिक ऋचाओं पर आधारित अक्षय निधि। उसके बाद सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम 7:15 पर। 8:00 वतन का राग कार्यक्रम में आज हम भारत छोड़ो आंदोलन दिवस पर विशेष कार्यक्रम सुनेंगे। 8:30 पर इतिहास के पन्नों से कार्यक्रम में आज हम गोंड राजा संग्राम शाह के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे। जानकारी देंगे इतिहासविद डॉक्टर पूजा सक्सेना और इनसे बातचीत करेंगे संदीप शर्मा। 9:00 योग संवाद कार्यक्रम में आज विषय रहेगा योग वशिष्ठ से श्री राम को उपदेश हेतु विश्वामित्र जी का अनुरोध। इस विषय पर डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी, जो के जीवन कला विशेषज्ञ हैं, इनसे बातचीत करेंगी सुनीता सिंह। 9:30 पर भारत विभूति कार्यक्रम में आज का विषय है अमन के सिपाही। 10:00 भोपाल में आयोजित ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव की रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण होगा। 11:00 सुर सागर कार्यक्रम में आज हम स्वाति तिवारी और डॉक्टर ऋषि मिश्र का गायन सुनेंगे। और 11:30 पर कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो ये थी जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। 90.8 MHz पर सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है वैदिक ऋचाओं पर आधारित कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 184 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रा वरुणी, देवता हैं अश्विनी कुमार, छंद है त्रिष्टुप।
1: तावामद्य तावपरम हुवे मोच्छन्या मुषसि वहनिरुक्थैहि नासत्या कुह चित संतावरियो दिवो न पाता सुदास्तराय। हे दिव्यलोक के आश्रयभूत सत्यपालक अश्विनी कुमारों, आज हमने आपको आमंत्रित किया है, भविष्य में भी बुलाएंगे। हम अंधकार की समाप्ति पर प्रभात वेला में स्तोत्रगान करते हुए अग्नि प्रदीप्त करते हैं। आप जहां कहीं भी हों, श्रेष्ठ पुरुष और दानवीर के यहां अवश्य पधारें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। अस्मे ऊषु वृषणा मादये था मुत्परणीर हत मूर्म्या मदंता श्रुतम मे अच्छोक्तिभिर् मती नामेष्टा नरा निचेतारा च कर्णैहि। हे नेतृत्व प्रदान करने वाले सामर्थ्यवान अश्विनी कुमारो, आप हमें भली प्रकार आनंदित करें। आप पणियों को समाप्त करें, हमारी अभिव्यक्तियों श्रेष्ठ स्तोत्रों को सुनने की कृपा करें, क्योंकि आप दोनों सुपात्रों को खोजते हैं और उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। श्रिये पूषन्ने शुक्रतेव देवा नासत्या वहतुम सूर्यायाः वचयन्ते वाम ककुहा अप्सु जाता युगा जूर्णेव वरुणस्य भूरेह। हे दानी सत्यनिष्ठ पोषणकर्ता अश्विनी कुमारो, उषा काल में ही रथ पर आरूढ़ होकर यश पाने की कामना से आप दोनों बाण की गति की तरह सरल मार्ग से जाते हैं। उस समय समुद्र से प्राप्त अति विशाल वरुण देव के पुरातन रथ के घोड़ों के समान ही आप दोनों के घोड़े भी प्रशंसित होते हैं। अस्मे सा वाम माध्वी रातिरस्तु स्तोमं हिनोतं मान्यस्य कारोह अनुयद्वाम श्रवस्या सुदानु सुवीर्याय चर्षणयो मदन्ति। हे श्रेष्ठ दानवीर मधुर रसों से युक्त अश्विनी कुमारों, आप दोनों के अनुदान हमें उपलब्ध होते रहे। आप मान्य द्वारा रचित स्तोत्रों को प्रेरित करें, सभी लोग आप दोनों की अनुकूलता प्राप्त कर श्रेष्ठ पराक्रम करने की कामना से आनंदित होते हैं। एशवाम स्तोमो अश्विनावकारी मानेभिर मघवाना सुवृक्ति यातम वर्तिस्तनयायत्मने चागस्त्ये नासत्या मदंता। हे वैभवशाली सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारो, आप दोनों के लिए यह सुंदर स्तोत्र तैयार किए गए हैं। इससे हर्षित होकर आप सपरिवार अगस्त्य ऋषि के घर पधारें। अतारिष्म तमसस्पारमस्य प्रतिवाम स्तोमो अश्विनावधायी एहयातम पथिभिर देवयानैर विद्यामेशम व्रजनम जीरदानुम। हे अश्विनी कुमारो, हम इस अंधकार रूपी अज्ञान से मुक्त हो गए हैं। आप दोनों के लिए ये स्तोत्र गान किए गए हैं। देवतागण जिस मार्ग से चलते हैं, आप उसी मार्ग से चलकर हमारे यहाँ पधारें तथा अन्न बल और विजयश्री हमें शीघ्र प्रदान करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 184 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो 3 बातें हमेशा ध्यान रखें। पहला, आनंद में किसी को वचन ना दे। दूसरा, गुस्से में किसी को उत्तर देने से बचें। और तीसरी बात, मुश्किल के समय धैर्य बनाए रखें। जो लोग इन 3 बातों का ध्यान रखते हैं उनकी कई समस्याएं स्वतः दूर हो जाती है और जीवन में शांति बनी रहती है।

अधिकांश लोग अपनी खुशी की तुलना उस जगह से करते हैं जहां वे अभी तक नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए उपलब्धियां भी उन्हें अधूरी लगती है। लेकिन नजर यदि इस बात पर जाए कि कुछ समय पहले हम कहां थे और आज कहां पहुंच चुके हैं, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। हर छोटा कदम प्रगति है।

भावनाएं हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन्हें हमारे फैसलों का मालिक ना बनाएं। गुस्सा, डर, निराशा कुछ समय के लिए आते हैं, लेकिन यदि हम उसी पल निर्णय लेंगे तो बाद में पछताना पड़ता है। मन को शांत होने का समय दें, भावनाओं को समझना सीखें तो परिस्थितियां बेहतर संभल पाती हैं।

जब लगे कि अब और नहीं हो सकता, उसी समय एक कदम और बढ़ाने का प्रयास करें। बस यही अतिरिक्त प्रयास लोगों को भीड़ से अलग बनाते हैं। असाधारण सफलता चमत्कार से नहीं, हर दिन किए अतिरिक्त प्रयास से मिलती है।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और प्रसन्न रहिए। इन्हीं विचारों के साथ शुरू करते हैं आज का भक्ति संगीत।

ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है। वो हम हैं जो अपनी आंखों पर हाथ धर लेते हैं, फिर रोते रहते हैं कि कितना अंधकार है।

संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और ये आपको ऊंचाई से गिरा भी सकती है। हमेशा अपने दोस्त सोच समझकर बनाएं।

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम 90.8 MHz पर। ये रेडियो आजाद हिंद है। हमारा अगला कार्यक्रम है वतन का राग। आज का कार्यक्रम भारत छोड़ो आंदोलन दिवस पर केंद्रित है।

9 अगस्त 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भारत की जनता की वीरता और साहस की अद्वितीय मिसाल है। ये इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। ब्रिटिश शासन काल में ये वो आंदोलन था जिसमें नेतृत्व विहीन जनता ने अपने बलबूते साहसी प्रतिरोध दर्ज कराकर अंग्रेज नौकरशाही का मनोबल गिरा दिया था। सामाजिक और भौगोलिक दृष्टि से दायरा बहुत बड़ा होने के कारण ये इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। गांधी जी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इच्छा के विरुद्ध जाकर जनता से ये कहने के लिए मजबूर हो गए कि अब वक्त आ गया है कि देश की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए बड़ा संघर्ष किया जाए। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी कि अगर उसने संघर्ष का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। कांग्रेस और नेहरू जानते थे कि गांधी जी की ये चुनौती कोरी नहीं है, वे सचमुच ऐसा कर सकते थे और हार कर नेहरू भी सहमत हो गए और कांग्रेस को स्वीकृति देनी पड़ी। 8 अगस्त का ऐतिहासिक दिन बंबई के ग्वालियर टैंक पर आयोजित सभा में हजारों हजार लोगों की मौजूदगी में गांधी जी ने ऐतिहासिक भाषण दिया। आजादी से कम कुछ भी नहीं, एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र जो मैं आपको देता हूँ, उसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं और अपनी सांस के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। वो मंत्र है, करो या मरो। या तो भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। अपनी गुलामी का स्थायित्व देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। गांधी जी का नारा करो या मरो ये केवल नारा नहीं था, ये वतन को जनता के हवाले कर देने का बुलंद आह्वान था। गांधी जी के चंद वाक्यों ने पूरे भारत की जनता में जोश भर दिया।

भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों को खुले रूप में चेतावनी देने के लिए ये अनुकूल समय था। गांधी जी भी ये मानने लगे थे कि अब बिना संघर्ष के आज़ादी हासिल नहीं की जा सकती। विश्व युद्ध की आड़ लेकर सरकार ने अपने को सख्त से सख्त कानूनों से लैस कर लिया। कीमतें आसमान छूने लगी, मकानों और मोटर वाहनों पर सेना ने कब्जा कर लिया। जनता को ऐसे लगने लगा कि ब्रिटिश हुकूमत की हार होने वाली है। जापानी भारत की ओर बढ़ रहे थे। सुभाष चंद्र बोस के समर्थक ये जानते थे कि जापानी हमले का हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए फायदा उठाया जा सकता है। उधर क्रिप्स समझौते की नाकामयाबी से ब्रिटिश विरोधी लहर दौड़ गई थी। कांग्रेस समिति द्वारा वर्धा की 14 जुलाई 1942 की बैठक में संघर्ष के निर्णय को अपनी स्वीकृति मिली। अगले महीने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की ऐतिहासिक सभा बम्बई के ग्वालियर टैंक में हुई। खुले अधिवेशन में जन समूह उमड़ पड़ा। हजारों हजार की भीड़ के बीच गांधी जी ने भाषण दिया। 9 अगस्त के तड़के ही गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर भेज दिया गया। स्पष्ट था कि सरकार ने दमनपूर्ण कार्यवाही की योजना पूर्व से ही बना ली थी। सरकार के अचानक हमले से देश में तूफान सा आ गया। बम्बई में लाखों लोग ग्वालियर टैंक की ओर उमड़ पड़े। जनता सड़कों पर उतर आई। बड़े बड़े जुलूस निकाले गए। विशाल भीड़ ने पुलिस थानों, डाकघरों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों सहित तमाम सरकारी संपत्तियों को तहस नहस कर दिया। रेल की पटरियां उखाड़ी गईं, टेलीफोन लाइन काट दी गई, पुल उड़ा दिए गए, सार्वजनिक भवनों पर तिरंगा लहराया गया। भूमिगत कार्यकर्ताओं ने अपने को संगठित कर जगह जगह समानांतर सरकारें स्थापित की। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में जनता ने समानांतर सरकार की स्थापना की। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार का गठन कर लिया गया। सतारा में भी सरकार का निर्माण किया गया। बिहार के 80% थानों पर जनता का राज हो गया। कांग्रेस के बड़े नेता तो गिरफ्तार कर लिए गए, परंतु इस बीच भारत छोड़ो आंदोलन का भूमिगत संगठनात्मक ढांचा भी तैयार हो चुका था। आंदोलन की बागडोर राम मनोहर लोहिया सहित अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पुराणिक, बीजू पटनायक, आरपी गोयनका के हाथ में थी। जेल से निकल भागने के बाद जयप्रकाश नारायण जैसे अखिल भारतीय नेता फरार रहते हुए आंदोलन की बागडोर संभाले रहे। कांग्रेस गुप्त रूप से बम्बई शहर के विभिन्न केंद्रों से रेडियो का संचालन कर रही थी। लोहिया रेडियो पर नियमित बोलते थे, ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें कम्युनिस्ट को छोड़कर सभी पार्टियों ने समर्थन दिया था।

सरकार को खुलेआम विद्रोह पर काबू पाने में तकरीबन 2 माह का समय लगा। सरकारी दमन के तहत विद्रोह में शामिल लोगों को कोड़ों से पीटा गया, गांवों में आग लगा दी गई और 60,000 से अधिक लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। लगभग 26,000 लोगों को सजा हुई। इस दौरान सामूहिक जुर्माने के रूप में 90 लाख रुपए वसूले गए। 1943 में गांधी जी ने 21 दिन का उपवास शुरू कर दिया। इसके कारण उनकी जान खतरे में पड़ गई। सरकार ने उन्हें बचाने के बजाय उनके दाह संस्कार का बंदोबस्त कर डाला, पर गांधी जी के समर्थन में एक बार फिर जनता खड़ी हो गई। जगह जगह सामूहिक उपवास किए गए। सरकार के पास हजारों चिट्ठियां भेजी गईं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा, जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम किसी के सामने कैसे झुक सकते हैं। हालात ये थे कि एक तरफ पूरे देश की जनता गांधी जी की जान बचाने की अपील कर रही थी, वहीं सरकार उनके अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गई। हमेशा की तरह वे मौत और विरोधियों को मात देने में कामयाब हुए। बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 को उन्हें रिहा कर दिया गया। उन्होंने आंदोलन वापस नहीं लिया और न दंगों की आलोचना की। इस ऐतिहासिक आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी ये रही कि इसके द्वारा आज़ादी की मांग राष्ट्रीय आंदोलन की पहली मांग बन गई। हालांकि ये आंदोलन भी सरकार की क्रूर दमन नीति का शिकार हुआ, पर इस आंदोलन ने राष्ट्रीय लहर पैदा की और ब्रिटिश हुकूमत को संदेश दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारण जनता को नई ताकत मिली है, वो अब पीछे नहीं लौटेगी। जनता का ये आंदोलन दमन का शिकार होने के बावजूद कामयाब रहा और 15 अगस्त 1947 को भारत ने आज़ादी पाई।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। आज की कड़ी भारत छोड़ो आंदोलन दिवस पर केंद्रित थी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।
1: सन 1498 में जब वास्को डी गामा का छोटा बेड़ा केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर आगे बढ़ा तो वे एक जुनूनी विजन से प्रेरित थे। ईसाई और मसालों की खोज। सदियों से यूरोप में पूर्व में एक खोए हुए ईसाई साम्राज्य की किंवदंतियां प्रचलित थी, जिस पर पौराणिक प्रेस्टर जॉन का शासन था। जब पुर्तगाली मालाबार तट पर पहुंचे तो वे इस उम्मीद में इतने अंधे थे कि वे अपने सामने मौजूद सभ्यता की वास्तविकता को देख ही नहीं पाए। इन प्राचीन विश्वासियों के साथ पहली मुलाकात भारत में नहीं बल्कि अप्रैल 1498 में पूर्वी अफ्रीकी तट पर मालिंदी में हुई थी। वहां पुर्तगालियों की मुलाकात क्रगनौर के 4 जहाजों से हुई। उन पर ऐसे लोग सवार थे जिन्होंने खुद को मसीह का अनुयायी सेंट थॉमस ईसाई बताया। यह समुदाय अपनी जड़ों को प्रेरित थॉमस यानी एपोस्टल थॉमस से जोड़ता था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पहली शताब्दी में भारत आए थे और यहीं बस गए और संभवतः यही उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि पुर्तगालियों का शुरुआती अवलोकन घोर अज्ञानता से भरा था। जब वे कालीकट पहुंचे तो इतिहासकार एल्वारो वेल्हो को पक्का विश्वास था कि उन्होंने एक ईसाई शहर खोज लिया है। मूरो अर्थात मुसलमानों के खिलाफ एक ईसाई सहयोगी खोजने की बेताबी में पुर्तगालियों ने हिंदू मंदिरों को चर्च और स्थानीय धार्मिक रीति रिवाजों को ईसाई अनुष्ठान समझ लिया। जैसे जैसे पुर्तगालियों ने एस्टाडो द इंडिया की स्थापना की, उन्हें समझ आया कि यह समुदाय उनकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल था। उन्होंने क्रगनौर और कोलम जैसे केंद्रों की पहचान की जो सेंट थॉमस ईसाइयों के गढ़ थे। ये समुदाय सदियों से अपने हिंदू और मुस्लिम पड़ोसियों के साथ एक सहजीवी संबंध में रहते थे। उनकी आस्था यूरोप के लैटिन संस्कार ईसाई धर्म से मौलिक रूप से भिन्न थी। इस खोज का दिलचस्प विरोधाभास तब सामने आया जब धार्मिक टकराव शुरू हुआ। पुर्तगाली इन खोए हुए ईसाइयों को खोजने के लिए महासागर पार कर आए थे, लेकिन उन्हें पाने के बाद उन्होंने उनकी आस्था को मान्य और धर्मसम्मत मानने से इनकार कर दिया। पुर्तगालियों की नजर में सेंट थॉमस ईसाई विधर्मी पूर्वी संस्कारों से दूषित थे। 16वीं शताब्दी के मध्य में जेसुइट्स के आगमन और काउंटर रिफॉर्मेशन की उग्र भावना के साथ पुर्तगाली दृष्टिकोण जिज्ञासा से बदलकर सुधार में बदल गया। 1560 तक इंक्विजिशन को गोवा लाया गया और पुर्तगालियों ने सेंट थॉमस ईसाइयों को जबरदस्ती रोम के अधिकार में लाने का प्रयास किया। वह प्राचीन समुदाय जो कभी पुर्तगालियों की यात्रा का औचित्य था, अब उनके आध्यात्मिक अनुशासन का लक्ष्य बन गया। ये कहानी एक डरावना उदाहरण है कि कैसे साम्राज्यवादी आंखें वही ढूंढती है जो वे देखना चाहती है और फिर उसे केवल इसीलिए नष्ट कर देती है क्योंकि वे उनके घर से लाई गई छवि से मेल नहीं खाता।
2: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आज़ाद हिंद है। हमारा अगला कार्यक्रम है इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम में आज हम राजा संग्राम शाह के जीवन के बारे में जानेंगे। जानकारी देंगे इतिहासविद डॉक्टर पूजा सक्सेना और इनसे बातचीत कर रहे हैं संदीप शर्मा।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आपके साथ हूं मैं सुनीता सिंह। प्रस्तुत है कार्यक्रम मध्य भारत के जनजातीय राजवंश और स्थापत्य कला में उनका योगदान। समय की एक सुदीर्घ यात्रा तय करते हुए एक देश, एक समाज की अपनी पहचान बनती है। पीढ़ियों की आवाजाही में कुछ निशान बनते हैं, कुछ निशान छूटते हैं, जो किसी सभ्यता, किसी समाज के होने की गवाही देते हैं। धरती के सीने पर मौन खड़े ये महल, किले, दुर्ग, मंदिर या बावड़ियां कितनी कहानी समेटे हैं। इतिहास इन निशानियों को गौर से देखता है, इन साक्ष्यों को टटोलता है, इनके एकांत में बैठ इन कहानियों को सुनता है और फिर वर्तमान पीढ़ी को सुनाता है। इस तरह किसी देश की सभ्यता और संस्कृति से, उसकी रंगत, उसकी महक से हम परिचित होते हैं। और हमारे देश का तो एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जितना प्राचीन उतना ही व्यापक। अपने इस कार्यक्रम में हम मध्य भारत के जनजातीय राजवंशों के इतिहास और स्थापत्य कला में उनके योगदान पर चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें कि मध्य भारत में मुख्य रूप से चार राज्यवंश हुए हैं। गढ़ा मंडला का गोंड राज्य, देवगढ़ का गोंड राज्य, चंद्रपुर का गोंड राज्य और खेरला का गोंड राज्य। इसके अलावा भी अनेक गोंड रियासतें यहाँ रही हैं। अपनी इस कार्यक्रम श्रृंखला की शुरुआत हम गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश से करने जा रहे हैं। गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश में प्रतापी राजा हुए संग्राम शाह और इसी राजवंश में हुई सुप्रसिद्ध वीरांगना रानी दुर्गावती। तो आइए जानते हैं गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश का इतिहास और स्थापत्य कला में उनके योगदान के विषय में। हमारे बीच हैं पुरातत्वविद सुश्री पूजा सक्सेना। आपको पुरातत्व के क्षेत्र में अध्ययन और संरक्षण का 23 वर्षों का लंबा अनुभव है। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि धर्मपाल शोधपीठ द्वारा पूजा जी की एक पुस्तक का प्रकाशन भी किया गया है, गोंड राजवंशों की स्थापत्य कला, जिसका संपादन किया है प्रोफेसर संतोष कुमार वर्मा ने। नमस्कार पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हम आज गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश की बात करने जा रहे हैं और स्थापत्य कला में उनके योगदान की चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आप ये बताएं कि जो गोंड राजवंश था गढ़ा मंडला का, उसका उद्भव कैसे हुआ?
2: भारत का इतिहास बहुत विस्तृत है और 12वीं सदी में हम देखते हैं कि एक मोड़ आता है
1: जी।
2: और जब मोहम्मद गौरी के आक्रमण दिल्ली पर होते हैं और विदेशी सत्ता काबिज हो जाती है और धीरे धीरे जो है वहाँ बहुत उथल पुथल चलती है, उसी समय मध्य भारत में जहाँ पर 11वीं-12वीं सदी में बहुत से राजपूतों का शासन था, जैसे परमार, प्रतिहार, कलचुरी या चंदेल, उन स्थानों पर जब 13वीं सदी में इनका शासन समाप्त होता है, उसके बाद अचानक से हमें पूरे मध्य भारत से अर्थ है मध्य प्रदेश और उसके आसपास लगे हुए प्रदेश
1: जी,
2: तो इन क्षेत्रों में हमें गोंड राजवंशों का शासन दिखाई देता है, जिसमें से सबसे प्रमुख रहा गढ़ा मंडला का गोंड राज्य। गढ़ा से अर्थ है जबलपुर, मध्य प्रदेश का जबलपुर
1: जी,
2: नर्मदा के किनारे बसा हुआ। तो उनका सबसे प्रतापी राजा संग्राम शाह है। संग्राम शाह से पहले भी जो उनकी वंशावलियां मिलती हैं उसमें 48 राजाओं का जिक्र आता है।
1: अच्छा,
2: तो उसमें 49वें नंबर पर संग्राम शाह हैं।
1: हाँ, अच्छा।
2: और गढ़ा मंडला में जो मदन महल है, जबलपुर के पास में जो मदन महल है, वो उनका प्रमुख केंद्र रहा।
1: तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि गढ़ा मंडला में, जैसे कि आपने बताया कि पहले राजपूतों का शासन था, उनका राज्य था, धीरे धीरे वो सारा राज्य समाप्त हुआ और गोंड जो राजवंश है उसकी स्थापना हुई। तो ये स्थापना कैसे हुई, और विशेष रुचि ये जानने में है कि संग्राम शाह जो हैं, जिनको आपने बताया कि वो 49वें अपनी पीढ़ी के राजा थे, तो वो किस तरह से राजा बने?
2: गढ़ा के गोंड राजवंश की स्थापना के संबंध में बहुत सारी जनश्रुतियां हैं, उसमें से एक जनश्रुति मैं आपको सुनाती हूँ।
1: जी जी।
2: कहानी है कि गढ़ा के राजा ने यह घोषणा की कि वह अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह करना चाहते हैं।
1: अच्छा।
2: और सभी लोग नदी के किनारे पर इकट्ठे हों। तो सब लोग इकट्ठे हुए, तो वहां पर एक सर्वे पाठक नाम का एक ब्राह्मण भी खड़ा था। तो उसने देखा दूर एक गोंड लड़का खड़ा है, जदुराव। हाँ। उसका बाद में नाम यादव राव भी मिलता है
1: जी।
2: तो जदुराव भी खड़ा था, तो सर्वे पाठक ने कहा कि आ जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ। तो जदुराव आकर वहां नदी के किनारे खड़ा हो गया। और जैसा कि शर्त थी कि जिसके सर पर नीलकंठ पक्षी बैठेगा उसी से रत्नावली का विवाह होगा।
1: अच्छा।
2: तो जब नीलकंठ उड़ा तो वो जाकर जदुराव के सर पर बैठ गया।
1: अच्छा।
2: तो जदुराव और रत्नावली की शादी हो गई और बाद में फिर जदुराव गढ़ा का राजा बना।
1: तो ये बहुत ही रोचक सी आपने कहानी बताई। जनजातीय समाज में इस तरह की प्रथाएं होती हैं या इस तरह की शर्तें वो रख लेते हैं कि एक नीलकंठ अगर आपके सर पर आकर बैठेगा तो शादी होगी।
2: इसका मतलब ये है कि जिस पर महादेव की कृपा होगी
1: हाँ,
2: तो वो अगला राजा होगा।
1: ये भाव रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से मतलब गोंड राजवंश की स्थापना होती है। और संग्राम शाह के विषय में आप बताएं कि वो किस तरह से राजा बने।
2: गोंड राजवंश की, गढ़ा के गोंड राजवंश की बहुत सारी हमको वंशावलियां मिली हैं, लिखी हुई वंशावलियां भी हैं और कहावतों में, कहानियों में भी आती हैं। तो उनसे पता चलता है कि 48 राजा हो चुके थे, उसके बाद 49वें राजा संग्राम शाह थे।
1: हाँ।
2: संग्राम शाह के पिता जो थे अर्जुन दास, वो भी राजा रह चुके थे और उनका लगभग 10 वर्षों का शासन है। तो जब संग्राम शाह शासक बने 1510 में।
1: अच्छा।
2: और उनका शासन काल है 1543 तक।
1: अच्छा।
2: तो शुरू में उनका नाम मिलता है आमणदास, जबलपुर में एक जगह भी है जो उनके नाम पर है।
1: अच्छा।
2: और फिर बाद में 1516 के आसपास आते आते उनका नाम मिलता है संग्राम शाह या संग्राम शाही।
1: अच्छा।
2: तो संभवतः उन्होंने कोई संग्राम जीता होगा, इसलिए उनका नाम संग्राम शाही पड़ा।
1: तो ये भी बड़ी रोचक सी बात है कि पहले आमणदास उनका नाम था और संभवतः कोई युद्ध जीता तो संग्राम शाही या संग्राम शाह के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। अच्छा, ये भी पढ़ने में आता है कि उन्होंने सोने का सिक्का चलाया था, तो इस पर आप प्रकाश डालें। बड़ी रोचक बात है कि सोने का सिक्का यानी काफी समृद्धि।
2: जी हाँ। सोने का सिक्का चलाने का अर्थ ही यही है कि वह राज्य बहुत शक्तिशाली और आर्थिक रूप से समृद्ध है, तभी आप सोने का सिक्का चला पाते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो संग्राम शाह के कुछ सोने के सिक्के मिले हैं और इन सिक्कों से कई सारी जानकारियां मिलती हैं।
1: अच्छा।
2: जैसे सिक्के पर संग्राम शाह अपने आप को पुलस्त्य वंशी लिखते हैं।
1: अच्छा।
2: तो पुलस्त्य ऋषि के गोत्र से जो लोग अपना उद्भव मानते हैं वो लोग अपने आप को पुलस्त्य वंशी कहते हैं, तो संभवतः वो पुलस्त्य वंशी रहे हैं।
1: बिल्कुल।
2: दूसरी बात यह है कि सिक्कों पर एक शेर बना हुआ मिलता है और एक पुत्री।
1: अच्छा।
2: पुत्री मतलब एक ह्यूमन फिगर है, लाइन ड्राइंग रहती है, जो बहुत शुभ माना जाता है, इस क्षेत्र में आज भी बनाई जाती है। और साथ ही उनका नाम मिलता है स्वस्ति श्री संग्राम शाही।
1: अच्छा।
2: ये संस्कृत में है।
1: अच्छा।
2: और खास बात यह है कि यही नाम उसी सिक्के पर तेलुगु में भी मिलता है।
1: तेलुगु में?
2: जी हाँ।
1: अच्छा।
2: दो भाषाओं का उपयोग किया है। तो शुरू के विद्वान ये मानते थे कि गोंडों का उद्भव भारत के दक्षिणी भाग से हुआ है, इसलिए यहाँ पर दो भाषाओं का
1: तेलुगु भाषा का भी प्रयोग सिक्कों पर है।
2: जी हाँ। जी। लेकिन बाद के जो विद्वान हैं जैसे डॉक्टर आर के शर्मा हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। दो राज्यों के बीच जब बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध होते हैं तो लेन देन को आसान बनाने के लिए दो भाषाओं का उपयोग किया जाता है।
1: बिल्कुल।
2: तो ये हाँ। भी दिखाता है कि ये आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध होगा।
1: बिल्कुल।
2: और मैं आपको बताऊं कि स्वतंत्रता के कुछ समय बाद ही मदन महल के पास से एक घड़ा निकला था, एक खेत से।
1: अच्छा।
2: तो उसमें बहुत सारे सिक्के निकले थे प्राचीन। तो ये प्राचीन सिक्के विभिन्न राजवंशों के थे, भारत के दूर दूर तक के राजवंशों के। और ये दिखाता है कि जबलपुर उस समय बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा और यहाँ से प्राचीन राजमार्ग निकलता होगा। तो यहाँ पर व्यापारिक संबंध रहे होंगे, तभी यहाँ पर एक साथ बहुत सारे सिक्के
1: अलग अलग जगहों के
2: मिल रहे हैं,
1: वहां से मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से मालूम पड़ता है कि समृद्धि थी उस वक्त, ये मालूम पड़ रहा क्योंकि सोने के सिक्के थे। और जैसा कि आपने बताया कि संस्कृत में उनका नाम लिखा है संग्राम शाह का, तो शिक्षा भी अच्छी मालूम पड़ती है कि शिक्षा की स्थिति भी अच्छी थी। और फिर आपने बताया कि तेलुगु तेलुगु भाषा में भी लिखा है, यानी व्यापारिक संबंध जो थे वो दूर दूर के राज्यों तक भी थे, तो समृद्धि निश्चित तौर पर बहुत अधिक थी, ये तो साबित होता है। अच्छा पूजा जी, हमने जैसा कि बताया ही अपने श्रोताओं को कि इस कार्यक्रम में हम जनजातीय राजवंशों की चर्चा तो करेंगे ही, इसके साथ ही स्थापत्य कला में उनके योगदान की भी हम चर्चा करेंगे। और गढ़ामंडला की जब इस राजवंश की बात चलती है तो मदन महल वो उनका प्रमुख गढ़ था, तो इसके विषय में आप बताइए।
2: मदन महल, अगर अभी भी आप जबलपुर जाएं कभी, तो जब आप जबलपुर से भेड़ाघाट की तरफ जाते हैं तो एक ऐतिहासिक स्मारक आपको रास्ते में दिखाई देता है और ये सभी को आकर्षित करता है। उसका कारण ये है कि ये जो भवन है ये आधा एक गोल चट्टान के ऊपर है और आधा जमीन के ऊपर है।
1: अच्छा।
2: हाँ, तो ये सभी को बहुत आकर्षित करता है। ये असल में पुरानी चौकी है
1: जी।
2: जब कलचुरियों का शासन रहा होगा तो क्या है कि जहां भी इन राजपूतों का शासन था तो ये लोग वन क्षेत्र में हमेशा जनजातियों के प्रमुखों को नियुक्त करते थे।
1: अच्छा।
2: क्योंकि जनजातियों को जंगल का, जीव जंतुओं का बहुत ज्ञान होता है, साथ ही ये लोग सुरक्षा भी करते थे, जो व्यापारी काफिले जाते थे उनकी, तो जनजातियां ही वन क्षेत्र को संभालती थी। तो ये जो मदन महल है ये भी एक चौकी की तरह रहा होगा, और संभवतः इसका नाम जो पड़ा मदन महल वो मदन शाही के नाम पर पड़ा होगा, क्योंकि जो गोंड राजवंशों की हम वंशावली देखते हैं उसमें एक नाम आता है मदन शाही, जो कि 1116 के आसपास होंगे
1: जी।
2: तो संभवतः वो यहाँ के प्रमुख रहे होंगे इस चौकी के, तो उनके नाम पर मदन महल पड़ा।
1: आपका कहना ये है कि जो वनांचल थे, जो वन क्षेत्र था
2: जी
1: कलचुरियों के राज में, उसकी रक्षा के लिए ये जनजातीय समाज वहाँ था और मदन शाही के नाम पर मदन महल ये नाम पड़ा है। और वास्तव में जबलपुर के आसपास से आप जब निकलते हैं तो मदन महल की चर्चा होती ही है, लेकिन इस तरह से उसको जोड़कर नहीं देख पाते हम। अच्छा, संग्राम शाह के बावन गढ़ की भी बहुत चर्चा है, तो इस पर भी आप विस्तार से प्रकाश डालें हम चाहते हैं हमारे श्रोताओं के लिए।
2: एक कहावत है, आमन बुद्ध बावन गढ़ा, यानी कि आमनदास, जैसा कि मैंने कहा संग्राम शाह का नाम था, तो संग्राम शाह के बावन गढ़। बावन गढ़ यहाँ से मतलब है किला, फोर्ट।
1: अच्छा।
2: तो 52 फोर्ट्स जिसके हों वो बहुत शक्तिशाली राजा होगा। तो ये किले दिखाते हैं कि आपकी कितनी अच्छी प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं। तो बावन गढ़ उनके पास था। जो संग्राम शाह के अधिकार क्षेत्र था वो बहुत विस्तृत था, उसमें मध्य प्रदेश का कुछ भाग, कुछ महाराष्ट्र का और कुछ छत्तीसगढ़ का आता था।
1: अच्छा।
2: तो आज अगर हम इसको जिलों में देखें, मध्य प्रदेश में जबलपुर, मंडला, दमोह, बालाघाट, कवर्धा, डिंडोरी, नर्मदापुरम, सिवनी, नरसिंहपुर, पन्ना, सागर, बिलासपुर अब छत्तीसगढ़ में, और नागपुर, ये सब संग्राम शाह के यहाँ पर गढ़ मिलते हैं,
1: किले मिलते हैं।
2: तो बहुत ही ये दिखाता है कि उनके बहुत स्ट्रॉन्ग अधिकार रहा है। तो इन बावन गढ़ों के नाम भी मिलते हैं, हालांकि उसकी सूची बहुत लंबी है। पर उसमें से जैसे सिंगौरगढ़ है, चौरागढ़ है, गौरझामर, खिमलासा, रहली, राहतगढ़, मड़िया दो, गढ़ा कोटा, ये इस तरीके के कुछ बहुत प्रमुख किले उनके रहे।
1: जी जी। तो आपने सिंगौरगढ़ का नाम लिया तो मेरी रुचि उस ओर हुई कि हमें मतलब विस्तार से बताइए इस किले के बारे में।
2: सिंगौरगढ़ को सबसे ज्यादा प्रमुखता संग्राम शाह के समय में ही मिली। सिंगौरगढ़ आजकल दमोह जिले में है, मध्य प्रदेश के
1: जी।
2: आज भी यहाँ तक पहुँचना बड़ा दुर्लभ है। शहर से आप 10-15 किलोमीटर अंदर चले जाते हैं, एकदम सुनसान जंगली जंगल में, तब आप जाके सिंगौरगढ़ पहुंचते हैं। तो ये बड़ा दुर्गम किला रहा होगा। किला एक ऊंची पहाड़ी पर है, फिर चारों तरफ से किले की सुरक्षा दीवारें हैं, लेकिन खास बात क्या है जो गोंडों की सुरक्षा व्यवस्था में होती है कि इस पहाड़ी के चारों ओर भी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, यानी कि इस पहाड़ी को चारों ओर से ऊंची ऊंची पहाड़ियों ने घेरा हुआ है। और फिर इन पहाड़ियों के बाद एक घना जंगल है। आज उसका नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के ऊपर वह है, वीरांगना रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
1: जी।
2: यानी कि दुर्ग तक कोई सेना पहुंचना चाहती है तो उसको पहले तो एक घना जंगल पार करना होगा जिसमें जंगली जानवर भी होंगे, और उसके बाद कई नदी नाले, और उसके बाद ये ऊंची पहाड़ियां जो चारों ओर से घेरी हुई हैं, और इन पहाड़ियों के ऊपर भी फोर्टिफिकेशन वॉल बनाई हुई है, सुरक्षा दीवार बनाई हुई है।
1: अच्छा।
2: तो अगर कोई सेना इसको पार भी कर जाती है तो आगे जाके आपको सामना करना पड़ेगा जो मुख्य पहाड़ी है उसके नीचे एक पश्चिमी ओर बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है जिसे गंगौरगढ़ तालाब कहते हैं।
1: अच्छा।
2: तो ये तालाब मुख्य द्वार के तक आया करता था, जैसे खाई होती है तो खाई भी पार करनी पड़ेगी और फिर कहीं जाके आप ऊंची पहाड़ी पर जब चढ़ना शुरू करोगे तो पहला दरवाजा आएगा जिसको हाथी दरवाजा कहते हैं, फिर एकदम खड़ी चढ़ाई आएगी, उस पर कई सीढ़ियां चढ़ के आप दूसरा दरवाजा अगर पार कर लेते हो, ये सुरक्षा चौकी है, उसको भी अगर आपने पार कर लिया क्योंकि चारों ओर से दीवार से भी घिरा हुआ है, और तब आप जाके किले के अंदर पहुंचते हो।
1: क्या बात है।
2: तो जब आप किले के अंदर पहुंच जाते हो तो एक विशाल तालाब दिखाई देता है जो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम टैंक है। ये लगभग 100 मीटर से ज्यादा लंबा और 60 मीटर से ज्यादा चौड़ा और काफी गहरा है।
1: अच्छा।
2: तो खास बात क्या है कि इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी।
1: अच्छा।
2: यानी कि किले के लिए जरूरत होती है कुछ चीजों की, पानी, खाना और सेना और हिम्मत। तो पानी खत्म ना हो जाए इसके लिए साल भर, जब बारिश होती थी तो साल भर का पानी टैंक में इकट्ठा कर लिया जाता था, उसके लिए वहां पर कई सारी नालियां बनी, पक्की नालियां बनी हुई हैं। फिर हम आगे जाते हैं तो हमको रानी महल मिलता है। रानी महल में एक मुख्य हॉल है बीच में और उसके चारों तरफ गलियारे हैं, कक्ष हैं, ये 2 मंजिला है तो बहुत सुंदर है। उसके आसपास कुछ मूर्तियां रखी हुई हैं, कलचुरी काल की कुछ मूर्तियां दिखाई देती हैं और कुछ गोंड काल की हैं।
1: तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया कि क्या चौकस सुरक्षा व्यवस्था, और अगर किले तक पहुंचना है तो कितनी कठिनाइयों के बाद आप पहुंचेंगे, और फिर उतना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी वहां देख पा रहे हैं, जिसकी बात आज की जा रही है, आज हम चर्चा करते हैं और इसका प्रचार प्रसार करते हैं कि आप कीजिए पानी बोइए तो ये उस वक्त कर रहे थे संग्राम शाह के समय में। अच्छा पूजा जी, जबलपुर में ही बाजना मठ भी है तो हम चाहते हैं कि इसके विषय में भी आप विस्तार से बताएं।
2: जबलपुर में एक टेकरी है यानी कम ऊंची पहाड़ी, उस पर बाजना मठ है। बाजना मठ में बटुक भैरव की एक छोटी सी मूर्ति है।
1: अच्छा।
2: ऐसा माना जाता है कि बाजना मठ का निर्माण संग्राम शाह ने ही किया और यहाँ तांत्रिक साधना होती थी, ये मठ। अच्छा। था। इस बाजना मठ में एक कमरा है, कमरे में एक ही प्रवेश द्वार है, खिड़कियां नहीं है और ऊपर गुंबजाकार छत है, साथ में गलियारा भी रहा होगा जो अब नहीं है। तो मठ जो होते हैं यहाँ आचार्य रहते हैं।
1: अच्छा।
2: और वो आचार्य अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, ग्रंथों की रचना करते हैं, इस तरीके के कार्य मठों में हुआ करते थे तो यहाँ पर भी हुआ करते होंगे। तो हम देखते हैं कि संग्राम शाह खुद भी संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने खुद रस रत्न माला नामक एक ग्रंथ लिखा है।
1: अच्छा।
2: और उसके आखिरी पन्ने पर उनका नाम भी उन्होंने लिखा है।
1: जी। अच्छा, अच्छा।
2: तो संग्राम शाह ने बहुत से अन्य विद्वानों को भी प्रश्रय दिया, खासकर इस समय मैथिल ब्राह्मण जो हुआ करते थे उनका बड़ा बोलबाला था, तो उन्होंने कई मैथिल ब्राह्मणों को जबलपुर में बुलवाया और उनसे काफी ग्रंथों की रचनाएं भी करवाई। तो उसमें एक हुए हैं दामोदर ठाकुर, उन्होंने काफी ग्रंथ लिखे हैं और एक ग्रंथ लिखा है संग्राम शाही विवेक दीपिका, जो कि संग्राम शाह के ऊपर ही है। और इसके साथ में दूसरे जो बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए उनका नाम है महेश ठाकुर।
1: अच्छा।
2: और उनके भी कई ग्रंथ हैं, और संग्राम शाह की जो पत्नी थी उन्होंने महेश ठाकुर को विष्णुपुर नाम का एक ग्राम दान दिया था।
1: अच्छा।
2: जो उनके योगदान के लिए रहा होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बाजना मठ के विषय में भी बताया और संग्राम शाह जी की सांस्कृतिक साहित्यिक अभिरुचि के विषय में भी बताया कि वो खुद संस्कृत के ज्ञाता थे और बहुत से साहित्यकारों को प्रश्रय भी था उनके राजवंश में। मध्य भारत के जनजातीय राजवंश और स्थापत्य कला में उनके योगदान, इस श्रृंखला के अंतर्गत गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश पर हमने चर्चा की, संग्राम शाह की चर्चा की और उनके स्थापत्य में उनके योगदान की भी हमने कुछ बात की है। और ये हमारी श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी और अपने श्रोताओं को हम बता दें कि इस कार्यक्रम के अगले भाग में हम चर्चा करेंगे वीरांगना रानी दुर्गावती की। पूजा जी, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुई, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
1: तो श्रोताओं, मध्य भारत के जनजातीय राजवंश और स्थापत्य कला में उनका योगदान, इस श्रृंखला के अंतर्गत गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश पर हमने चर्चा की, संग्राम शाह की चर्चा हुई। बहुत जल्द इस कार्यक्रम के अगले अंक के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से, जिसमें आज हमने गोंड राजा संग्राम शाह के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुना। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। हमारा अगला कार्यक्रम है योग संवाद। इस कार्यक्रम में आज का विषय है योग वशिष्ठ। जानकारी देंगे जीवन कला विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी और उनसे बातचीत करेंगी सुनीता सिंह।
1: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, वो कोई सौभाग्य क्षण ही होता है जब जीवन से जुड़े प्रश्न मन को इतना आंदोलित कर देते हैं कि संसार का समस्त वैभव, सामर्थ्य और आकर्षण मन को संतोष नहीं दे पाता है। लहरों की तरह प्रश्न जीवन तट से टकराते रहते हैं और मनुष्य के भीतर समुद्र जैसा शोर गूंजता रहता है। लेकिन विशेष बात यह है कि यही वो समय होता है जब ज्ञान का द्वार खुलता है और उस द्वार तक पहुंचाने के लिए नियति स्वयं गुरु का मार्ग प्रशस्त करती है। योग वासिष्ठ का आरंभ भी एक ऐसे ही अद्भुत क्षण से होता है। अयोध्या के राजकुमार श्री राम तीर्थ यात्रा से लौटकर गहन वैराग्य में डूबे हुए हैं। उनके अंतर्मन की पीड़ा को महर्षि विश्वामित्र पहचान लेते हैं। वो जानते हैं कि ये विषाद नहीं है, सत्य की खोज है। ये मौन नहीं है, आत्मबोध की पुकार है। इसलिए वो कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से आग्रह करते हैं कि वो युवराज श्री राम के संशयों का निवारण करें और उन्हें आत्मज्ञान का अमृत प्रदान करें। यहीं से आरंभ होती है गुरु और शिष्य के बीच की वो दिव्य संवाद धारा जिसने युगों युगों से अनगिनत साधकों के जीवन को आलोकित किया है। आइए योग संवाद में आज की चर्चा आरंभ करें, योग वासिष्ठ के पन्ने पलटें और उस बिंदु पर पहुंचें जहां महर्षि विश्वामित्र श्री राम को उपदेश देने हेतु महर्षि वशिष्ठ से अनुरोध कर रहे हैं। हमेशा की तरह इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: भगवान श्री राम तीर्थ यात्रा करके लौटे हैं, संसार की नश्वरता और सुख दुख को देखा है, जीवन मृत्यु को देखा है, मोह को भी बहुत निकट से देखा है
1: जी।
0: और उनके भीतर वैराग्य का उदय हुआ है और महर्षि विश्वामित्र ये बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ये जो श्री राम की उदासी है ये कोई साधारण उदासी नहीं है, बल्कि ये आत्मज्ञान की एक पुकार है। तो इस बात को विश्वामित्र जी किस तरह से देख रहे हैं? क्या आत्मज्ञान के लिए पात्रता भी आवश्यक है?
1: बिल्कुल, आपने जब ये बात कही तो मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में विश्वामित्र जी ने राम जी को सुखदेव जी का वृतांत सुनाया। उसमें वो कहते हैं कि सुखदेव जी ने अपने विवेक से उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया था जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद किसी और ज्ञान की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है। बावजूद इसके सुखदेव जी को शांति नहीं मिली और संसार को देख करके उन्होंने अपने पिता से प्रश्न किया। पिता ने भी वही उत्तर दिया जो उन्होंने अपने विवेक से जाना था
0: जी।
1: उसके बाद भी शांति नहीं मिली, क्योंकि इसके पीछे कारण यह है कि उनके अंदर जो पिता होने का जो भाव था कि ये मेरे पिता हैं, तो वो ज्ञान ग्राह्य नहीं हो पाया।
0: अच्छा।
1: कई बार आप देखिएगा कि ज्ञान की स्थिति ऐसी होती है कि जो हम अपने अनुभव से प्राप्त करते हैं उन अनुभवों को हम स्वीकारने की बजाय हम दूसरों के द्वारा बताए गए ज्ञान पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हाँ, अपने जीवन के अनुभव पर हम बहुत नहीं ठहरते। तो ऐसे में जब ये जाते हैं जनक जी के पास, तो जनक जी सबसे पहले इनकी परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में वो देखते हैं कि पहले उनकी अवहेलना करते हैं कि ठीक है, उनको द्वार पर खड़े रहने दो
0: जी जी।
1: फिर उनको अंदर बुलाते हैं आंगन में, जहां पर अब राज्य वैभव सारा मिलता है। एक तरफ त्याग है, दूसरी तरफ भोग है, और इन दोनों में उनके चित्त की स्थिरता बनी हुई है। और जब ये चित्त की दोनों स्थितियों में स्थिरता बनी है, तब उनको वो अंतःपुर में बुलाते हैं जहां पर उनसे वो संवाद कर रहे हैं जनक जी कि अब बताइए क्या है। तो वो जनक जी से भी वही प्रश्न करते हैं जिस प्रश्न को उन्होंने अपने पिताजी से किया। तो जनक जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आपको जो जानने योग्य है वो जान लिया है आपने, आप पूर्ण काम हो चुके हैं। अब आप इस संसार में जितने भी दृश्य पदार्थ हैं, उन दृश्य पदार्थों के प्रति आपका कोई आकर्षण नहीं है, यही इस बात का प्रमाण है कि आपने ज्ञेय को जान लिया, जो जानने योग्य है वो जान लिया। ऐसी ही स्थिति राम जी की वो कह रहे हैं विश्वामित्र जी। राम जी को कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, राम जी ने ज्ञातव्य वस्तु को पूर्णतः जान लिया है। जितने भी वहां मुनीश्वर मौजूद हैं, उनसे विश्वामित्र जी राम जी के बारे में कह रहे हैं कि जान लिया है, क्योंकि इन शुद्ध बुद्धि वाले राम को भोग अच्छे नहीं लगते। अब एक बात देखिए कि अगर भोग का सत्य व्यक्ति को पता चल जाए तो आप देखिए जिस तरह से संसार में लोग भोगों के पीछे बेहोश होकर के कह सकते हैं भाग रहे हैं, तो वो जानेंगे कि ये भोग जैसे हविष की भांति है, जैसे आप यज्ञ में हविष डालते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती है, ऐसे ही संसार के जो भोग हैं ये और प्रज्वलित होते हैं, न कि शांत होते हैं। तो ऐसे में किसी व्यक्ति का पूर्ण सत्य को जान लेने का आधार ही यही है कि संसार के भोगों के प्रति वो आकर्षित है कि नहीं है, या संसारेतर जैसे किसी भी प्रकार की कामना अगर आपके मन में शेष है तो इसका मतलब यह है कि आपने कामनाओं के बढ़ने के सत्य को नहीं जाना कि कामनाएं कभी शांत नहीं होती बल्कि और प्रज्वलित होती हैं, वो यज्ञ के अग्नि की भांति जब उसमें हविष पड़ता है। तो कहते हैं कि राम ने जान लिया और राम की शुद्ध बुद्धि है, वे इन्हें रोग के समान प्रतीत होते हैं। भोग रोग के समान जब प्रतीत होने लगे तो इसका मतलब यह है कि भोगों का वो सत्य आपके सामने उद्घाटित हो चुका है, जिस सत्य को नहीं जानने के कारण लोग भोगों के पीछे अपने जीवन को तबाह कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम लोग कहते हैं कि समा और परवाने की बात, कि वो आकर के दिए पर जल जाता है, तमाम जले हुए लोगों को देखता है फिर भी वो जान नहीं पाता, तो ऐसे ही इंसान भोगों में जी लिप्त रह करके भी उसी को शांत करने के लिए उसी का सहारा ले रहा है कि फिर से वो सोचता है कि मैं और कोई हविष डाल करके उस अग्नि को शांत कर दूंगा, जबकि भोगों की अग्नि भोगों से कभी शांत नहीं होती।
0: तो ये जानना आवश्यक है कि जो भोग है वो एक तरह का रोग है।
1: हाँ, भोग रोग है, लेकिन ये बात वही जान सकते हैं जिनकी बुद्धि राम की तरह शुद्ध हो गई है। अशुद्ध बुद्धि से इसका ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि भोग बुद्धि को अशुद्ध करते हैं। भोगों के प्रभाव से अशुद्ध हुई बुद्धि में ये ज्ञान उपजेगा ही नहीं कि भोग रोग है।
0: जी जी बिल्कुल,
1: वो तो भोग योग बन जाएगा उनके लिए। जी
0: जी। तो अच्छा, भगवान श्री राम ने भव बंधन को देखा है, जो संसार में जिस तरह से वो लिप्त हैं ये देखा है, तो इसी बात से वो उद्वेलित भी हैं।
1: जी,
0: तो संसार का जो बंधन है कैसे क्षीण होता है?
1: भोगों के चिंतन से अज्ञान जनित बंधन दृढ़ होता है। अब देखिए, मैंने हम लोग बात की कि अज्ञान जनित बंधन, बंधन हमेशा अज्ञान जनित है, बंधन कभी ज्ञान के साथ नहीं टिकता। ठीक वैसे ही जैसे हजारों साल का अंधेरा प्रकाश के सामने खड़ा नहीं हो सकता कि आप वो कहे कि नहीं, हजारों साल से मेरा साम्राज्य है, अभी अभी आप आए हैं, कैसे हम चले जाएं। तो ऐसे ही ज्ञान के होते ही बंधन क्षीण हो जाता है, यानी बंधन हमेशा अज्ञान से ही जन्म लेगा, इसीलिए अज्ञान जनित कहलाता है। और अज्ञान जनित बंधन अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में है तो उसकी भोग में आकांक्षा बनी रहेगी, कामना बनी रहेगी, वो अनासक्त नहीं हो सकता। हाँ। वो हमेशा उसकी आसक्ति बनी रहेगी, और भोग वासना के शांत हो जाने पर संसार बंधन क्षीण हो जाता है। ये राम जी ने देखा है, और राम जी ने संसार में जो जितने भी लोग लगे उनको जो कर्म करते हुए भी दुख से मुक्त नहीं दिखाई दिए, उनके मूल में यही कारण था कि वो कर्म किसी भोग की आकांक्षा में कर रहे थे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा मां फलेशु कदाचना, क्योंकि जब फल की कामना से तुम कर्म करोगे तो वो कर्म ही तुम्हारे बंधन का कारण बनेगा, और जब फल के भोग की वासना क्षीण होगी तो वो स्वयमेव आपके कर्म का परिणाम, वो फल बनेगा ही बनेगा, बिना चाहे ही आपको मिलेगा। इसलिए आपने सुना होगा वो एक लोकोक्ति है ये कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो कहते ना कि अगर आपके अंदर से मांग खत्म हो जाए तो वो समस्त जिसकी चाह आपको है वो अपने आप पूरी हो जाती है, लेकिन मांग के रहते ही उसमें बंधन खड़ा होगा, बैरियर खड़ा होगा।
0: अच्छा, इस बंधन की बात हो रही है तो मेरे मन में ये सवाल आता है कि बंधन और मोक्ष का कोई संबंध है आपस में, क्या आशय है?
1: शंकराचार्य जी थे, आदिगुरु शंकराचार्य जी, जब वो निर्वाण शतकम लिखते हैं तो उसमें कंथ कहते हैं कि न बंधन न मुक्ति, यानी बंधन नहीं तो मुक्ति नहीं, बंधन और मोक्ष ये दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं। जिस व्यक्ति ने बंधन को अपने जीवन में अनुभव किया वही मोक्ष का अनुगामी होगा। बंधन जब महसूस होगा, यानी जब भोग बंधन स्वरूप दिखाई देने लगे, तो निश्चित ही आप ये मान लें कि उन भोगों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।
0: जी, जी।
1: लेकिन जब तक भोग योग बना रहेगा, जब तक भोगों को पाने की कामना बनी रहेगी, तब तक व्यक्ति कभी भी बंधन से मुक्त नहीं होगा। विश्वामित्र जी कहते हैं कि श्री राम विद्वान लोग भोग वासना के क्षय को ही मोक्ष कहते हैं। विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो तत्वज्ञ हैं, तत्वदर्शी हैं, वो भोग वासना का क्षय होना ही मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कुछ और नहीं है, भोग वासना का क्षय मोक्ष है। कहते हैं मोह का क्षय होना मोक्ष है।
0: जबकि आम सांसारिक जो मनुष्य है वो क्या सोचता है कि जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्ति ही मोक्ष है।
1: अब जन्म मृत्यु भी तो भोग का परिणाम है, भोग के लिए मिला हुआ है। आप देखिए जो जाति आयु और भोग जो योग में शब्द आता है, जाति मतलब होता है जन्म, कि व्यक्ति का जन्म किसी अतृप्त भोग के कामना की वजह से यहाँ जन्म होता है और पूरे जीवन जब तक उसकी आयु पूर्ण नहीं होती है वो उन भोगों में संलग्न होता है। ये तब तक व्यक्ति रहता है इस संसार में जब तक उसके प्रारब्ध क्षीण नहीं हो जाते। जब सुखदेव जी को जनक जी ने ज्ञान दिया तो जनक जी फिर उसके बाद सुमेरु पर्वत पर चले गए और वहां जब तक प्रारब्ध क्षीण नहीं हुआ तब तक वो शरीर में बने रहे, नहीं तो वो निर्विकल्प समाधि में स्थित रहे। अब देखिए यहाँ पर एक इशारा ये भी है कि जब भी शरीर मिलेगा वो प्रारब्धावशात मिलेगा और प्रारब्ध के क्षीण हुए बिना आप शरीर से मुक्त नहीं हो सकते और शरीर से मुक्त नहीं होंगे तो भोग से भी मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि शरीर पर आप भले अंतर जगत को अपने शांत कर लें और भोग की वासना का क्षय कर दें यानी मोक्ष की प्राप्ति कर लें, लेकिन शरीर के रहते शरीर के भोगों का तो भोग शरीर को भोगना ही है ना। भूख प्यास नींद ये सब उसको आएगी तो ये स्वाभाविक है,
0: शरीर के साथ जुड़ी वो एक स्वाभाविक सी बात
1: जी। तो वो कहते हैं कि विषय भोग वासनाओं के क्षय को ही विद्वान लोग मोक्ष कहते हैं और विषयों में होने वाली सुदृढ़ वासना को ही बंधन कहते हैं। देखिए कितना सुंदर परिभाषा है कि विषयों में जो आकर्षण है जो आसक्ति है ये क्या है, ये बंधन है और विषयों की वासना का क्षय होना मोक्ष है।
0: मोक्ष है। अच्छा तत्वज्ञ की इसमें चर्चा होती है
1: जी,
0: तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो तत्वज्ञ है वो कौन है, कैसा होता है, क्या लक्षण होते हैं उसके।
1: बिल्कुल, तत्वज्ञ के बारे में जब विश्वामित्र जी राम जी को बताते हैं तो वो कहते हैं कि जिसकी दृष्टि राग द्वेषादि दोषों से रहित है वही तत्वज्ञ है, उसी ने जानने योग्य वस्तु को जाना है और वही विद्वान है। उस महात्मा पुरुष को भोग हठात अच्छे नहीं लगते, जैसे मरुभूमि में लता नहीं उगती, उसी प्रकार जब तक जानने योग्य तत्व का कुछ भी ज्ञान नहीं होता तब तक मनुष्य के हृदय में विषयों की ओर से वैराग्य नहीं होता है। अब एक चीज देखिए कि जब तक जानने योग्य आपको संसार में शेष चीजें रहेंगी तब तक आपके जीवन में वैराग्य नहीं होगा यानी भोग की वासना का क्षय नहीं होगा। जब जानने योग्य को आप जान लेंगे, अब जानने योग्य क्या है, जानने योग्य यही है कि संसार के विषयों में वासना का होना बंधन है और वासना का क्षीण हो जाना मोक्ष है। जब आप ये बात जान लेते हैं तो फिर आप जानने योग्य को आपने जान लिया, फिर संसार के विषय आपके आसपास आएंगे, जैसे जनक जी संसार के विषय में ही हैं लेकिन वो उससे वैसे निर्लिप्त हैं जैसे कीचड़ से कमल। अध्यात्म में कमल और कीचड़ का उदाहरण बड़ा सामान्य रूप से दिया जाता है कि कीचड़ में कमलवत रहिए, इसका अर्थ ये हुआ कि इन दोनों का संबंध है लेकिन दोनों एक दूसरे से मुक्त हैं,
0: इसीलिए जनक विदेह हैं।
1: जनक विदेह कहलाते हैं कि देह में रह करके भी देह के किसी वासनाओं का उन पर प्रभाव नहीं है, वासनाएं क्षीण हो गई हैं इसलिए वो विदेह हैं और विदेह होकर के ही आप मोक्ष को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि देह में तो आपको वासनाएं खींचेंगी वो बंधन का कारण बन सकती हैं।
0: अच्छा अब अगला प्रश्न मेरे मन में ये है कि श्री राम जी ने संसार को देखा है और जिस तरह से देखा है उससे चित्त उनका विचलित हो गया है, वैराग्य उसमें उत्पन्न हुआ है, इस चित्त को कैसे विश्राम मिलेगा, कैसे मिलता है विश्राम।
1: देखिए चित्त को विश्राम तभी मिलेगा जब आप सदचिंतन करेंगे और सदचिंतन क्या है ये विश्वामित्र जी कह रहे हैं, हे मुनिवर आप लोग यह निश्चित रूप से समझ लें कि रघुकुल शिरोमणि श्री राम को गेय तत्व का ज्ञान हो गया है, क्योंकि गेय का मतलब जो जानने योग्य है, क्योंकि इन्हें ये भोगों की रमणीयता अब आनंदित नहीं कर रही है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि संसार के विषयों में जो व्यक्ति रमण करता है इसका मतलब ये है कि उसको अभी इस सत्य का पता नहीं है कि संसार में कभी भी सुख नहीं बल्कि अंततः उसका परिणाम दुख कहलाता है। और भोग आपको योग में तो ये कहा भी गया है परिणाम दुख, माने ऐसा सुख जिसका परिणाम दुख में परिणित हो जाए। तो संसार का कोई ऐसा सुख नहीं है जो परिणामी रूप से दुखी न करे आपको, है ना। तो उसको जो ज्ञानी व्यक्ति है वो जानता है कि इसको कहता है वो परिणाम दुख है कि प्रकृति के किसी भी विषय के सानिध्य के साथ परिणाम में अंततः दुख ही प्राप्त करेंगे आप। तो राम जी को कहते हैं कि राम जी ये मान लीजिए आपकी ये अब संसार के रमणीय भोगों में इन्हें आनंद नहीं आ रहा है, इसलिए राम जी तत्व को बुद्धि द्वारा जानते हैं
0: जी।
1: यानी जो बुद्धि तत्व को जाने, जैसे आप देखिए भौतिक जगत में भी जो वैज्ञानिक हैं, जो फिजिसिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, उन कार्य कारण के संबंधों को उद्घाटित करते हैं। ऐसे ही आत्मिक जगत में जब अध्यात्म का चिंतन या अध्यात्म विद्या का तत्वज्ञ पुरुष चिंतन करते हैं तो उस तत्व की तरफ जानना चाहते हैं कि आखिर वो मूल तत्व क्या है जिसके द्वारा ये जो चित्त की जो प्रवाहमान अवस्था है ये स्थिरता को प्राप्त हो, आखिर क्यों चित्त विषय वासनाओं की तरफ भाग रहा है। तो उसको उन्होंने कहा कि ये अज्ञानता के नाते भाग रहा है क्योंकि हम आज तक विषयों के पीछे भागे लेकिन विषयों से कभी शांति नहीं मिली। तो आने वाले समय में जिन विषयों की आकांक्षा पाल करके हम बैठे हैं और सोचते हैं कि हम उससे शांत हो जाएंगे, तो एक तो महज ये मुगालत है, एक दिवा स्वप्न की तरह है। क्योंकि अगर ये होता तो आज तक तो हमें शांति का कितनी बार अनुभव हुआ होता।
0: तो बड़ी गंभीर बात है कि सुख शांति आनंद की कामना हर मनुष्य को है। हाँ। उसी प्रयास में वो जीवन बिता रहा है, प्रयास कर रहा है
1: जी।
0: लेकिन ये मिलना नहीं है।
1: नहीं, मिलना जैसे होश पूर्वक, जैसे कहते हैं इसको महात्मा बुद्ध कहते थे या उनको मानने वाले लोग कहते हैं कि माइंडफुल होकर के अगर आप पूरी एकाग्रता और पूरी तन्मयता के साथ अगर देखें तो जो भी आपके चित्त में जो वेग आया है, अगर थोड़ा सा आप स्पेस लें, पॉज लें, अल्प विराम लें, तो आपको लगेगा कि वो एक लहर की तरह आया है और फिर धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। किसी भी भाव को आप देखिए जो अपना उद्वेग पैदा करता है चित्त में, चाहे क्रोध हो, चाहे वो प्रेम, प्रेम तो भाव यद्यपि बहुत ऊंची भाव है, मैं उसे नहीं मानता कि इस श्रेणी में आता है, लेकिन वो भाव थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है, जैसे लहरें अपने आप शांत होती हैं। लेकिन अगर उस भाव के बहाव में आप आ गए तो फिर आप जीवन भर अशांत रहेंगे या उसी के आदती हो जाएंगे, जिसको ये न्यूरोसाइंस के लोग कहते हैं, वो एक लूप में व्यक्ति फंस जाता है और लगातार उसी को रिपीट करता है। तो हम लोग सांसारी लोग सामान्यतः उसी लूप को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन जो तत्वज्ञ है वो वहां पॉज लेता है, जैसे ही वो प्रतिक्रिया नहीं करता कि जैसे कोई भाव बना और तुरंत उस प्रवाह में उसने प्रतिक्रिया की, क्योंकि आप प्रवाह में प्रतिक्रिया करते हैं और जैसे ही आप शांत होते हैं उस समय आप क्रिया करने में दक्ष होते हैं। तो उसके लिए तत्वज्ञ होना जरूरी है, तत्व से जानना जरूरी है, और तत्व ये है कि जैसे ही आप थोड़ा सा शांत होंगे, जगह देंगे, तो भाव अपने आप डाइल्यूट होने लगेगा, शांत होने लगेगा और फिर आप सही निर्णय ले पाएंगे।
0: अच्छा, तो भगवान श्री राम जो हैं, सब कुछ उन्होंने देखा है
1: जी,
0: तीर्थ यात्रा के दौरान विचलित हुए हैं।
1: हुँ।
0: तो देखने के बाद वो स्वयं समझ नहीं पाए, चित्त बहुत उनका विचलित है, बहुत परेशान है वो, तो ये उनका चित्त किस तरह से शांत होगा?
1: राम जी का चित्त कैसे शांत होगा अगर आप ये कह रहे हैं, तो ये कहते हैं कि वो गुरु के वचन से शांत होगा। यहाँ पर एक बड़ी बात आपने कहा कि गुरु के वचन, अब यहाँ पर हम श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम लोगों की गुरु की मान्यता है, ऐसे वचन की बात यहाँ नहीं हुई है। यहाँ पर जैसे मैं फिर सुखदेव जी के वृतांत पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सुखदेव जी को जो ज्ञान अपने स्वयं के विवेक से मिला था और उसके बाद भी उनके मन में प्रश्न बने, यानी विवेक से ज्ञान होने के बाद भी प्रश्न का निर्मूलन नहीं हुआ। उसके बाद जब उस प्रश्न का उत्तर वही ज्ञान दिया गया जिस ज्ञान को उन्होंने अपने विवेक से पाया था,
0: तो
1: भी नहीं हुआ, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हें जानता ही हूं जो बता रहे हैं आप। फिर उनको जनक के पास भेजा गया, यानी यहां जनक की जो भूमिका है वो गुरु की भूमिका है। तो जनक के पास जाकर के उनका चित्त शांत होता है, लेकिन खुद के द्वारा एक्सप्लोर किया हुआ ज्ञान उनके चित्त को शांत नहीं करता, पिता के द्वारा दिया ज्ञान उनके चित्त को शांत नहीं करता, शास्त्रों में भी वही बात लिखी हुई है, उन शास्त्रों के ज्ञान से भी उनका चित्त शांत नहीं होता। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां गुरु का वचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि गुरु वो होता है जो जिस ज्ञान को आपको देने वाला है या जिस ज्ञान को आप उससे प्राप्त करने वाले हैं, वो उसके प्रत्येक कोशिकाओं से वो ज्ञान प्रवाहित हो रहा है, उसके प्रत्येक क्रियाओं में वो ज्ञान बह रहा है।
0: यही मैं पूछने जा रही थी। हाँ। कि क्या कारण है कि वही जवाब आपकी बुद्धि ने आपको दी है, विवेक ने दिया है, वही जवाब आपको पिता ने दे दिया, लेकिन शास्त्रों से भी वही उत्तर आपको मिला है, लेकिन गुरु के वचन से या गुरु के सानिध्य से वो बात उसका समाधान हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है।
1: जी जी।
0: तो उसका कारण यही है,
1: उसका कारण यही कि वो जो सद्गुरु है वो सद जीता है। वो ऐसा नहीं है कि सद की बातें करता है,
0: जी, जी, जी।
1: वो सद को जीता है, सद चिंतन करता है, सद वचन बोलता है और सद को जीता है। इसी को कबीर साहब ने एक दोहे में शायद कहा है कि कथनी करे सुपूत हमारा, करनी करे सुनाती, रहनी रहे सदगुरु हमारा, हम रहनी के साथी। तो कथनी करनी और रहनी, ये तीन स्थिति बनी कि आपने शास्त्रों से सद वचन पढ़ा और उसे कह दिया, एक बात ये हो गई
0: जी, जी,
1: और आपने शास्त्रों से सद्वचन सुना, उसका श्रवण किया, मनन किया, एक दूसरी बात हो गई, एक स्थिति और अच्छी हुई कि मनन कर रहे हैं आप और उसका निधिध्यासन कर रहे हैं, यानी वो आपके रहन में आ गया, आपके रहने में आ गया। तो जब रहने में आ गया तो फिर बच्चा या कोई भी व्यक्ति उससे सीखता है। सीखने की एक प्रक्रिया है जो आज मनोविज्ञान में जो सोशलाइजेशन की थ्योरी है कि आदमी सामाजिक संज्ञान कैसे लेता है, तो जॉन बेंडुरा नाम का एक मनोवैज्ञानिक है, वो कहता है कि जो आदमी इमिटेशन से सीखता है, अनुकरण से सीखता है, वो देखता है लोगों को, अपने माता पिता को, अपने आसपास को। तो जो गुरु होता है, गुरु को देखने मात्र से ज्ञान होता है, गुरु का दर्शन ही उसका वचन है। गुरु शब्द नहीं बोलता, गुरु का जीवन बोलता है, गुरु का एक्शन बोलता है। और हम लोग कहते हैं कि योर एक्शन लाउडर देन वर्ड, कि आपका कार्य आपके शब्दों से तेज बोलता है, उसकी ध्वनि बहुत आसानी से सुनने में आती है, लेकिन आदमी उसे क्रिया में नहीं, सिर्फ बातों में, वचनों में रखता है। तो मन, वचन और फिर जब वो कर्म में आता है तब वो ज्ञान आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है और आप उस ज्ञान से प्रकाशित दिखते हैं, फिर अन्य लोगों के प्रकाश की वजह भी बन जाते हैं।
0: जी, तो मतलब गुरु का जो जीवन है, उसका जो आचरण है, वही एक मुखर या बुलंद स्वर में एक संदेश देता है और एक ज्ञान दे देता है।
1: विश्वामित्र जी कहते हैं कि महात्मा श्री रामचंद्र जी के चित्त को के विश्राम के लिए ये पूज्यपाद वशिष्ठ जी ही यहाँ युक्ति का प्रतिपादन करेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है, जब वो जान रहे हैं, उन्होंने सुखदेव की कथा भी सुनाई, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, इनके जो गुरु वशिष्ठ हैं, ये वशिष्ठ ही वो युक्ति प्रतिपादित करेंगे जिससे राम के चित्त को विश्राम मिलेगा। अच्छा, एक बात और भी है कि गुरु जितना मूल्यवान है, उससे अधिक जो है महत्वपूर्ण है शिष्य की श्रद्धा। क्योंकि जो वशिष्ठ के प्रति राम की श्रद्धा है, क्योंकि वशिष्ठ उनके कुल गुरु हैं, उनके परदादा के गुरु रहे हैं, तो ऐसे में जो आस्था, जो श्रद्धा राम के अंदर वशिष्ठ के प्रति है, वो शायद विश्वामित्र के प्रति ना हो।
0: अच्छा, यही सवाल मैं करने जा रही थी कि जो भगवान श्री राम के चित्त की अवस्था है, विश्वामित्र उसको समझ रहे हैं
1: जी,
0: और वो ज्ञान भी उनके पास है, विश्वामित्र के पास भी है, लेकिन फिर वो वशिष्ठ जी से क्यों कहते हैं कि वो उपदेश करें?
1: वो कहते हैं कि क्योंकि ये इनके समस्त रघुवंशियों के ही नहीं, समूचे इक्ष्वाकु वंशियों के गुरु हैं, सदा से ये शिक्षक और नियंता हैं और कुल गुरु हैं। माने विश्वामित्र को, जैसे उस समय के ब्रह्मर्षि हैं वो, यानी उस समय के सबसे प्रतिष्ठित ऋषि हैं, यहां तक कि विश्वामित्र जी को भी उन्होंने राजर्षि से ब्रह्मर्षि का दर्जा वशिष्ठ जी ने ही दिया है।
0: अच्छा,
1: वो उतने पात्र व्यक्ति हैं।
0: जी, जी,
1: तो इसलिए कहा कि ये इनके जब मुख से ये बात आएगी तो ये राम के लिए युक्ति पूर्वक होगी। तो वशिष्ठ जी से उन्होंने अनुरोध किया कि अब जो है राम को आप वो योग, जिस योग के प्राप्त होने के बाद बुद्धि से वैषम्य मिट जाता है, जिसको भगवान कृष्ण समत्वम योग उच्चते कहते हैं, बुद्धि समत्व में स्थित हो जाती है, ऐसी स्थिति में राम अब आ चुके हैं और आप इनको उपदेश करें ताकि वहां ये ठहर सकें, जैसे सुखदेव जी जाकर के जनक जी के यहाँ ठहर गए, ऐसे ही वो वशिष्ठ जी से आग्रह करते हैं कि अब आप इनको उपदेश करें जिससे इनका भी चित्त सुखदेव जी की तरह ठहर जाए। और फिर जो ये तमाम चीजों में लगे हैं, जो तमाम इनके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, इन अज्ञान जनित भ्रमों की तरफ दिमाग लगाने से शांत हो जाएं, क्योंकि इनको जो जानना है वो जान चुके हैं। अब जिसको भी जानने की ये बात करेंगे वो उचित नहीं है, क्योंकि वो भ्रम होगा या वो भटकाव होगा।
0: जी, जी, जी।
1: क्योंकि अंततः फिर वही जानेंगे जो आप जानते हैं। तो सत्य एक बार प्रकट हो जाने के बाद बार बार उसको खोजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस सत्य के साथ स्थित होने की, इसी को स्थित प्रज्ञ कहा गया, कि उस सत्य की स्थिति में आप उस वो प्रज्ञा को बनाए रखें।
0: तो दो महत्वपूर्ण बातें समझ में आती हैं कि एक तो वो गुरु जो ज्ञान देगा
1: जी,
0: उसका आचरण है ना, उसकी पहुंच
1: जी,
0: और दूसरी बात वो शिष्य और उसकी श्रद्धा,
1: बिल्कुल
0: ना, इससे ही ये बात बन रही है।
1: इसको और मैं कहूं तो गुरु और शिष्य, देखें ये हमेशा भगवान ने एक गीता में बात कही है कि मैं समासों में द्वंद्व समास हूं। जैसे किसी भी गुरु का प्राकट्य तब तक गुरु की उपाधि उसे नहीं मिलेगी जब तक उसका योग्य शिष्य ना हो। तो देखें तो शिष्य गुरु बनाता है या गुरु शिष्य बनाता है, ये दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं। ठीक वैसे ही जैसे संसार के रिश्ते दो होते हैं, माता पिता, पिता पुत्र वगैरह वगैरह, जो भी जितने रिश्ते हैं उनके पीछे दोनों लगे हुए हैं। तो ऐसे में जो शिष्य की पात्रता है, तो राम जैसा पात्र शिष्य के लिए वशिष्ठ जी ने उस कुल का पौरोहित्य कर्म स्वीकार कर रखा था। ये कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए। कि जबकि वो चाहते थे कि मैं इससे मुक्त हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, राम आएंगे तो इसलिए राम के लिए उनके गुरु के होने का सौभाग्य आपको मिलेगा। तो सोचिए, वो गुरु का भी सौभाग्य है ऐसे योग्य शिष्य को पाना। कई बार क्या होता है कि गुरु को हम जानते भी हैं उसके शिष्य की वजह से, तो ऐसा भी देखा गया है। वो ऐसा माने तो उसमें जो आपने कहा कि गुरु शिष्य का संबंध अनुपूरक संबंध है, ये अलग अलग नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। कहते हैं कि जिस दिन आप पात्र होते हैं, गुरु स्वयं आपको धारण करता है, जैसे धर्म धारण करता है ऐसे ही गुरु भी धारण करता है। वशिष्ठ जी सदा से प्रभु हैं, कुल गुरु हैं, इसलिए वशिष्ठ जी के वचन से राम जी को जो शांति मिलेगी उसके लिए विश्वामित्र जी कहते हैं। और विश्वामित्र जी कहते हैं वशिष्ठ जी से कि महात्मन, आप इनको वही ज्ञान दीजिए जिससे हमारे आपके बीच जो बैर भाव था उसमें शांति मिली थी।
0: बैर भाव था,
1: भाव था।
0: संक्षेप में जल्दी से
1: हाँ, मैं ये कहता हूँ कि जैसे एक चूंकि विश्वामित्र राजर्षि थे, तो राजर्षि से ब्रह्मर्षि तक की यात्रा उनको करनी थी, और उस यात्रा में जो तमगा था कह सकते हैं, या जो उपाधि थी जी, वो वशिष्ठ जी के द्वारा दी जानी थी। और चूंकि राजर्षि थे, तो राजा जो है अपने पुरुषार्थ से चीजों को अर्जित करना चाहता है, तो वो ब्रह्म ऋषि होना भी अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करना चाहते थे। और पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं अहंकार मिटता नहीं है, तो वो अहंकार के साथ खड़े रहे। और कहा तो ये तक जाता है पुराणों में कि विश्वामित्र जी ने क्रोध में आकर के वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों की हत्या कर दी। ये मुझे राजर्षि से ब्रह्मर्षि होने में बाधा है, क्योंकि ये ब्राह्मण अपने अहंकार में डूबा हुआ है और मुझे ब्रह्मर्षि की उपाधि नहीं दे रहा है। तो एक दिन क्या होता है कि वो विश्वामित्र जी वशिष्ठ को ही मारने उनके आश्रम में आ जाते हैं, छुपे हुए हैं। तब तक वो ब्रह्म मुहूर्त में जब विश्वामित्र वशिष्ठ जी जागते हैं, तो ऐसे में हवाओं का जो स्पर्श है उनकी पत्नी को बड़ा अलग लगता है। कहती हैं वो कि आज क्या है कि आज कुछ ये हवाएं या जो यहाँ का सौंदर्य है बड़ा बदला बदला सा लगता है। तो वो कहते हैं वशिष्ठ जी, ये सब विश्वामित्र के तप का प्रभाव है। अच्छा। तो जब विश्वामित्र की प्रशंसा उन्होंने की विश्वामित्र के अनुपस्थिति में, तो विश्वामित्र को रोना आ गया। कहते हैं कि मैं इनसे इतना द्वेष करता हूं, और जबकि ये तो मेरे प्रशंसक हैं।
0: जी, जी,
1: तो वो आते हैं और आकर के उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और क्षमा मांगते हैं कि ये मुझसे क्या हो गया। तो जब गिरते हैं और अहंकार शून्य होते हैं, तो फिर वहां पर वशिष्ठ जी उनको उठाते हैं, कहते हैं उठो ब्रह्मर्षि उठो। तो ब्रह्मर्षि का मतलब होता है कि जहां पर उसी परम तत्व को सब में देखना।
0: जी, जी, जी।
1: तो ऐसे में फिर कोई दूसरा अहंकार के खड़ा होने की वजह ही नहीं बनेगा ना। जैसे आप जब सर्वव्यापी ईश्वर को आप जान गए, और उसी सर्वव्यापी ईश्वर में ये पूरे जगत की क्रिया को होते हुए आप देख रहे हैं, तो फिर ऐसे में किस क्रिया के बदले आप अपने मैं को खड़ा कर पाएंगे? तो आदमी अहंकार शून्य हो जाएगा। अहंकार शून्य होना यानी निर्वैर भाव, यही बैर अहंकार से खड़ा होता है। तो कहते हैं कि हमारे बैर की शांति, यानी जब मैं अहंकार शून्य हुआ तो हमारा बैर शांत हो गया। तो ऐसे में राम जी के अंदर जो अभी ये बात आ रही है कि संसार कैसे बना, संसार में क्या है, तो इन्होंने जो जानने योग्य है वो जान लिया है। अब इनको उस परम तत्व के साथ आप उपदेश करें, ताकि ये वहीं प्रकाशित हो सके। तत्वज्ञ तो हैं ही, ये तत्व दर्शन इन्हें हो चुका है, और उपदेश के लिए वो उनसे प्रार्थना करते हैं।
0: तो शशिकांत जी, आज बहुत ही सुंदर चर्चा रही योग संवाद कार्यक्रम में, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।
1: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में हमने चर्चा की श्री राम को उपदेश हेतु विश्वामित्र जी का जो अनुरोध था इस विषय पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित होते हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे योग संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत योग वशिष्ठ पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम। जानकारी दे रहे थे जीवन कला विशेषज्ञ शशिकांत त्रिपाठी और इनसे बातचीत कर रही थी सुनीता सिंह। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारा अगला कार्यक्रम है भारत विभूति। इस कार्यक्रम में आज के कड़ी का शीर्षक है अमन के सिपाही।
2: श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो
3: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व। प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: श्रोताओं 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति।
2: भारत विभूति कार्यक्रम में आज सुनिए अमन के सिपाहियों की दास्तान। लेकिन पहले स्वीकार कीजिए मनीषा
3: और दानिश का
2: नमस्कार।
3: भारत की सांस्कृतिक परंपरा और यहाँ के समाज के ताने बाने को समझने के लिए हमें वर्षों पुरानी रस्मों और जीवन को समझना होगा।
2: भारत की भौगोलिक संरचना ऐसी है कि इसमें कई तरह की सुख संपदा भरी पड़ी है। हजारों साल पहले सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर हमारा देश विदेशी आक्रांताओं की पहली पसंद था।
3: यही कारण है कि शक, यवन, हूण, मंगोल आदि विदेशी आक्रमणकारी अपनी खाली झोली भरने के लिए भारत की ओर कूच करते थे। रेगिस्तान के बंजर इलाकों या साल भर बर्फ से ढके उत्तरी क्षेत्र के दुर्दांत सिपाही हमारे देश में लूट कर अपना जीवन यापन करते थे।
2: इनका रास्ता था हिमालय की घाटियों और दर्रों को पार कर पंजाब सिंध में प्रवेश, या पश्चिमी भारत के रेगिस्तानों के रास्ते भारत का पश्चिमी समुद्र क्षेत्र भी भारत पहुंचने का एक विकल्प था, विशेषकर समुद्री दस्युओं के लिए।
3: इसी समुद्री रास्ते से पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और अंग्रेज भी भारत आए और यहाँ से व्यापार के बहाने जमीन, जंगल और खदानों पर कब्जा करने लगे। भारत की प्राकृतिक संपदा का दोहन कर अपना घर भरने लगे।
2: पर इन सब के बावजूद ये तमाम नस्ल के लोग धीरे धीरे भारत में घुलने मिलने लगे। यहाँ की सांस्कृतिक परंपराएं, संगीत, पुरातत्व, स्थापत्य कला इनके लिए विस्मय का कारण और खोज का कारण बनी।
3: इसके ठीक विपरीत पूर्व के देश और सभ्यताएं भारत की सांस्कृतिक प्रतिछाया सी बन गईं। संस्कृत और बौद्ध ग्रंथों ने उनके जीवन को भारतीयता से रंग दिया। वे भारत से धन संपदा नहीं, बौद्धिक संपदा आयात कर रहे थे, उसे आत्मसात कर रहे थे।
2: रामायण की विपुल रंजक छवियों को उन्होंने अपने जीवन में उतारा और उसके मानवीय मूल्यों को आत्मसात किया। बौद्ध धर्म का अनुशासन, साधना और तप उनके राष्ट्रीय मूल्य बन गए और वे कृतज्ञ भाव से भारत की ओर देखने लगे।

0: मुगलों के आक्रमण के साथ फारसी संस्कृति भी आई। दरबारों का कामकाज, शाही फरमान सब फारसी भाषा और लिपि में दर्ज होने लगे। फारस यानी आज का ईरान भी संगीत की समृद्ध परंपरा से भरा हुआ है।
1: श्रोताओं, संगीत के सात सुरों की सरगम उनके यहाँ भी उतनी ही मान्य है जितनी हमारे यहाँ। उनके संगीत में ओम तोम की लगावट और तराना की दिर्तुम दिर्दिर्तुम की तेज लय में डूबना सीधा खुदा की इबादत में डूबने जैसा है।
0: भारत के संगीत भजन, ध्रुपद, पद गायन से प्रभावित हो सूफी संतों ने अपने को उसमें एकाकार कर दिया।
1: ये धुएं की बलखाती वलयों के साथ स्वरों का उत्तेजक लय प्रधान संगीत उस्तादों और संतों का प्राण आधार बन गया। साधारण आम जन भी इससे जुड़ने लगा। दिन भर की थकान को सूफी संतों की वाणी ने अल्हाद और खुशियों से भर दिया।
0: भाईचारे का संदेश जन जन तक फैलाने वाले सूफी संतों में हजरत दाता गंज बख्श, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, शाह आलम, हजरत बहाउद्दीन जकारिया और शाह शम्स मशहूर हैं।
1: इन संतों ने अपनी सरल भाषा में दिल को छू लेने वाली कविताएं लिखी, उनकी धुनें बनाई और जन जन में इसे लोकप्रिय बनाया। गांव गांव की चौपालें इन तरानों से गूंजने लगी।
0: बाबा फरीद ने लिखा, हे फरीद, धूल मिट्टी की निंदा न कर, धूल के समान कोई नहीं। जब हम जीवित होते हैं तो ये पैरों के नीचे होती है और जब हम मरते हैं तो ये हमारे ऊपर होती है।
1: जोते मारण मुखियां उना न मारो गुम, अपने घर जाइए पैर तिना दे चुम। यानी हम सहनशील हो, जो तुम्हें मुक्का मारता है उसे मुक्का मत मारो, उसे क्षमा कर उसके पैरों को चूम लो।
0: मुल्तानी काफी में बाबा फरीद के दोहे गांव गांव गाए जाते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी उनके चार शब्द और 112 श्लोक शामिल किए गए हैं जो गुरु अर्जुन देव जी ने खोज निकाले थे।
1: सूफी कवि वारिस शाह ने अपने हीर के माध्यम से प्रेम और करुणा का संसार रचा। वहीं बुल्ले शाह ने मानव मात्र को एक होने का संदेश दिया। चल बुलिया चल उठे चलिए, जिथे सारे अन्हे, ना कोई साड़ी जात पछाने, ना कोई सानू मन्ने।
0: संत बुल्ले शाह एक ऐसे संसार की कल्पना करते हैं, आंखों से भेदभाव न दिखाई पड़े, इंसानियत और बराबरी सबसे बड़ी पूंजी है। ऐसी जगह चलकर रहो जहां न कोई जाति पहचाने न कोई उसको माने।
1: लगभग 11वीं शताब्दी से लेकर आज तक उत्तर भारत के अनेक सूफी संतों ने प्रेम की वाणी का संचार किया, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख और सिंध के बाशिंदों के बीच आदर पूर्वक स्वीकार की गई।
0: 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारत के पूर्वी हिस्से यानी अविभाजित बंगाल में रहस्यमय सूफीवाद विकसित हो रहा था, जो बाउल गान के नाम से प्रसिद्ध है।
1: ये एक ब्राह्मणवाद, शैववाद और बौद्ध सहजिया संप्रदाय के सहयोग से एक मिश्रित संप्रदाय विकसित हुआ, जो नाथ संप्रदाय कहलाया। इस्लाम और वैष्णव संप्रदाय में परिवर्तन के बावजूद पुराने संस्कारों को छोड़ना संभव नहीं था, सो उन्होंने धर्म पालन जारी रखा। हिंदू गुरु या मुस्लिम पीर के कोई भी शिष्य इसमें हो सकते हैं।
0: बाउल का समानार्थी शब्द है व्याकुल, याने अपने इष्ट के प्रेम में व्याकुल, तंद्रा में रहना। यह सूफी के हाल के जैसा ही है। बाउलों के दो वर्ग हैं, सन्यासी बाउल जो पारिवारिक जीवन त्याग, भिक्षा पर निर्भर रहते हैं। दूसरे हैं पारिवारिक बाउल जो गांव बाहर अपना अखाड़ा बना परिवार के साथ रहते हैं।
1: श्रोताओं, बाउल संगीत दिव्य प्रेम का गुणगान करता है। एक तारा इनका वाद्य यंत्र है। सभी धर्मों में मनुष्य धर्म सबसे बड़ा है और बाउल संगीत इसी की व्याख्या करता है।
0: लालन फकीर 1774 में जन्मे सबसे बड़े सूफी बाउल माने जाते हैं। ये आशु कवि थे इनकी रचनाएं 19वीं सदी के प्रारंभ तक मुखाग्र रूप से एक से दूसरे गायक तक पहुंचती रहीं। पूर्व और पश्चिमी बंगाल की सांगीतिक संस्कृति पर बाउल गीतों का बहुत प्रभाव है।
1: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर लालन शाह को अपना गुरु जैसा मानते थे। उनकी अनेक रचनाएं बाउल संगीत और उसके रहस्यमय दर्शन से प्रेरित हैं।
0: लालन शाह बंगला संस्कृति के सबसे बड़े संवाहक कवि हैं। उनके 5000 के लगभग गीत चलन में हैं, पर शोधकर्ता मानते हैं कि इनमें लगभग 1000 लालन शाह रचित ही हैं। लालन क्रांतिकारी सूफी कवि हैं।
1: वो कहते हैं कि सब लोग कहते हैं कि लालन कौन जाति के हैं। लालन पूछता है कि जाति का क्या रूप होता है, इन आंखों ने देखा तो नहीं, कोई माला कोई तस्वीर, तो जात अलग हो जाती है, अंत समय कौन सा चिन्ह रह जाता है।
0: एक गीत में लालन कहते हैं कि मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, जो करना है शीघ्र करो, अरे अबोध मन तू अपने ही लोगों को नहीं पहचानता, अरे दोबारा मनुष्य जन्म नहीं होगा। बाउल सूफी संप्रदाय केवल मानव धर्म को मानता है, जाति पाति की अवधारणा से दूर वे अपने मन के भीतर छिपे मोनेर मानुष की खोज करते हैं। इन गीतों में देह तत्व परम आत्मा से मिलन और बिचोह का संदेश तो है ही, साथ ही सर्वधर्म संभाव का आग्रह भी स्पष्ट है।

0: श्रोताओं, लालन शाह के अनुगामी हजारों बाउल गायक शिष्य हैं, जो आज भी पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में घर घर अमन और समता का संदेश अपने संगीत के माध्यम से फैला रहे हैं। विदेशों में भी ये फकीर आमंत्रित किए जाते हैं और अभिजात्य कलाकारों ने भी इसे नए परिवेश और नई संगीत योजना के साथ अपनाया है।
1: आइए श्रोताओं, सुदूर दक्षिण में केरल प्रांत की बात करें। दक्षिण भारत की चारों प्रमुख भाषाओं में अनेक संतों ने भक्ति रचनाएं लिखी। तमिल में 12 अलवार संतों ने वैष्णव धर्म पर 5वीं से 9वीं शताब्दी के बीच महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। संस्कृत रामायण के लोक भाषाओं में अनुवाद हुए।
0: केरल में आदि शंकराचार्य ने अनेक सुंदर काव्य रचनाएं संस्कृत में रची, जो मंदिरों में संगीत रूप में गाई जाने लगी। संत त्यागराज, श्यामा शास्त्री और मुथु स्वामी दीक्षितर ने कर्नाटक संगीत पर आधारित अनेक भक्ति रचनाएं तैयार की, जो आज भी पूरे कर्नाटक संगीत का आधार संगीत मानी जाती हैं।
1: 20 अगस्त 1856 को केरल के चैंपा झंथी में एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया जो बाद में चलकर एक बड़े दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हुए।
0: उनका नाम है नारायण गुरु। उन्होंने केरल के जाति प्रधान समाज में व्याप्त अन्यायों के विरुद्ध आवाज उठाई, एक सुधार आंदोलन आरंभ किया जिसका सूत्र था सभी मनुष्यों के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर।
1: संस्कृत और वेदांत के अध्ययन के बाद उन्होंने योग और ध्यान साधना की। 1904 में शिवगिरी में उन्होंने एक स्कूल खोला, जहां जाति धर्म आदि के परे निशुल्क शिक्षण देना शुरू किया। जातिगत भेदभाव के खिलाफ उन्होंने समाज सुधार का बीड़ा उठाया।
0: अपनी केरल यात्रा में गांधी जी भी उनसे मिले थे और उनके ज्ञान और विचारों से प्रभावित हुए। नारायण गुरु ने केरल और तमिलनाडु में 45 मंदिरों की स्थापना की।
1: इन अनोखे मंदिरों में कोई प्रतिमा नहीं, इनमें सत्य, नैतिकता, करुणा, प्रेम शब्दों से उत्कीर्ण एक शिलापत्र, एक शाकाहारी शिव, एक दर्पण और एक इटालियन मूर्ति शामिल थी।
0: श्रोताओं, सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने कृषि मजदूरों को संगठित किया, नारियल कारखानों के गरीब मजदूरों को उचित पारिश्रमिक की पैरवी की और समाज को संगठित किया।
1: नारायण गुरु ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें उन्होंने वेदांत की सरल व्याख्या की। नैयर नदी के किनारे उन्होंने अरू विप्पुरम में विशाल मंदिर बनवाया, जिसमें बिना जातिगत भेदभाव के कोई भी पूजा कर सकता है। स्वर्ण समाज ने उसका विरोध किया तो नारायण गुरु ने कहा, ईश्वर ना तो पुजारी है ना किसान, वह सब में है। उन्होंने मनुष्य को स्वाभिमान से जीना सिखाया, बगैर जातिगत भेदभाव के, यही उनका गुरु मंत्र था।
0: आज हजारों सूफी गीत, बाउल गीत और नारायण गुरु की रचनाएं उपलब्ध हैं, पर ये केवल पढ़ने की नहीं, देश के जन जन में बसी प्राणवायु है, उसका जीवन संगीत है। भारत इसी में जीता है, इसी में सांस लेता है।
1: अमन के सिपाहियों की ये दास्तां अब संपन्न हुई। इसे आपके लिए लिखा था ईला शंकर गोहा ने। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और लेखन
2: ईला शंकर गुहा।
0: श्रोताओं, इसी के साथ भारत विभूति कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अनुमति दीजिए मनीषा
1: और दानिश को।
0: नमस्कार।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत विभूति, जिसके अंतर्गत हमने सुना कार्यक्रम अमन के सिपाही और जानकारी प्राप्त की मध्यकालीन भक्ति कवियों के बारे में। इस कार्यक्रम को स्वर दिया मनीषा चतुर्वेदी और मोहम्मद दानिश ने। 90.8 MHz पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सन 1498 में जब वास्को डी गामा का छोटा बेड़ा केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर आगे बढ़ा, तो वे एक जुनूनी विजन से प्रेरित थे, ईसाई और मसालों की खोज। सदियों से यूरोप में पूर्व में एक खोए हुए ईसाई साम्राज्य की किंवदंतियां प्रचलित थी, जिस पर पौराणिक प्रेस्टर जॉन का शासन था। जब पुर्तगाली मालाबार तट पर पहुंचे तो वे इस उम्मीद में इतने अंधे थे कि वे अपने सामने मौजूद सभ्यता की वास्तविकता को देख ही नहीं पाए। इन प्राचीन विश्वासियों के साथ पहली मुलाकात भारत में नहीं बल्कि अप्रैल 1498 में पूर्वी अफ्रीकी तट पर मालिंदी में हुई थी। वहां पुर्तगालियों की मुलाकात त्रगनौर के 4 जहाजों से हुई। उन पर ऐसे लोग सवार थे जिन्होंने खुद को मसीह का अनुयायी सेंट थॉमस ईसाई बताया। यह समुदाय अपनी जड़ों को प्रेरित थॉमस यानी एपोस्टल थॉमस से जोड़ता था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पहली शताब्दी में भारत आए थे और यहीं बस गए और संभवतः यही उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि पुर्तगालियों का शुरुआती अवलोकन घोर अज्ञानता से भरा था। जब वे कालीकट पहुंचे तो इतिहासकार एल्वारो वेल्हो को पक्का विश्वास था कि उन्होंने एक ईसाई शहर खोज लिया है। मूरो अर्थात मुसलमानों के खिलाफ एक ईसाई सहयोगी खोजने की बेताबी में पुर्तगालियों ने हिंदू मंदिरों को चर्च और स्थानीय धार्मिक रीति रिवाजों को ईसाई अनुष्ठान समझ लिया। जैसे जैसे पुर्तगालियों ने एस्टाडो द इंडिया की स्थापना की, उन्हें समझ आया कि यह समुदाय उनकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल था। उन्होंने क्रैगनौर और कोलम जैसे केंद्रों की पहचान की जो सेंट थॉमस ईसाइयों के गढ़ थे। ये समुदाय सदियों से अपने हिंदू और मुस्लिम पड़ोसियों के साथ एक सहजीवी संबंध में रहते थे। उनकी आस्था यूरोप के लैटिन संस्कार ईसाई धर्म से मौलिक रूप से भिन्न थी। इस खोज का दिलचस्प विरोधाभास तब सामने आया जब धार्मिक टकराव शुरू हुआ। पुर्तगाली इन खोए हुए ईसाइयों को खोजने के लिए महासागर पार कर आए थे, लेकिन उन्हें पाने के बाद उन्होंने उनकी आस्था को मान्य और धर्मसम्मत मानने से इनकार कर दिया। पुर्तगालियों की नजर में सेंट थॉमस ईसाई विधर्मी पूर्वी संस्कारों से दूषित थे। 16वीं शताब्दी के मध्य में जेसुइट्स के आगमन और काउंटर रिफॉर्मेशन की उग्र भावना के साथ पुर्तगाली दृष्टिकोण जिज्ञासा से बदलकर सुधार में बदल गया। 1560 तक इंक्विजिशन को गोवा लाया गया और पुर्तगालियों ने सेंट थॉमस ईसाइयों को जबरदस्ती रोम के अधिकार में लाने का प्रयास किया। वह प्राचीन समुदाय जो कभी पुर्तगालियों की यात्रा का औचित्य था, अब उनके आध्यात्मिक अनुशासन का लक्ष्य बन गया। ये कहानी एक डरावना उदाहरण है कि कैसे साम्राज्यवादी आंखें वही ढूंढती है जो वे देखना चाहती है और फिर उसे केवल इसीलिए नष्ट कर देती है क्योंकि वे उनके घर से लाई गई छवि से मेल नहीं खाता।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

0: रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं रविंद्र भवन सभागार में, जहां 6 अगस्त की शाम ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव में 6 देशों के कलाकारों ने अपनी दिलकश प्रस्तुतियां दी।
1: Tá bem!

0: ये थी रेड रिपोर्ट ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव की। फिर हाजिर होंगे, तब तक लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे भोपाल में आयोजित ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव की रेडियो रिपोर्ट। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आज़ाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। और अब जानकारी विगत दिवस भोपाल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की। रविंद्र भवन में आयोजित ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव के तीसरे दिन एक मंच पर पूरी दुनिया की संस्कृति दिखी। 125 कलाकारों ने 12 नृत्य विधाओं में प्रस्तुति दी। 1.5 घंटे तक चले इस आयोजन ने दर्शकों को बांधे रखा। सांस्कृतिक संध्या का मुख्य आकर्षण ब्रिक्स पीस सॉन्ग रहा, जिसमें भारत, बेलारूस, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के कलाकारों ने अपनी अपनी सांगीतिक परंपराओं का संगम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में फैशन और टेक्सटाइल परंपरा का अनूठा प्रदर्शन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के पारंपरिक प्रिंट और वस्त्रों को प्रदर्शित किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भोपाल परिसर में शुक्रवार को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर 6 अलग अलग राज्यों के कारीगर पहुंचे और अपनी पारंपरिक कला का प्रदर्शन किया। फर्श पर कारीगरों ने मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध चंदेरी और महेश्वरी, उत्तर प्रदेश की बनारसी बुनाई, पश्चिम बंगाल की काथा और राजस्थान के पारंपरिक बुनाई बिछाए और लाइव बुनाई की कलाकारी दिखाई। ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के तहत कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में लगाई गई 3 विशेष प्रदर्शनियां प्रोजेक्ट मौसम, बृहत्तर भारत और ज्ञान भारतम आम लोग भी निशुल्क देख सकेंगे। ये प्रदर्शनियां शनिवार को शाम 4 से 6 बजे तक और रविवार सुबह 11 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। और अब जानकारी आज के दिन भोपाल में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की। सुप्रसिद्ध गीतकार और शायर साहिर लुधियानवी के जीवन पर आधारित जिंदगी का साथ निभाता चला गया पुस्तक पर चर्चा और संवाद आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम आज शाम 4:30 पर भोपाल स्थित विवेकानंद लाइब्रेरी में आयोजित होगा। थ्रेड्स ऑफ आइडेंटिटी नेशनल हैंडलूम, यह कार्यक्रम मानव संग्रहालय भोपाल में सुबह 11 बजे से आयोजित है, जिसमें प्रवेश निशुल्क है। ये था हमारा आज का परिक्रमा कार्यक्रम। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नॉर्मन रॉबर्ट पॉक्सन, सूर्य के धब्बे और अकाल का ब्रह्मांडीय चक्र। 19वीं सदी के अंत में मद्रास वैद्यशाला की भीषण गर्मी में नॉर्मन रॉबर्ट पॉक्सन नामक व्यक्ति अपनी रातें आसमान का सूक्ष्म मानचित्रण करने में बिताता था। 1861 से 1891 के बीच उन्होंने 5000 तारों को सूचीबद्ध किया और 6 लघु ग्रहों की खोज की, जिससे पारंपरिक खगोल विज्ञान के इतिहास में उन्होंने एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया। हालांकि दिन का उजाला एक अधिक दबावपूर्ण और भयानक चुनौती लेकर आता था, सूर्य। ब्रिटिश राज के लिए 19वीं सदी मृत्यु के एक दुखद चरमोत्कर्ष द्वारा परिभाषित थी, क्योंकि आवर्ती अकालों में लाखों लोग मारे गए थे। औपनिवेशिक प्रशासन, जो दुनिया की अपनी सबसे बड़ी जमींदारी की रक्षा के लिए बेताब था, इन आपदाओं को एक क्रूर और चंचल प्रकृति के प्रति भारतीय संवेदनशीलता के संकेत के रूप में देखता था। पॉक्सन को विश्वास हो गया था कि भारत के सूखे का रहस्य उसकी मिट्टी में नहीं, बल्कि सूर्य की सतह पर होने वाले उग्र विस्फोटों में छिपा है। उन्होंने सौर्य कलंक की गतिविधि और स्थलीय मौसम के पैटर्न के बीच संबंध की जांच शुरू की। यह एक ऐसा अध्ययन था जिसने केवल तथ्य जुटाने वाले निम्न विज्ञान को साम्राज्य के अस्तित्व के लिए एक शक्तिशाली उपकरण में बदलने का वादा किया था। 1878 में पॉक्सन भारतीय अकाल आयोग के सामने खड़े हुए और क्रांतिकारी दावा पेश किया। उन्होंने तर्क दिया कि सूर्य के धब्बे सीधे तौर पर पृथ्वी की मौसम स्थितियों को प्रभावित करते हैं और इन सौर चक्रों पर नजर रखकर सरकार विनाशकारी सूखे की शुरुआत की भविष्यवाणी कर सकती है। 1864 के विनाशकारी कलकत्ता चक्रवात और 1866 के उड़ीसा अकाल के बाद उपनिवेशिक राज्य मौसम विज्ञान को लेकर बेहद चिंतित था। ऐसे में पॉक्सन के सिद्धांत ने एक गहरा वैज्ञानिक तार छेड़ दिया। प्रशासन को समझ आया कि सौर भौतिकी अब केवल जिज्ञासा का विषय नहीं बल्कि राज्य की वित्तीय और राजनीतिक स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यदि सूर्य के पास मानसून की चाबी थी तो उसका अध्ययन करना साम्राज्य का कर्तव्य था। पॉक्सन के अथक प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि सौर भौतिकी के लिए सरकारी वित्त पोषण में भारी वृद्धि हुई। इसका समापन 1895 में कोडाई कनाल वैधशाला की स्थापना के साथ हुआ। इस संस्था ने तेजी से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की और साबित कर दिया कि उपनिवेशों में होने वाले शोध हमेशा दोयम दर्जे के या मौलिक खोजों से अलग थलग नहीं होते। 1899 तक सौर अध्ययन को औपचारिक रूप से विस्तार करते हुए मौसम विज्ञान विभाग में एकीकृत कर दिया गया, जिससे स्वयं सूर्य भी राज की नौकरशाही की नजर के दायरे में आ गया। पॉक्सन के सिद्धांत ने ब्रिटिशों के भारतीय परिदृश्य को देखने के नजरिए को बदल दिया। उन्होंने रहस्यमय आकाश को वायुमंडलीय अशांति के एक तर्कसंगत साम्राज्यवादी मानचित्र में बदल दिया। भूख के ब्रह्मांडीय चक्र की पॉक्सन की ये खोज उस समय का प्रमाण है जब अंग्रेजों का मानना था कि पश्चिमी विज्ञान के माध्यम से वे अंततः उष्णकटिबंधीय दुनिया की अप्रत्याशित लय को वश में कर सकते हैं। आगे चलकर इसी कोडाई कनाल वैधशाला में जॉन एवरशेड ने एवरशेड प्रभाव की खोज की, जिसने सौर भौतिकी की दुनिया में भारत का नाम हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।
1: नवे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आजाद हिंद। इस कार्यक्रम में आज हम स्वाधीनता संग्राम सेनानी गंगाधर मेहर के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को इतिहास
2: और तारीख का नमस्कार।
1: देशभक्ति की मिसाल रखने वाले देशभक्तों की बातें तो इस कार्यक्रम में होती ही हैं। देश की महान विभूतियों की बातें भी हम यहाँ करते हैं और साथ होते हैं दिल को छू लेने वाले कुछ देशभक्ति के तराने।
2: हाँ, तो आज हम किस महान हस्ती की बात करने वाले हैं इतिहास?
1: सन 1862 में संबलपुर के बरपली ग्राम में जन्मे थे उड़िया के महान कवि श्री गंगाधर मेहर। पिता चैतन्य और माता सेवती के घर ज्यादा कुछ तो था नहीं, पर पिता वैद्य थे तो सभी उनका आदर सम्मान करते थे। वैसे मेहर लोगों का पुश्तैनी काम कपड़े बुनने का था, जो सूती और टसर की साड़ियां बुनते थे।
2: पर गंगाधर बाल्यकाल से ही पढ़ाई में बड़े होशियार थे। उन्होंने एक के बाद एक कई कक्षाएं एक साल से कम अवधि में ही पूर्ण कर ली, पर उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि घर की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी।
1: ऐसे में भी उनकी रुचि कविताओं से हटी नहीं, वे संघर्ष करते रहे और घर पर ही निरंतर पढ़ते रहे। समाज की धारा का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। भारत की गुलामी से वे खिन्न थे और ये उनकी कविताओं में साफ झलकता है। प्रियतम हिंदुस्तान, सकल जगत की शान, प्रियतम हिंदुस्तान।

0: कलात्मकता के साथ साथ संवेदना और ईमानदारी, ये सभी गुण थे श्री गंगाधर मेहर जी में। उन्हें उड़ीसा का कालिदास भी कहा जाता है और वे भारत की परतंत्रता से बहुत दुखी थे।
1: उस समय तो बयार ही कुछ ऐसी थी कि सभी अंग्रेजी शासन से खिन्न थे। उनके अत्याचार और जुलाहों के अत्याधिक शोषण से गंगाधर जी भी बहुत रुष्ट थे।
0: असल में 1758 के बाद से ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई थी और तभी से आर्थिक शोषण का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया।
1: बंगाल में बुनकरी एक सफल व्यवसाय होने के कारण और वहां की उपजाऊ भूमि से अच्छा कपास होने के कारण विदेशियों ने इसी उद्योग पर अपना कब्जा करना ठीक समझा। धीरे धीरे ये उद्योग इन्हीं अंग्रेजों के कारण बिल्कुल ठप्प हो गए और खेती किसानी पर भी अत्यधिक भार आ गया, क्योंकि जुलाहे कपड़ा बुनना छोड़ किसानी और मजदूरी करने लगे।
0: कई भारतीय तो अपने घरों को छोड़ के भूमिगत भी हो गए, क्योंकि करों का बोझ इतना था कि अपने गांव और जमीन पर रहना मुश्किल हो गया था। पर वे जहां भी रहते अपनी मातृभूमि की याद तो सताती ही थी। देश से आने वाले बता किस हाल में है याराने वतन।

0: जिन कविताओं में गंगाधर मेहर जी ने अपने आप को व्यक्त किया है, उनसे पता चलता है कि वे कितने सादे, ईमानदार और देशभक्त थे। भारतीय दर्शन और आध्यात्म की ओर उनका खास रुझान था।
1: उदाहरण के तौर पर उनकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। वास्तव में तो मैं महान अमृत सागर की एक बूंद मात्र हूँ, जो उड़कर आकाश की ओर चली गई है। मैं गिरकर पुनः उस अमृत धारा में मिल गया जो उस सागर की तरफ जा रही है। यदि मैं अपने पापों की गर्मी के कारण रास्ते में ही सूख जाऊं, तो पुनः उस कण के रूप में गिरूं और अंततः अमृत कणों के साथ अपने को फिर उसी सागर में गिरा दूं, जहां हर बीज अमृतमय है।
0: इन महान पंक्तियों को लिखने वाले श्री गंगाधर मेहर भारत की स्वतंत्रता चाहते थे। एक कलाकार हमेशा ही आजादी की कल्पना करता है, और इस कल्पना को साकार करने के लिए वो अपनी कला को ही हथियार बनाता है, ना कि किसी अस्त्र शस्त्र को।

0: वादा फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। कार्यक्रम आजाद हिंद स्वराज संस्थान संचालनालय, रविंद्र भवन परिसर, भोपाल 462002।
3: और अब दीजिए हमें इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

0: पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर सागर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको गायन सुनवाएंगे। कलाकार हैं स्वाति तिवारी और डॉक्टर ऋषि मिश्रा।

इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गायन वादन, लोकगीत, गजलें और बहुत कुछ। आज आप सुनेंगे दो गायन। पहली प्रस्तुति होगी स्वाति तिवारी के गायन की।

0: और यह है डॉक्टर ऋषि मिश्र का गायन।
1: मिश्र पीलू में एक कजरी सुना रहे हैं, क्योंकि मौसम ऐसा ही है सुहाना, तो बहुत सुंदर कजरी है वही।

ये था आज का कार्यक्रम सुरसागर, जिसमें आपने पहले सुना स्वाति तिवारी का गायन और दूसरी प्रस्तुति रही डॉक्टर ऋषि मिश्र के गायन की। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: शोर सागर कार्यक्रम में आज हमने सुना स्वाति तिवारी और डॉक्टर ऋषि मिश्र का गायन। इसके साथ ही हमारा आज का शोर सागर कार्यक्रम संपन्न होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।
1: नवे.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर आधारित कार्यक्रम युग प्रवर्तक।
2: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: विवेकानंद के जीवन चरित्र में अब तक आपने जाना कि उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस देव के बीमार पड़ने पर सब शिष्य मिलकर उन्हें कलकत्ता के काशीपुर उद्यान में ले आए और सन 1886 के अगस्त के महीने में उनका देहांत हो गया। काशीपुर में पुराने भक्तों के अलावा अनेक तरुण सन्यासी गण भी रहते थे जो गुरुदेव की सेवा करने के लिए घर छोड़कर पढ़ाई छोड़कर वहां रहते थे।
1: श्री राम कृष्ण देव के देहावसान के थोड़े ही दिन बाद काशीपुर का उद्यान भवन छोड़ना पड़ा। अब नरेंद्र ने सोचा कि युवक सन्यासी गण यदि चारों ओर विच्छित होकर चले जाएंगे तो इस महापुरुष के आदर्श के प्रचार में विघ्न उपस्थित होगा। श्री गुरुदेव के साथ रहकर उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग रूप में जो साधना और आदर्श प्राप्त किया है उसे केंद्रीभूत करना होगा। कुछ ग्रही भक्तों ने नरेंद्र के इस मत का समर्थन किया। वे सब वैराग्यशील तरुण सन्यासी आश्रय विहीन होकर भटकते रहेंगे, ये बात उन्हें पसंद न आई।
0: यह बातें सुनकर के रामकृष्ण देव के एक ग्रही भक्त सुरेंद्रनाथ मित्र ने आकर के नरेंद्र से कहा, भाई एक आश्रम बनाओ जहाँ श्री रामकृष्ण देव का चित्र, भस्मादि और उनके द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं को रख कर के नियम अनुसार पूजा अर्चना हो सके, जहाँ काम कुंचन त्यागी तुम भक्तगण एक स्थान पर रह सको। कभी कभी हम लोग भी वहाँ आएंगे। मैं काशीपुर के बगीचे में रामकृष्ण सेवा के लिए जो कुछ मैं दिया करता था वहाँ भी दूंगा।
1: ये बात सुनकर नरेंद्र नाथ आनंद से आत्मविभोर हो गया और एक मकान की खोज में लग गए। नरेंद्र नाथ और उनके वराहनगर निवासी मित्र भवनाथ के अदम्य प्रयास से वराहनगर के गंगा तट के समीप भुवन दत्त का एक जर्जर उद्यान भवन 11 रुपए मासिक किराए पर लिया गया। भुवन दत्त का मकान असल में ताकी के जमींदार मुंशी बाबुओं का था। ये मकान जीर्ण और परित्यक्त था, इसी से लोग उसे भुतहा मकान कहा करते थे। इस जीर्ण भुतहा मकान में केवल 6 कमरे थे। टैक्स के लिए निर्धारित 11 रुपए के अतिरिक्त रसोई को 6 रुपए महीना और मठवासियों के अन्य खर्चों के रुपए भी सुरेंद्रनाथ देते। इस प्रकार उनके माहवार दान की रकम लोगों के बढ़ाने के साथ साथ बढ़कर 100 रुपए तक हो गई।
0: मठवरा नगर के परामाणिक घाट रोड में टाकी के मुंशियों के ठाकुर घर के पीछे पश्चिम के हिस्से के भग्न जर्जर मकान के ऊपरी तल्ले के भीतरी हिस्से में था। रास्ते पर एक दरवाजे से घुसकर थोड़ी खुली जमीन को पार करने पर सीढ़ियों से चढ़कर के लकड़ी के रेलिंग और खंबे वाले बरामदे के दक्षिण दिशा के सामने का बड़ा घर पहले किराए पर था, बाद में ऐसे ही खुला पड़ा रहता। भीतर के मठ का हिस्सा बाहर के रास्ते से दिखाई नहीं पड़ता था, काफी निर्जन था। अभी पूरा मकान धराशाही हो गया है। बाहरी हिस्से को छोड़कर के भीतर के मठ के हिस्से का कोई भी चित्र नहीं मिलता है। पीछे की ओर साग सब्जी का बगीचा था, सहजन के पेड़, एक बेल वृक्ष और कुछ नारियल तथा आम के पेड़ थे। एक तालाब भी था। बगीचे में कोई खास साग सब्जी नहीं होती थी, बस डेंगू के डंठल, 2-4 कुमड़े, खीरे और केले आदि होते। एक कुड़िया माली था, उसे केलों के नाम से पुकारा जाता था।
1: कोई तरकारी भाजी नहीं रहने पर शशि महाराज बीच बीच में बगीचे में घुसकर डेंगू, कुमड़े का साग, सहजन के डंठल या झड़े हुए फूल, माली जो कुछ पाते पल भर में तोड़कर या हसुए से काट कर ले आते और उड़िया भाषा में अरे अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं लो कहते हुए पीछे पीछे दौड़ता हुआ आता। कभी गाली देता, चिल्लाता, किंतु शशि महाराज इस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते। अपनी जिद पर अड़े हुए अपने मन से चले आते। इसे लेकर सभी आपस में खूब हंसी मजाक करते। वैसे मठ में निवास करने वाले सब के साथ माली की काफी दोस्ती थी।
0: एक समय का अन्न किसी दिन मिल जाता था तो किसी दिन नहीं। थाली, बर्तन आदि कुछ भी न थे, अतः घुया के पत्ते पर भात रख कर के उसे ही खाना पड़ता। और भोजन भी क्या था, केवल उबले हुए कुंदरू के पत्ते और भात, और वह भी घुया के पत्तों पर रखकर, जिससे मुंह में खुजली हो जाती थी।
1: इतने कष्ट, फिर भी कोई चिंता न थी। भक्तों की संख्या एक एक दो दो करके बढ़ती रही। कैसा उत्साह था। पूजा, जप, ध्यान सदा चलता रहता था। कभी कीर्तन भी शुरू हो जाता था। कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और अंदर

0: कीर्तन बंद होने पर भी बाहर लोग खड़े रहते और चिल्लाते,
1: अरे बंद मत कीजिए,
2: बंद मत कीजिए,
1: बड़ा आनंद आ रहा है,
2: बहुत आनंद आ रहा है।
3: नीचे की मंजिल के भीतर कमरों की ओर बहुत दिनों की गंदगी और झाड़ झंकार इस तरह हो गए थे कि वहाँ सियारों और सांपों का बसेरा था। ऐसी धारणा थी कि बहुत दिन पहले टाकी के खूंखार जमींदार के जमीन में वहाँ बहुत नर हत्याएं हुई थीं। इसी से उसे भूत घर कहा जाता था और कोई उसे किराए पर नहीं लेता था। इसी कारण से मठवासियों ने इसे 10 रुपए के किराए पर प्राप्त कर लिया था। ऊपरी मंजिल पर सीढ़ी से चढ़ने पर काली तपस्वी का कमरा था। बाद में एक छोटे जीने से चढ़ और उतर कर पूजा के आयोजन का घर था, जिसमें फर्श पर एक हाथ लंबा और एक हाथ चौड़ा एक चौकोर मिट्टी का हवन कुंड था। वहां से ठाकुर घर जाया आया करता था। सीधे जाने पर बरामदे के सामने रसोई घर था। बाई ओर लंबा हॉल था, जिसे दानवों का कमरा कहा जाता था। इसके बाद बगल में ही भोजन करने और हाथ मुंह धोने का कमरा था। इसके बाद एक अंधेरी गली पार कर शौचालय और सीढ़ी से नीचे उतरकर बगीचे के अंदर से तालाब में जाने का रास्ता था।
0: हाल में दीवारों पर अनेक देवी देवताओं, अवतारों और क्रास पर बंधे ईसा मसीह के चित्र टंगे हुए थे। ठाकुर घर में धूनी देकर के उन सब चित्रों के आगे शशि महाराज संध्या समय एक हाथ में धूनी दानी में जलाकर और दूसरे हाथ से दीप लेकर के जय गुरुदेव श्री जय गुरुदेव कहकर धूप दिखाया करते थे। हाल में एक किनारे पर एक लकड़ी के तख्त पोश के ऊपर कुछ संस्कृत, बंगला और कुछ अंग्रेजी की पुस्तकें रखी हुई थी। शेष जगह में मिट्टी का खोल, तबला, मृदंग, करताल रखा था। निकट की दीवार पर तानपुरा टंगा था। हाल ही साधुओं का शयन गृह था। दर्शकों और भक्तों के आने पर उसी में बैठकर के बातचीत होती थी, किंतु उस हाल का सभी कार्यों में

0: फिरते तब से भीतर जिस अपूर्व भक्ति भाव का संचार होता उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसा लगता मानो पूरा मकान कांप रहा है। दर्शकगण श्री रामकृष्ण के भंडार घर से उनके साथ स्वर मिलाकर के जय गुरुदेव श्री गुरुदेव का उच्चारण करते करते आवेग में नृत्य करने लगते।
1: मठ के गुरु भाई अपने आप को भूत तथा दानव कहते थे, क्योंकि भूत दानव शिव जी के अनुयायी हैं, और जिस कमरे में सब एक साथ बैठते थे उसे भूत का कमरा कहते थे। जो लोग एकांत में ध्यान धारणा और पाठ आदि करते थे वे लोग दक्षिण की ओर के कमरे में रहते थे। काली द्वार बंद करके अधिकतर उसी कमरे में रहते थे, इसलिए मठ के गुरु भाई उस कमरे में और उत्तर की ओर जो कमरा था उसमें नैवेद्य रखा जाता था। उसी कमरे में खड़े होकर लोग आरती देखते और वहीं से भगवान श्री राम कृष्ण को प्रणाम करते थे। नैवेद्य वाले कमरे से उत्तर में दानवों का कमरा था। भूतों के कमरे के उत्तर की तरफ एक और छोटा सा कमरा था, वो पानघर के नाम से पुकारा जाता था। यहाँ भक्तगण भोजन करते थे। भूतों के कमरे के पूर्व कोने में दालान थी। उत्सव होने पर भोजन आदि की व्यवस्था इसी कमरे में की जाती थी। दालान के ठीक उत्तर की तरफ रसोई घर था। पूजा घर और काली तपस्वी के कमरे के पूर्व की ओर बरामदा था। बरामदे के दक्षिण पश्चिम कोने में वराहनगर की एक समिति का पुस्तकालय था।
0: ये सब कमरे दुमंजिले पर थे, जीने दो थे, एक तो पुस्तकालय और काली तपस्वी के कमरे के बीच से, और दूसरा भक्तों के भोजन करने वाले कमरे के उत्तर की तरफ। नरेंद्र आदि भक्तगण इसी जीने से शाम को कभी कभी छत पर जाते थे। वहां बैठकर वे लोग ईश्वर संबंधी अनेक विषयों की चर्चा करते थे। कभी श्री रामकृष्ण की बातें, कभी शंकराचार्य की, कभी रामानुज की और कभी ईसा मसीह की बातें होती थी। कभी हिंदू दर्शन की बातें भी होती थी, तो कभी यूरोपियन दर्शन का प्रसंग चलता था। कभी वेदों, कभी पुराणों और कभी तंत्रों की कथाएं हुआ करती थी।
1: भूतों का कमरा ही उन लोगों के साधन भजन और वार्तालाप विवेचना आदि का मुख्य केंद्र था। यहाँ नरेंद्र नाथ के देव दुर्लभ स्वर का संगीत सुनकर सभी मुक्त हो जाते, भाव विभोर हो जाते। हरि नाम कीर्तन आदि भी यही होते। फिर संगीत शिक्षा, शास्त्र अध्ययन, भक्तों से सत चर्चा आदि से भी ये कमरा गूंजता रहता, और इन सभी कार्यों के केंद्रीय रत्न स्वयं नरेंद्र नाथ थे। सुंदर सुगठित उनका सबल शरीर, उनकी ज्योतिर्मय देह कांति, प्रशस्त ललाट पर प्रतिभा के चिन्ह, प्रशांत बदन में अंकित वीरत्व और दृढ़ संकल्प, विशाल युगल नयनों की अपूर्व मोहिनी शक्ति, बोलचाल में प्रस्फुटित एक स्वच्छंदता और आत्मविश्वास, तथापि वेशभूषा में वैराग्य की सुस्पष्ट छाप तथा आचार व्यवहार में निश्चलता, सहृदयता और दूसरों के प्रति श्रद्धा सदा व्यक्त होती रहती थी।
0: उनके चिंतन में अभ्युत साहस, गंभीर्य और प्रचुर ज्ञान का समावेश था। उनके कार्य में महावीर के समान क्लांतिहीनता और गुरु भक्ति थी। कुल मिलाकर यह नवीन युवक स्वतः ईश्वर निर्दिष्ट नेता प्रतीत होता, और बिना कहे भी किसी को उन्हें पहचानने में देर नहीं होती। कहने की आवश्यकता नहीं कि श्री राम कृष्ण के निर्देशानुसार नरेंद्र नाथ के प्रति अगाध्य प्रेम के फलस्वरूप और नरेंद्र के व्यक्तित्व के प्रभाव से युवक भक्तों ने बिना मीन मेक के और निर्विरोध रूप में उन्हें उच्च आसन प्रदान कर दिया था।
1: श्री राम कृष्ण की सेवा करने के लिए दीर्घ काल तक एक साथ रहने तथा साधन भजन आदि के द्वारा वे आपस में प्रेम के जिस बंधन में बंध चुके थे वे छिन्न नहीं हो सकता था। विशेष रूप से श्री रामकृष्ण के आदर्श की रक्षा करने के लिए नरेंद्र संगबद्ध होने की आवश्यकता समझकर बालकों को सदा उत्साह देने लगे। कोई कोई ग्रही भक्त उन लोगों को फिर से संसार में लौट जाने के लिए परामर्श देने लगे। कुछ बालक परीक्षा आदि के कारण अभिभावकों के अनुरोध से फिर से घर लौटने के लिए बाध्य हुए। नरेंद्र नाथ उस समय तक आर्थिक विषयों की भली भांति व्यवस्था ना कर सके, इसलिए उन्हें हर समय मठ में रहने का अवसर नहीं मिलता था। उनके मकान के बारे में जो मुकदमा शुरू हुआ था वो अभी समाप्त नहीं हुआ था, अतः नरेंद्र को बाध्य होकर ही घर में रहना पड़ता था। नरेंद्र की अनुपस्थिति में अभिभावक गण उनका उदाहरण देकर संसार में लौटने के लिए बालकों से आग्रह करने लगे। नरेंद्र स्वयं अपने परिवार की देखभाल करते थे, इसलिए उतने जोर के साथ वे प्रतिवाद ना कर सके।
0: इसी बीच एक नई विपत्ति आ खड़ी हुई। महात्मा रामचंद्र दत्त आदि कुछ भक्तों ने प्रस्ताव किया कि तुम लोग साधु संन्यासी हो, कब कहां रहोगे निश्चित नहीं है, श्री गुरुदेव के देहावशेष हमें दे दो, हम उसे उचित स्थान पर स्थापित करके मंदिर निर्माण करेंगे। राम बाबू ने काकुड़गाची के अपने बगीचे वाले मकान को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया था, पर बालक भक्तों ने किसी भी तरह गुरुदेव के देहावशेष को ग्रही भक्तों को देना स्वीकार नहीं किया। फलस्वरूप एक बड़ा झगड़ा उठ खड़ा हुआ। शशि और निरंजन उस ताम्र पात्र के रक्षक थे, वे किसी भी तरह से किसी दूसरे को देने को राजी न हुए। राम बाबू भी उसे पाने के लिए दल बल के साथ प्राणपण से चेष्टा करने लगे। झगड़े की संभावना को निकट देख बुद्धिमान नरेंद्र ने अपने गुरु भाइयों को बुला करके कहा,
2: महापुरुषों के देहावशेष के बारे में शिष्यों के विवाद धर्म जगत में कई बार हुए हैं, इसमें संदेह नहीं, परंतु इसलिए उसी पथ का अनुसरण करना हमारा कर्तव्य नहीं है। हम सन्यासी हैं। श्री रामकृष्ण के पवित्र जीवन से हमें जो महान आदर्श मिला है, उसी आदर्श को सामने रखते हुए जीवन को गढ़ना ही इस समय हमारा प्रधान कर्तव्य है, और यही हमारी सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। इस प्रकार की एक लज्जाजनक घटना की स्मृति कि श्री रामकृष्ण के शिष्यों ने देहावशेष पर कलह किया था, भविष्य की संतानों के लिए छोड़ जाना बहुत ही अनुचित है, अतः उन्हीं लोगों की इच्छा के अनुसार काम होने दो। यदि हम श्री रामकृष्ण का आदर्श कार्य रूप में परिणित कर सकें तो देखोगे समग्र जगत हमारे पैरों पर लौटेगा।
0: शशि महाराज ने नरेंद्र की इस बात का प्रतिवाद नहीं किया। देहावशिष्ट भस्म और अस्थि का कुछ भाग रख करके बाकी को तांबे के पात्र के साथ लौटाने के लिए वे सहमत हुए। अंत में शुभ दिन देख करके रामकृष्ण के ग्रही एवं सन्यासी भक्तों ने सम्मिलित होकर के काकुड़गाची के योग उद्यान में पवित्र ताम पात्र को स्थापित कर दिया। इस तरह गुरु भाइयों में प्रेम प्यार का जो सूत्र पात्र हुआ था, उसे प्रशंसनीय उदारता के द्वारा नरेंद्र नाथ ने अंकुर अवस्था में ही निवशिष्ट कर दिया।
1: इस प्रकार एक प्रबल विरोध को दूर कर नरेंद्र नाथ कुछ निश्चिंत हुए। नरेंद्र नाथ सांसारिक अभाव आदि के कारण बाध्य होकर घर में रहते तो जरूर थे, पर रात्रि और दिन का अधिकांश समय वो वराह नगर के मठ में बिताया करते थे। कलकत्ते में भी नरेंद्र नाथ केवल घर के ही काम में लिप्त ना रहते थे। जो सब सन्यासी युवक अभिभावकों के शासन से घर लौटकर परिवार वालों के साथ रहते थे तथा परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, अवसर पाते ही नरेंद्र उनसे भी मिल लेते थे और संसार के साथ सभी प्रकार का संबंध छिन्न करने के लिए उन्हें प्रेरित करते रहते थे। नरेंद्र के उपद्रव से अभिभावक गण चिंतित और अधीर हो उठे। भय तथा धमकी आदि से वे नरेंद्र नाथ को रोक न सके।
0: नरेंद्र के उत्साह और आदर से प्रेरित होकर के युवक गण फिर से एक एक करके मठ में लौट आए। नरेंद्र नाथ भी जहाँ तक संभव था तत्परता के साथ परिवार की व्यवस्था करने लगे। मकान के अधिकार को लेकर के उनके संबंधियों ने जो मुकदमा चलाया था उसका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। खैर, उक्त मुकदमे की अपील में भी नरेंद्र की विजय हुई। इसके साथ दिसंबर महीने के शुरू में संसार के साथ सभी संबंधों को छिन्न कर वे स्थायी रूप से मठ में आकर के रहने लगे। बाबू बलराम बासु, नाट्य सम्राट गिरीश चंद्र बोस, श्री राम कृष्ण वचनामृत के मूल लेखक महेंद्र नाथ गुप्त और सबसे बढ़कर सुरेंद्र नाथ मित्र प्राण प्रण से नवीन सन्यासियों को सहायता और उत्साह प्रदान करने लगे।
1: बिना भोजन बिना बिस्तर सभी प्रकार से शारीरिक सुख की उपेक्षा करते हुए दिव्य भाव में विभोर कुमार सन्यासी गण श्री गुरुदेव के पवित्र चरित्र और उपदेशों की चर्चा दर्शन शास्त्र वेदांत पुराण भागवत आदि का पाठ तथा जप ध्यान कठोर तपस्या आदि में रत हो गए। श्री गुरुदेव के मृत्यु से व्यथित भक्तों के लिए अब नरेंद्रनाथ ही एकमात्र सहारा आशा और भरोसे के केंद्र थे।
0: वे ही नव प्रतिष्ठित मठ के माता पिता रक्षक भृत्य पालक सभी कुछ थे। कभी धर्म चर्चा में लगे हुए भाइयों को डरा धमका कर भोजन करने के लिए बाध्य करते, कभी किसी को जबरदस्ती स्नान कराते, तो कभी लगातार रात भर से जागते हुए किसी ध्यान मग्न सन्यासी को बलपूर्वक पकड़कर बिस्तर पे लाकर के सुला देते। यदि वे इस प्रकार से प्रत्येक का ख्याल न रखते तो उनमें से कई कठोर तपस्या के कारण शरीर छोड़कर चले गए होते।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर आधारित कार्यक्रम।

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है और अब जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे वैदिक ऋचाओं पर आधारित कार्यक्रम अक्षय निधि के साथ। उसके बाद शाम 5:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा। शाम 6 बजे कार्यक्रम वतन का राग आज केंद्रित होगा भारत छोड़ो आंदोलन दिवस पर। शाम 6:30 पर इतिहास के पन्नों से कार्यक्रम में आज हम गोंड राजा संग्राम शाह के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे। इस कार्यक्रम में जानकारी देंगी डॉक्टर पूजा सक्सेना इतिहासविद और इनसे बातचीत करेंगी सुनीता शर्मा। शाम 7 बजे योग संवाद कार्यक्रम में आज का विषय होगा योग वशिष्ठ, श्री राम को उपदेश हेतु विश्वामित्र जी का अनुरोध। जानकारी देंगे जीवन कला विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी और इनसे बातचीत करेंगी सुनीता सिंह। शाम 7:30 पर भारत विभूति कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम भक्तिकालीन कवियों के बारे में जानेंगे कार्यक्रम अमन के सिपाही के अंतर्गत। रात्रि के 8 बजे भोपाल में आयोजित ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव की रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण होगा और 8:30 पर आजाद हिंद कार्यक्रम में आज हम स्वाधीनता संग्राम सेनानी गंगाधर मेहर के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे। रात्रि के 9 बजे सुर सागर कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम गायन सुनेंगे, कलाकार होंगे स्वाति तिवारी और डॉक्टर ऋषि मिश्र। रात्रि के 9:30 पर स्वामी विवेकानंद के जीवन और आदर्शों पर आधारित कार्यक्रम युग प्रवर्तक। तो ये थी जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की, जिन्हें आप शाम 5 बजे से रात्रि के 10 बजे तक सुन सकेंगे। 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा संपन्न होती है। हमारी सांध्यकालीन सेवा शाम 5 बजे आरंभ होगी। तब तक आप हमारे केंद्र से देशभक्ति गीत एवं अन्य सांगीतिक प्रस्तुतियों का आनंद लेते रहें।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं अनामिका पांडे का बुंदेली फाग गायन।

एक बहुत सुंदर सी रचना ऋतुराज महाछवि छाई अली लीजिए, स्वरवही कुमारी अनामिका पांडे।

इस वसंत गीत के बाद तो हम चलते हैं वृंदावन की ओर, जहाँ भगवान कन्हैया के सखा साथ में और उधर राधा जी के साथ सभी सखियाँ एक सुंदर सा गीत, सखियाँ सब मिलती हैं, कान्हा जी को पकड़ती हैं और कहती हैं कि रसिया खां नार बनाओ री रसिया खां। लीजिए इस भाग से, इस भाग गायन की शुरुआत होती है, सुनिए आप।

0: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना अनामिका पांडे का बुंदेली फाग गायन। दीजिए कार्यक्रम भारत भारती से इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थीं, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम सुनो कहानी। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं कहानी भूत। कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद।

मुरादाबाद के पंडित सीतानाथ चौबे गत 30 वर्षों से वहां के वकीलों के नेता हैं। उनके पिता उन्हें बाल्यावस्था में ही छोड़कर परलोक सिधारे थे। घर में कोई संपत्ति न थी। माता ने बड़े बड़े कष्ट झेलकर उन्हें पाला और पढ़ाया। सबसे पहले वो कचहरी में 15 रुपए मासिक पर नौकर हुए, फिर वकालत की परीक्षा दी, पास हो गए। प्रतिभा थी, 2 ही 4 वर्षों में वकालत चमक उठी। जब माता का स्वर्गवास हुआ तब पुत्र का शुमार जिले के गणमान्य व्यक्तियों में हो गया था। उनकी आमदनी 1000 रुपए महीने से कम न थी। एक विशाल भवन बनवा लिया था, कुछ जमींदारी ले ली थी, कुछ रुपए बैंक में रख दिए थे और कुछ लेन देन में लगा दिए। इस समृद्धि पर 4 पुत्रों का होना उनके भाग्य को आदर्श बनाए हुए था। 4 लड़के भिन्न भिन्न दर्जों में पढ़ते थे, मगर ये कहना कि सारी विभूति चौबे जी के अनवरत परिश्रम का फल था, उनकी पत्नी मंगला देवी के साथ अन्याय करना है। मंगला बड़ी सरल, गृह कार्य में कुशल और पैसे का काम धेले में चलाने वाली स्त्री थी। जब तक अपना घर न बन गया उसने 3 महीने से अधिक का मकान किराए पर नहीं लिया, और रसोई के लिए मिसराइन तो उसने अब तक न रखी थी। उसे अगर कोई व्यसन था तो गहनों का, और चौबे जी को भी अगर कोई व्यसन था तो स्त्री को गहने पहनाने का। वो सच्चे पत्नी परायण पुरुष थे। साधारणतः महफिलों में वैश्याओं से हंसी मजाक कर लेना उतना बुरा नहीं समझा जाता, पर पंडित जी अपने जीवन में कभी नाच गाने की महफिल में गए ही नहीं। 5 बजे तड़के से लेकर 12 बजे रात तक उनका व्यसन मनोरंजन, पढ़ना लिखना, अनुशीलन, जो कुछ था कानून था। न उन्हें राजनीति से प्रेम था, न जाति सेवा से। ये सभी कार्य उन्हें व्यर्थ जान पड़ते थे। उनके विचार में अगर कोई काम करने लायक था तो वो बस कचहरी जाना, बहस करना, रुपए जमा करना और भोजन करके सो रहना। जैसे वेदांति को ब्रह्म के अतिरिक्त जगत मिथ्या जान पड़ता है, वैसे ही चौबे जी को कानून के सिवा सारा संसार मिथ्या प्रतीत होता था। सब माया थी, बस एक कानून ही सत्य था। चौबे जी के मुख चंद्र में केवल एक कला की कमी थी, उनके कोई कन्या न थी। पहलौठी कन्या के बाद फिर कन्या हुई ही नहीं, और न अब होने की आशा ही थी। स्त्री और पुरुष दोनों उस कन्या को याद करके रोया करते थे। लड़कियां बचपन में लड़कों से ज्यादा चोचले करती हैं, उन चोचलों के लिए दोनों प्राणी विकल रहते। माँ सोचती, लड़की होती तो उसके लिए गहने बनवाती, उसके बाल गूंथती। लड़की पैजनियां पहन के ठुमक ठुमक आंगन में चलती तो कितना आनंद आता। चौबे सोचते, कन्यादान के बिना मोक्ष कैसे होगा। कन्यादान महादान है, जिसने ये दान न दिया उसका तो जन्म ही वृथा गया। आखिर ये लालसा इतनी प्रबल हुई कि मंगला ने अपनी छोटी बहन को बुलाकर कन्या की भांति पालने का निश्चय किया। उसके माँ बाप निर्धन थे, राजी हो गए। ये बालिका मंगला की सौतेली माँ की कन्या थी। बड़ी ही सुंदर और बड़ी चंचल थी। नाम था बिन्नी। चौबे जी का घर उसके आने से खेल उठा। 2-4 ही दिनों में लड़की अपने माँ बाप को भूल गई। उसकी उम्र तो केवल 4 वर्ष की थी, पर उसे खेलने की अपेक्षा कुछ काम करना अच्छा लगता था। मंगला रसोई बनाने जाती तो बिन्नी भी उसके पीछे पीछे जाती, उससे आटा गूंथने के लिए झगड़ा करती। तरकारी काटने में उसे बड़ा मजा आता था। जब तक वकील साहब घर पर रहते तब तक वो उनके साथ दीवान खाने में बैठी रहती। कभी किताब उलटती, कभी दवात कलम से खेलती। चौबे जी मुस्कुराकर कहते, बेटी
मार खाओगी। और बिन्नी कहती, तुम मार खाओगे, मैं तुम्हारे कान काट लूंगी, जूजू को बुलाकर पकड़ा दूंगी। इस तरह दीवान खाने में खूब कहकहे उठते। वकील साहब कभी इतने वात्सल्यमय न थे। जब बाहर से आते तो कुछ न कुछ सौगात बिन्नी के वास्ते जरूर लाते और घर में कदम रखते ही पुकारते। बिन्नी बेटी दौड़ती हुई आकर उनकी गोद में बैठ जाती। मंगला एक दिन बिन्नी को लिए बैठी थी। इतने में पंडित जी आ गए। बिन्नी दौड़कर उनकी गोद में जा बैठी। पंडित जी ने पूछा, तू किसकी बेटी है? बिन्नी ने कहा, ना बताऊंगी। मंगला ने कहा, कह दे बेटा, जी जी की बेटी हूं। पंडित जी ने कहा, तू मेरी बेटी है बिन्नी कि इनकी? बिन्नी ने फिर जवाब दिया, ना बताऊंगी। पंडित जी ने कहा, अच्छा, अब हम लोग आंख बंद किए बैठे हैं। भाई बिन्नी जिसकी बेटी होगी उसकी गोद में बैठ जाएगी। बिन्नी उठी और फिर चौबे जी की गोद में बैठ गई। पंडित जी ने कहा, मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, अब ना कहना कि मेरी बेटी है, सुन रही हो? मंगला ने कहा, अच्छा जाओ बिन्नी, अब तुम्हें मिठाई न दूंगी, गुड़िया भी न मंगा दूंगी। बिन्नी ने कहा, भैया जी मंगवा देंगे, तुम्हें न दूंगी। वकील साहब ने हंसकर बिन्नी को छाती से लगा लिया और गोद में लिए हुए बाहर चले गए। वो अपने इष्ट मित्रों को भी इस बाल क्रीड़ा का रसास्वादन कराना चाहते थे। आज से जो कोई भी बिन्नी से पूछता कि तू किसकी बेटी है, तो बिन्नी झट से कह देती, भैया की। एक बार बिन्नी का बाप आकर उसे अपने साथ ले गया। बिन्नी ने रो रो कर दुनिया सिर पर उठा ली। इधर चौबे जी को भी दिन काटना कठिन हो गया। एक महीना भी न गुजरने पाया था कि वो फिर ससुराल गए और बिन्नी को ले आए। बिन्नी अपनी माता और पिता को भूल गई। वो चौबे जी को अपना बाप और मंगला को अपनी माँ समझने लगी। जिन्होंने उसे जन्म दिया था वे अब गैर हो गए। कई साल गुजर गए। वकील साहब के बेटों के विवाह हुए। उनमें से दो अपने बाल बच्चों को लेकर अन्य जिलों में वकालत करने चले गए। दो कॉलेज में पढ़ते थे। बिन्नी भी कली से फूल हुई। ऐसी रूप गुणशील वाली बालिका बिरादरी में और न थी। पढ़ने लिखने में चतुर, घर के काम धंधों में कुशल, बूटे कसीदे और सीने पिरोने में दक्ष, पाक कला में बिल्कुल निपुण, मधुर भाषणी, लज्जाशील, अनुपम रूप की राशि। अंधेरे घर में उसके सौंदर्य की दिव्य ज्योति से उजाला हो जाता था। उषा की लालिमा में, ज्योत्सना की मनोहर छटा में, खिले हुए गुलाब के ऊपर सूर्य की किरणों से चमकते हुए तुषार बिंदु में भी वो प्राणप्रद सुषमा और शोभा न थी। श्वेत हेम मुकुटधारी पर्वतों में भी वो शीतलता नहीं थी जो बिन्नी अर्थात विंध्येश्वरी के विशाल नेत्रों में थी। चौबे जी ने बिन्नी के लिए सुयोग्य वर खोजना शुरू किया। लड़कों की शादी में दिल का अरमान वो निकाल चुके थे। अब कन्या के विवाह में हौसले पूरे करना चाहते थे। धन लुटाकर कीर्ति पा चुके थे। अब दान दहेज में नाम कमाने की लालसा थी। बेटे का विवाह कर लेना आसान है, पर कन्या के विवाह में आबरू निभा ले जाना कठिन। नौका पर सभी यात्रा करते हैं, जो तैर कर नदी पार करे वही प्रशंसा का अधिकारी है। धन की कमी न थी। अच्छा घर और सुयोग्य वर मिल गया। जन्म पत्र मिल गए, बानक बन गया, फलदान और तिलक की रस्में भी अदा कर दी गईं। पर हाय रे दुर्दैव, कहां तो विवाह की तैयारी हो रही थी। द्वार पर दर्जी, सुनार, हलवाई सब अपना अपना काम कर रहे थे, और कहां निर्दय विधाता ने और ही लीला रच दी। विवाह के एक सप्ताह पहले मंगला अनायास बीमार पड़ी। 3 ही दिन में अपने सारे अरमान लिए
वो परलोक सिधार गई। संध्या घिर आई थी। मंगला चारपाई पर पड़ी हुई थी। बेटे बहुएं, पोते पोतियां सब चारपाई के चारों ओर खड़े थे। बिन्नी पैताने बैठी मंगला के पैर दबा रही थी। मृत्यु के समय की भयंकर निस्तब्धता छाई हुई थी। कोई किसी से न बोलता था। दिल में सब समझ रहे थे क्या होने वाला है। केवल चौबे जी वहां न थे। सहसा मंगला ने इधर उधर इच्छापूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, जरा उन्हें बुला दो, कहाँ हैं? पंडित जी अपने कमरे में बैठे रो रहे थे। संदेश पाते ही आंसू पोंछते हुए वो उस कमरे में आए और बड़े धैर्य के साथ मंगला के सामने हो गए। डर रहे थे कि मेरी आंखों से आंसू की एक बूंद भी निकली तो घर में हाहाकार मच जाएगा। मंगला ने कहा, एक बात पूछती हूँ, बुरा न मानना। बिन्नी, बिन्नी तुम्हारी कौन है? पंडित जी ने कहा, बिन्नी कौन है? मेरी बेटी है, और कौन? मंगला ने कहा, हाँ मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहती थी। उसे सदा अपनी बेटी समझते रहना। उसके विवाह के लिए मैंने जो जो तैयारियां की थी उसमें कुछ भी काट छाट मत करना। पंडित जी ने कहा, इसकी कुछ चिंता ना करो। ईश्वर ने चाहा तो उससे कुछ ज्यादा धूमधाम के साथ विवाह होगा। मंगला ने कहा, सुनो, उसे हमेशा बुलाते रहना। तीज त्योहार में कभी कभी मत भूलना उसे। पंडित जी ने जवाब दिया, इन बातों की मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मंगला ने कुछ सोचकर फिर कहा, अच्छा सुनो, इसी साल विवाह कर देना। पंडित जी ने कहा, इस साल कैसे होगा? मंगला ने जवाब दिया, ये फागुन का महीना है, जेठ तक लगन है। पंडित जी ने कहा, हो सकेगा तो इसी साल कर दूंगा। मंगला ने फिर कहा, हो सकने की बात नहीं, जरूर कर देना। और पंडित जी ने कहा, कर दूंगा। और इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। बुढ़ापे में पत्नी का मरना, बरसात में घर का गिरना है, फिर उसके बनने की आशा नहीं होती। मंगला की मृत्यु से पंडित जी का जीवन अनियमित, बिल्कुल तितर बितर हो गया। लोगों से मिलना जुलना छूट गया। कई कई दिन कचहरी ही नहीं जाते, जाते भी तो बड़े आग्रह से। भोजन से भी अरुचि हो गई। विंध्येश्वरी उनकी दशा देख देख कर दिल में कुढ़ती और यथासमय उनका दिल बहलाने की चेष्टा करती थी। वो उन्हें आग्रह अनुरोध के साथ खिलाती थी। जब तक वो कुछ खा न लेते वो कुछ न खाती थी। गर्मी के दिन थे ही, रात को बड़ी देर तक उनके पैताने बैठी पंखा चला करती, और जब तक वो सो न जाते तब तक वो भी सोने न जाती। वो जरा भी सिरदर्द की शिकायत करते और वो तुरंत उनके सिर में तेल डालती। यहां तक कि रात को जब उन्हें प्यास लगती तब खुद दौड़ कर आती और उन्हें पानी पिलाती। धीरे धीरे चौबे जी के हृदय में मंगला केवल एक सुख की स्मृति रह गई। एक दिन चौबे जी ने बिन्नी को मंगला के सब गहने दे दिए। मंगला का ये अंतिम आदेश था। बिन्नी फूली न समाई। उसने उस दिन खूब बनाव श्रृंगार किया। जब संध्या के समय पंडित जी कचहरी से आए तो वो गहनों से लदी हुई
उनके सामने कुछ लजाती और मुस्कुराती हुई आकर खड़ी हो गई। पंडित जी ने सतृष्ण नेत्रों से देखा। विंधेश्वरी के प्रति जब उनके मन में एक नया भाव अंकुरित हो रहा था। मंगला जब तक जीवित थी वो उनसे पिता पुत्री के भाव को सहज और पुष्ट कराती रहती थी। अब मंगला न थी, अतएव वो भाव दिन दिन शिथिल होता जाता था। मंगला के सामने बिन्नी एक बालिका थी। मंगला की अनुपस्थिति में वो एक रूपवती युवती थी, लेकिन सरल हृदया बिन्नी को इसकी रत्ती भर भी खबर न थी कि भैया के भावों में क्या परिवर्तन हो रहा है। उसके लिए वो वही पिता के तुल्य भैया थे। वो पुरुषों के स्वभाव से अनभिज्ञ थी। नारी चरित्र में अवस्था के साथ मातृत्व का भाव दृढ़ होता जाता है। यहां तक कि एक समय ऐसा भी आता है जब नारी की दृष्टि में युवक मात्र पुत्र तुल्य हो जाते हैं। उसके मन में विषय वासना का लेश भी नहीं रह जाता, किंतु पुरुषों में ये अवस्था कभी नहीं आती। उनकी कामेंद्रियां क्रियाहीन भले ही हो जाएं, पर विषय वासना संभवतः और भी बलवती होती जाती है। त्यों त्यों ग्रीष्म ऋतु के अंतिम काल की भांति उसकी वासना की गर्मी भी प्रचंड होती जाती है। वो तृप्ति के लिए नीच साधनों का सहारा लेने को भी प्रस्तुत हो जाता है। जवानी में मनुष्य इतना नहीं गिरता, उसके चरित्र में गर्व की मात्रा अधिक रहती है। जो नीच साधनों से घृणा करते हैं वो किसी के घर में घुसने के लिए जबरदस्ती कर सकता है, किंतु परनाले के रास्ते नहीं जा सकता। पंडित जी ने बिन्नी को सतृष्ण नेत्रों से देखा और अपनी इस उच्छृंखलता पर लज्जित होकर आंखें नीची कर ली। बिन्नी इसका कुछ मतलब ना समझ सकी। पंडित जी बोले, तुम्हें देखकर मुझे मंगला की उस समय की याद आ रही है जब वो विवाह के समय यहाँ आई थी। बिल्कुल ऐसी सूरत थी, यही गोरा रंग, यही प्रसन्न मुख, यही कोमल गाल, यही लजीली आंखें। वो चित्र अभी तक मेरे हृदय पट पर खींचा हुआ है, कभी नहीं मिट सकता। ईश्वर ने तुम्हारे रूप में मेरी मंगला मुझे फिर दे दी। बिन्नी ने कहा, आपके लिए क्या जलपान लाऊं? पंडित जी ने कहा, ले आना, अभी बैठो, मैं बहुत दुखी हूं। तुमने मेरे शोक को भुला दिया है, वास्तव में तुमने मुझे जिला दिया है। नहीं तो मुझे आशा न थी कि मंगला के पीछे मैं जीवित रहूंगा। तुमने मुझे प्राण दान दिया है। नहीं जानता तुम्हारे चले जाने के बाद मेरी क्या दशा होगी। बिन्नी ने कहा, कहाँ चले जाने के बाद? मैं तो कहीं नहीं जा रही हूं। पंडित जी ने कहा, क्यों, तुम्हारे विवाह की तिथि आ रही है, चली ही जाओगी? बिन्नी सकुचाती हुई बोली, ऐसी जल्दी क्या है? पंडित जी ने कहा, जल्दी क्यों नहीं, जमाना हंसेगा। बिन्नी ने जवाब दिया, हंसने दीजिए, मैं यही आपकी सेवा करती रहूंगी। पंडित जी ने कहा, नहीं बिन्नी, मेरे लिए तुम क्यों हलकान होगी? मैं अभागा हूं, जब तक जिंदगी है जीऊंगा, चाहे रोकर जीऊं चाहे हंसकर। हंसी मेरे भाग्य से उठ गई, तुमने इतने दिनों संभाल लिया, यही क्या कम एहसान किया है? मैं ये जानता हूं कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी कोई खबर लेने वाला नहीं होगा। ये घर तहस नहस हो जाएगा और मुझे ये घर छोड़कर भागना पड़ेगा। पर क्या किया जाए, लाचारी है। तुम्हारे बिना अब मैं यहां क्षण भर भी नहीं रह सकता। मंगला की खाली जगह को तुमने पूरा किया, अब तुम्हारा स्थान कौन पूरा करेगा?
बिन्नी ने कहा, क्या क्या इस साल रुक नहीं सकते? मैं इस दशा में आपको छोड़कर न जाऊंगी। पंडित जी ने कहा, अपने बस की बात नहीं है, वो लोग आग्रह करेंगे तो मजबूर होकर करना ही पड़ेगा। बिन्नी ने जवाब दिया, बहुत जल्दी मचाए तो आप कह दीजिएगा आप नहीं करेंगे, उन लोगों के जो जी में आए करें। यहां कोई उनका दबैल बैठा हुआ है? पंडित जी ने कहा, वे लोग अभी से आग्रह कर रहे हैं। बिन्नी ने तुरंत जवाब दिया, आप फटकार क्यों नहीं देते? पंडित जी ने कहा, करना तो है ही, फिर विलंब क्यों करूं? ये दुख और वियोग तो एक दिन होना ही है, अपनी विपत्ति का भार तुम्हारे सिर क्यों रखूं? बिन्नी ने जवाब दिया, दुख सुख में काम ना आऊंगी तो फिर मैं किस दिन काम आऊंगी?

0: पर वो मेरी पुत्री है तो नहीं? इस तरह समझने से क्या होता है? कौन जाने ईश्वर को यही मंजूर हो, नहीं तो बिन्नी यहां आती ही क्यों? उसने इसी बहाने से ये संयोग निश्चित कर दिया होगा। उसकी लीला तो अपरंपार है। पंडित जी ने वर के पिता को सूचना दे दी कि कुछ विशेष कारणों से इस साल विवाह नहीं हो सकता। विंधेश्वरी को अभी तक कुछ खबर न थी कि मेरे लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। वो खुश थी कि मैं भैया जी की सेवा कर रही हूँ और भैया जी मुझसे प्रसन्न हैं। बहन का इन्हें बड़ा दुख है, मैं ना रहूंगी तो ये कहीं चले जाएंगे और कौन जाने साधु सन्यासी न हो जाएं, घर में कैसे मन लगेगा। वो पंडित जी का मन बहलाने का निरंतर प्रयत्न करती रहती थी, उन्हें कभी मन मारे न बैठने देती। पंडित जी का मन अब कचहरी में न लगता था, घंटे दो घंटे बैठकर वापस चले आते। युवकों के प्रेम में विकलता होती है और वृद्धों के प्रेम में श्रद्धा। वे अपनी यौवन की कमी को खुशामद से, मीठी बातों से और हाजिर जवाबी से पूर्ण करना चाहते हैं। मंगला को मरे अभी 3 महीने ही गुजरे थे कि चौबे जी ससुराल पहुंचे। सास ने मुँह मांगी मुराद पाई। उसके 2 पुत्र थे, घर में कुछ पूंजी न थी, उनके पालन और शिक्षा के लिए कोई ठिकाना नजर न आया। मंगला मर ही चुकी थी। लड़की का ज्यों ही विवाह हो जाएगा वो अपने घर को ही रहेगी, फिर चौबे जी से नाता ही टूट जाएगा। वो इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि चौबे जी पहुंचे, मानो देवता स्वयं वरदान देने आए हों। जब चौबे जी भोजन करके लेटे तो सास ने कहा, भैया कहीं बातचीत हुई कि नहीं? पंडित जी ने कहा, अम्मा अब मेरे विवाह की बातचीत क्या होगी? सास ने कहा, क्यों भैया, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? पंडित जी ने जवाब दिया, करना भी चाहूं तो बदनामी के डर से नहीं कर सकता, फिर मुझे पूछता ही कौन है? सास ने कहा, पूछने को तो हजारों हैं, दूर क्यों जाओ, अपने घर में ही लड़की बैठी है। सुना है तुमने मंगला के सब गहने बिन्नी को दे दिए हैं, कहीं और विवाह हुआ तो ये कई हजार की चीजें तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगी। तुमसे अच्छा घर मैं कहाँ पाऊंगी, तुम उसे अंगीकार कर लो तो मैं तर जाऊं। अंधा क्या मांगे दो आंखें। चौबे जी ने मानो विवश होकर सास की प्रार्थना स्वीकार कर ली। बिन्नी अपने घर के कच्चे मकान में अपनी माँ के पास बैठी हुई है। अब की चौबे जी ने उसकी सेवा के लिए एक लौंडी भी साथ कर दी है। विंधेश्वरी के दोनों छोटे भाई विस्मित हो होकर उसके आभूषणों को देख रहे हैं। गांव की और कई स्त्रियां उसे देखने आई हुई हैं और उसके रूप लावण्य का विकास देखकर चकित हो रही हैं। ये वही बिन्नी है जो यहाँ मोटी फरिया पहने खेला करती थी। रंग रूप कैसा निखर आया है, सुख की देह लगती है ना। जब भीड़ कम हुई, एकांत हुआ तो माता ने पूछा, तेरे भैया जी तो अच्छी तरह से है ना बेटी? यहाँ आए थे तो बहुत दुखी थे, मंगला का शोक उन्हें खाए जाता है। संसार में ऐसे भी मर्द होते हैं जो स्त्री के लिए प्राण दे देते हैं, नहीं तो यहाँ स्त्री मरी और चट दूसरा ब्याह रच गया। मानो मनाते रहते हैं कि ये मरे तो नई नवेली बहू घर आए। विंधेश्वरी ने कहा, उन्हें याद करते करते बहुत रोया करते हैं, चली आई हूं ना, न जाने कैसे होंगे। माता ने कहा, मुझे भी तो यही डर लगता है कि तेरा ब्याह हो जाने पर कहीं घबरा कर साधु फकीर न हो जाए। विंधेश्वरी ने जवाब दिया, मुझे भी यही डर लगता है, इसी से तो मैंने मना कर दिया कि अभी जल्दी क्या है शादी की। माता ने कहा, जितने ही दिन उनकी सेवा करोगी उतना ही स्नेह बढ़ेगा और तुम्हारे जाने से उन्हें उन्हें उतना ही दुख भी अधिक होगा। बेटी, सच तो ये है कि वो तुम्ही को देखकर जीते हैं। इधर तुम्हारी डोली उठी और उधर उधर उनका घर सत्यानाश हुआ। मैं तुम्हारी जगह होती तो उन्हीं से ब्याह कर लेती। विंधेश्वरी ने जोर से कहा, ए, हटो अम्मा, गाली देती हो। उन्होंने मुझे बेटी की तरह पाला है और मैं भी उन्हें पिता। चुप रह पगली, कहने से क्या होता है, माँ ने दलील दी। विंधेश्वरी ने कहा, अरे अरे सोच तो अम्मा, कितनी बेढंगी बात है। माता ने कहा, मुझे तो इसमें कोई बेढंगापन नजर नहीं आता। विंधेश्वरी ने बेचैन होकर कहा, क्या कहती हो अम्मा, उनसे उनसे मेरा, मैं तो लाज के मारे मर जाऊं, उनके सामने ताक न सकूंगी। और वो भी कभी न मानेंगे, मानने की बात भी तो हो कोई। माँ ने कहा, उनका जिम्मा मैं लेती हूँ, मैं उन्हें राजी कर लूंगी, बस तू राजी हो जा। याद रख, ये कोई हंसी खुशी का ब्याह नहीं है, उनकी प्राण रक्षा की बात है, जिसके सिवा संसार में हमारा और कोई नहीं है। फिर अभी उनकी कुछ ऐसी उम्र भी तो नहीं है, 50 से 2 ही 4 साल ऊपर होंगे। उन्होंने एक ज्योतिषी से पूछा भी था, उसने उनकी कुंडली देखकर बताया है कि आपकी जिंदगी कम से कम 70 साल की है। देखने सुनने में भी वो 100-200 के आदमी हैं। बातचीत में चतुर माता ने कुछ ऐसा शब्द व्यूह रचा कि सरल बालिका उसमें से निकल न सकी। माता जानती थी कि प्रलोभन का जादू इस पर न चलेगा। धन का, आभूषण का, कुल सम्मान का, सुखमय जीवन का उसने जिक्र तक न किया। उसने केवल चौबे जी की दयनीय दशा पर जोर दिया। अंत में विंधेश्वरी ने कहा, अम्मा, मैं जानती हूं कि मेरे न रहने से उनको बड़ा दुख होगा। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे जीवन में सुख नहीं लिखा है। अच्छा, उनके हित के लिए मैं अपना जीवन बलिदान कर दूंगी। ईश्वर की यही इच्छा है तो यही सही माँ।
1: चौबे जी के घर में मंगल गान हो रहा था।

विंधेश्वरी आज वधु बनकर इस घर में आई है। कई वर्ष पहले वो चौबे जी की पुत्री बनकर आई थी। उसने कभी स्वप्न में भी न सोचा था कि मैं एक दिन इस घर की स्वामिनी बनूंगी। चौबे जी की सजधज आज देखने योग्य है। तंजेब का रंगीन कुर्ता, कतरी हुई समरी हुई मूछें, खिजाब से चमकते हुए बाल, हंसता हुआ चेहरा, चढ़ी आंखें, यौवन का पूरा स्वांग था। रात बीत चुकी थी। विंधेश्वरी आभूषणों से लदी हुई, भारी जोड़े पहने, फर्श पर सिर झुकाए बैठी। उसे कोई उत्कंठा न थी, भय न था, केवल एक संकोच था कि मैं उनके सामने कैसे मुंह खोलूंगी। उनकी गोद में खेली हूं, उनके कंधों पर बैठी हूं, उनकी पीठ पर सवार हुई हूं, कैसे उन्हें मुंह दिखलाऊंगी। अगर मैं पिछली बातें सोचूं तो ईश्वर उन्हें प्रसन्न रखे जिसके लिए मैंने पुत्री बनना स्वीकार किया। वो पूर्ण हो, उनका जीवन आनंद से व्यतीत हो। इतने में चौबे जी आए। विंधेश्वरी उठ खड़ी हुई। उसे इतनी लज्जा आई कि जी चाहा कि कहीं भाग जाए, खिड़की से नीचे कूद पड़े। चौबे जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, बिन्नी, मुझसे डरती हो? बिन्नी कुछ न बोली, मूर्ति की तरह खड़ी रही। एक क्षण में चौबे जी ने उसे बिठा दिया। वो बैठ गई। उसका गला भर भर आता था। भाग्य की ये निर्दय लीला, ये क्रूर क्रीड़ा उसके लिए असह्य हो रही थी। पंडित जी ने पूछा, बिन्नी बोलती क्यों नहीं, क्या मुझसे नाराज हो? विंधेश्वरी ने अपने कान बंद कर लिए। यही परिचित आवाज वो कितने दिनों से सुनती चली आ रही थी। आज वो व्यंग्य से भी तीव्र और उपहास से भी कटु प्रतीत होती थी। सहसा पंडित जी चौंक पड़े, आंखें फैल गईं और दोनों हाथ मेढक के पैरों की भांति सिकुड़ गए। वो दो कदम पीछे हट गए। खिड़की से मंगला अंदर झांक रही थी। छाया नहीं, मंगला थी। सदेह, साकार, सजीव। चौबे जी कांपती हुई टूटी फूटी आवाज में बोले, बिन्नी देखो देखो वो क्या है। बिन्नी ने घबराकर खिड़की की ओर देखा। कुछ न था। फिर कहा, क्या है, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता। चौबे जी ने कहा, अब गायब हो गई, अब गायब हो गई, लेकिन ईश्वर जानता है, मंगला थी। बिन्नी ने कहा, बहन? चौबे जी ने जवाब दिया, हाँ हाँ वही थी, खिड़की से अंदर झांक रही थी। देख देख, मेरे तो रोई कड़े हो गए। विंधेश्वरी कांपती हुई बोली, मैं यहां नहीं रहूंगी।

मानो उसके सामने कोई अभिनय हो रहा हो। चौबे जी ने कांपते हुए कहा, बिन्नी फिर वही बात हुई, वो देखो मंगला खड़ी है। विंधेश्वरी चीख कर उनके गले से चिमट गई। चौबे जी ने महावीर का नाम जपते हुए कहा, मैं किवाड़ बंद किए देता हूँ। बिन्नी ने कहा, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं इस घर में नहीं रहूंगी भैया जी। तुमने बहन के अंतिम आदेश को नहीं माना, इसी से उनकी आत्मा दुखी हो रही है। मुझे तो किसी अमंगल की आशंका हो रही है भैया जी। चौबे जी ने उठकर खिड़की के द्वार बंद कर दिए और कहा, मैं कल से दुर्गा पाठ करवाऊंगा। आज तक कभी ऐसी शंका न हुई थी, तुमसे क्या कहूं, मालूम होता है होगा। उस बात को जाने दो, यहां बड़ी गर्मी पड़ रही है, अभी पानी गिरने को 2 महीने से कम नहीं है। हम लोग मसूरी क्यों ना चले। विंधेश्वरी ने कहा, मेरा तो कहीं जाने का जी नहीं करता, कल से दुर्गा पाठ जरूर कराना, मुझे अब इस कमरे में नींद ना आएगी। पंडित जी ने कहा, ग्रंथों में तो यही देखा है कि मरने के बाद केवल सूक्ष्म शरीर रह जाता है, फिर समझ में नहीं आता ये स्वरूप क्यों कर दिखाई देता है। मैं सच कहता हूं बिन्नी, अगर तुमने मुझ पर ये दया न की होती तो मैं कहीं का न रहता। शायद इस वक्त मैं बद्रीनाथ के पहाड़ों में सिर टकरा रहा होता, या कौन जाने विष खाकर प्राणांत कर चुका होता। विंधेश्वरी ने कहा, मंसूरी में किसी होटल में ठहरना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा, नहीं, मकान भी मिलते हैं, मैं अपने एक मित्र को लिखे देता हूँ, वो कोई मकान ठीक कर रखेंगे वहां। बात पूरी भी न होने पाई थी कि न जाने कहां से जैसे आकाशवाणी हो आवाज आई, बिन्नी तुम्हारी पुत्री है। चौबे जी ने दोनों

0: निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं चाहा था, मैंने कुछ नहीं चाहा था।
1: पंडित जी ने कहा।
0: बिन्नी,
1: फिर वही आवाज आ रही है, फिर वही आवाज आ रही है। बिन्नी,
0: हाय ईश्वर, मैं सुन नहीं सकता, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे तो रोम रोम से वही शब्द गूंज रहे हैं।
1: बिन्नी, बिन्नी बुरा किया,
0: मंगला सती थी, उसके आदेश की उपेक्षा करके मैंने अपने हक में जहर बोया है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ।
1: ये कहकर पंडित जी ने कमरे के किवाड़ खोल दिए और बेतहाशा वो भागने लगे। अपने मर्दाने कमरे में पहुंचकर वो गिर पड़े, उन्हें मूर्छा आ गई। विंधेश्वरी भी दौड़ी, वो चौखट से बाहर निकलते ही गिर पड़ी।

0: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी भूत। इसके साथ ही सुनो कहानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। आज के इस कार्यक्रम में दोस्तों हम आपको सुनवा रहे हैं उर्मिला पांडे और साथी कलाकारों का बुंदेली गायन।
3: जो सोहर गीत मैं गा रही हूँ वो बुंदेलखंड का बहुत ही प्रसिद्ध सोहर गीत है। कहीं कहीं इसको बधाई गीत भी कहते हैं। तो आपके सामने ये बधाई प्रस्तुत है। दो लाइनें मां की।

एक लोक शैली में एक सुंदर सा गीत बहन उर्मिला पांडे जी और उनके सभी साथी कलाकार।

और अगला गीत आपकी सेवा में, ये वसंत ऋतु जो अपने बीच है उस ओर चलते हैं, जो बिहारी जी की रचना है, ऋतुराज महाछवि छाए अली, लीजिए बहन और

भोलानाथ वरा सजी है, लीजिए इस गाड़ी को बहन उर्मिला पांडे जी और उनके सभी साथी कलाकार।

भगवान भोले बाबा के चरणों में ये प्रस्तुति थी। सुंदर सा गीत चौकड़िया के रूप में, जिसे भाग भी कहते हैं, ईश्वरी जी की, ईश्वरी जी द्वारा रचित राधा श्यामल आँखें घेरे। लीजिए बहन उर्मिला पंडित जी।

0: इस पारंपरिक फाकीवाद एक होली गीत नेक ठाणी रही हो लाला रंग डालूंगी।
1: अभी आपने ईश्वरी की सुनी, अब ये चंद्र सखी द्वारा रचित होली गीत है।

0: और एक और सुंदर सा होली गीत आपकी सेवा में बहन अनुला पांडे जी, एक पारंपरिक बहुत सुंदर सी होली एक गीत के माध्यम से सुनिए आप।
1: रसिया एक मैं सुना रही हूँ होली का। रसिया ब्रज के हैं, अपने बुंदेलखंड के भी हैं, होली के अलग हैं, सावन के अलग हैं। मैं ये होली का रसिया सुना रही हूँ।

0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उर्मिला पांडे और साथी कलाकारों का बुंदेली गायन। इसी के साथ आज का कार्यक्रम भारत भारती बस यहीं तक। अब दीजिए इजाजत इस प्रोग्राम से। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं हुगली के रहने वाले सुब्रत चटर्जी का सरोद वादन, और उसके बाद प्रस्तुति होगी निमाड़ी लोक गायन की, जिसे प्रस्तुत करेंगे खरगोन के शिव गुप्ता और उनके साथी कलाकार। तो आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं सुब्रत चटर्जी का सरोद वादन।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत भारती और सुब्रत चटर्जी का सरोद वादन अभी आपने सुना। इसके बाद बारी है निमाड़ी लोक गायन की, जिसे पेश कर रहे हैं खरगोन के शिव गुप्ता।
1: बोलो ना।

0: बोलो नर्मदा मैया की
1: जय।
2: एक प्रस्तुत है संत सिंगाजी निमाड़ के, संत निर्गुणी पंथ के संत के विचारों को निमाड़ी भाषा में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास।
0: कि तुम कवया होगा मारी हाँ।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। शाम के 5 बजे हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। हमारी सांध्यकालीन सभा में आप सभी का स्वागत है।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 184 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रा वरुणी, देवता हैं अश्विनी कुमार, छंद है त्रिष्टुप।
1: तावामद्य तावपरम हुवे मोच्छन्या मुषसि वहनिरुक्थैहि नासत्या कुह चित संतावरियो दिवो न पाता सुदास्तराय। हे दिव्यलोक के आश्रयभूत सत्यपालक अश्विनी कुमारों, आज हमने आपको आमंत्रित किया है, भविष्य में भी बुलाएंगे। हम अंधकार की समाप्ति पर प्रभात वेला में स्तोत्रगान करते हुए अग्नि प्रदीप्त करते हैं। आप जहां कहीं भी हों, श्रेष्ठ पुरुष और दानवीर के यहां अवश्य पधारें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। अस्मे ऊषु वृषणा मादये था मुत्परणीर हत मूर्म्या मदंता श्रुतम मे अच्छोक्तिभिर मती नामेष्टा नरा निचेतारा च कर्णैहि। हे नेतृत्व प्रदान करने वाले सामर्थ्यवान अश्विनी कुमारो, आप हमें भली प्रकार आनंदित करें।

0: वाम ककुहा अप्सु जाता युगा जूर्णेव वरुणस्य भूरेह। हे दानी सत्यनिष्ठ पोषणकर्ता अश्विनी कुमारो, उषा काल में ही रथ पर आरूढ़ होकर यश पाने की कामना से आप दोनों बाण की गति की तरह सरल मार्ग से जाते हैं। उस समय समुद्र से प्राप्त अति विशाल वरुण देव के पुरातन रथ के घोड़ों के समान ही आप दोनों के घोड़े भी प्रशंसित होते हैं। अस्मे सा वाम माध्वी रातिरस्तु स्तोमं हिनोतं मान्यस्य कारोह अनुयद्वाम श्रवस्या सुदानु सुवीर्याय चर्षणयो मदंती। हे श्रेष्ठ दानवीर मधुर रसों से युक्त अश्विनी कुमारों, आप दोनों के अनुदान हमें उपलब्ध होते रहे। आप मान्य द्वारा रचित स्तोत्रों को प्रेरित करें, सभी लोग आप दोनों की अनुकूलता प्राप्त कर श्रेष्ठ पराक्रम करने की कामना से आनंदित होते हैं। एशवाम स्तोमो अश्विनावकारी मानेभिर मघवाना सुवृक्ति यातम वर्तिस्तनयायत्मने चागस्त्ये ना सत्या मदंता। हे वैभवशाली सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारो, आप दोनों के लिए यह सुंदर स्तोत्र तैयार किए गए हैं। इससे हर्षित होकर आप सपरिवार अगस्त्य ऋषि के घर पधारें। अतारिष्म तमसस्पारमस्य प्रतिवाम स्तोमो अश्विनावधायी एह यातम पथिभिर देवयानैर विद्यामेशम व्रजनम जीरदानुम। हे अश्विनी कुमारो, हम इस अंधकार रूपी अज्ञान से मुक्त हो गए हैं। आप दोनों के लिए ये स्तोत्र गान किए गए हैं। देवतागण जिस मार्ग से चलते हैं, आप उसी मार्ग से चलकर हमारे यहाँ पधारें तथा अन्न बल और विजयश्री हमें शीघ्र प्रदान करें।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 184 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम पुत्रपाठी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
2: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:10 हुए, लीजिए प्रस्तुत है भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति संगीत। शुभ संध्या, स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। आइए शुरुआत करते हैं इस गणेश वंदना से।

अपने विचारों को सकारात्मक रखें, क्योंकि विचार ही शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों को सकारात्मक रखें, क्योंकि शब्द ही कर्म बन जाते हैं। अपने कर्म को शुद्ध रखें, क्योंकि कर्म ही आदत बन जाते हैं। अपनी आदतों को अच्छी रखें, क्योंकि आदतें ही हमारे व्यवहार का निर्माण करती हैं।

जीवन की सबसे सुंदर आदत है हर दिन कुछ नया सीखना, कुछ अच्छा सोचना और किसी के लिए कुछ उपयोगी करना। ज्ञान से बुद्धि बढ़ती है, विनम्रता से व्यक्तित्व निखरता है और सेवा से जीवन धन्य हो जाता है।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज भारत छोड़ो आंदोलन दिवस है। इसी दिवस पर केंद्रित हमारा कार्यक्रम, आइए सुनते हैं वतन का राग।

9 अगस्त 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भारत की जनता की वीरता और साहस की अद्वितीय मिसाल है। ये इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। ब्रिटिश शासन काल में ये वो आंदोलन था जिसमें नेतृत्व विहीन जनता ने अपने बलबूते साहसी प्रतिरोध दर्ज कराकर अंग्रेज नौकरशाही का मनोबल गिरा दिया था। सामाजिक और भौगोलिक दृष्टि से दायरा बहुत बड़ा होने के कारण ये इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। गांधी जी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इच्छा के विरुद्ध जाकर जनता से ये कहने के लिए मजबूर हो गए कि अब वक्त आ गया है कि देश की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए बड़ा संघर्ष किया जाए। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी कि अगर उसने संघर्ष का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। कांग्रेस और नेहरू जानते थे कि गांधी जी की ये चुनौती कोरी नहीं है, वे सचमुच ऐसा कर सकते थे और हार कर नेहरू भी सहमत हो गए और कांग्रेस को स्वीकृति देनी पड़ी। 8 अगस्त का ऐतिहासिक दिन बंबई के ग्वालियर टैंक पर आयोजित सभा में हजारों हजार लोगों की मौजूदगी में गांधी जी ने ऐतिहासिक भाषण दिया। आजादी से कम कुछ भी नहीं, एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र जो मैं आपको देता हूँ, उसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं और अपनी सांस के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। वो मंत्र है, करो या मरो। या तो भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। अपनी गुलामी का स्थायित्व देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। गांधी जी का नारा करो या मरो ये केवल नारा नहीं था, ये वतन को जनता के हवाले कर देने का बुलंद आह्वान था। गांधी जी के चंद वाक्यों ने पूरे भारत की जनता में जोश भर दिया।

भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों को खुले रूप में चेतावनी देने के लिए ये अनुकूल समय था। गांधी जी भी ये मानने लगे थे कि अब बिना संघर्ष के आज़ादी हासिल नहीं की जा सकती। विश्व युद्ध की आड़ लेकर सरकार ने अपने को सख्त से सख्त कानूनों से लैस कर लिया। कीमतें आसमान छूने लगी, मकानों और मोटर वाहनों पर सेना ने कब्जा कर लिया। जनता को ऐसे लगने लगा कि ब्रिटिश हुकूमत की हार होने वाली है। जापानी भारत की ओर बढ़ रहे थे। सुभाष चंद्र बोस के समर्थक ही जानते थे कि जापानी हमले का हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए फायदा उठाया जा सकता है। उधर क्रिप्स समझौते की नाकामयाबी से ब्रिटिश विरोधी लहर दौड़ गई थी। कांग्रेस समिति द्वारा वर्धा की 14 जुलाई 1942 की बैठक में संघर्ष के निर्णय को अपनी स्वीकृति मिली। अगले महीने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की ऐतिहासिक सभा बम्बई के ग्वालियर टैंक में हुई। खुले अधिवेशन में जन समूह उमड़ पड़ा। हजारों हजार की भीड़ के बीच गांधी जी ने भाषण दिया। 9 अगस्त के तड़के ही गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर भेज दिया गया। स्पष्ट था कि सरकार ने दमनपूर्ण कार्यवाही की योजना पूर्व से ही बना ली थी। सरकार के अचानक हमले से देश में तूफान सा आ गया। बम्बई में लाखों लोग ग्वालियर टैंक की ओर उमड़ पड़े। जनता सड़कों पर उतर आई। बड़े बड़े जुलूस निकाले गए। विशाल भीड़ ने पुलिस थानों, डाकघरों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों सहित तमाम सरकारी संपत्तियों को तहस नहस कर दिया। रेल की पटरियां उखाड़ी गईं, टेलीफोन लाइन काट दी गई, पुल उड़ा दिए गए, सार्वजनिक भवनों पर तिरंगा लहराया गया। भूमिगत कार्यकर्ताओं ने अपने को संगठित कर जगह जगह समानांतर सरकारें स्थापित की। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में जनता ने समानांतर सरकार की स्थापना की। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार का गठन कर लिया गया। सतारा में भी सरकार का निर्माण किया गया। बिहार के 80% थानों पर जनता का राज हो गया। कांग्रेस के बड़े नेता तो गिरफ्तार कर लिए गए, परंतु इस बीच भारत छोड़ो आंदोलन का भूमिगत संगठनात्मक ढांचा भी तैयार हो चुका था। आंदोलन की बागडोर राम मनोहर लोहिया सहित अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पुराणिक, बीजू पटनायक, आरपी गोयनका के हाथ में थी। जेल से निकल भागने के बाद जयप्रकाश नारायण जैसे अखिल भारतीय नेता फरार रहते हुए आंदोलन की बागडोर संभाले रहे। कांग्रेस गुप्त रूप से बम्बई शहर के विभिन्न केंद्रों से रेडियो का संचालन कर रही थी। लोहिया रेडियो पर नियमित बोलते थे, ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें कम्युनिस्ट को छोड़कर सभी पार्टियों ने समर्थन दिया था।

सरकार को खुलेआम विद्रोह पर काबू पाने में तकरीबन 2 माह का समय लगा। सरकारी दमन के तहत विद्रोह में शामिल लोगों को कोड़ों से पीटा गया, गांवों में आग लगा दी गई और 60,000 से अधिक लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। लगभग 26,000 लोगों को सजा हुई। इस दौरान सामूहिक जुर्माने के रूप में 90 लाख रुपए वसूले गए। 1943 में गांधी जी ने 21 दिन का उपवास शुरू कर दिया। इसके कारण उनकी जान खतरे में पड़ गई। सरकार ने उन्हें बचाने के बजाय उनके दाह संस्कार का बंदोबस्त कर डाला, पर गांधी जी के समर्थन में एक बार फिर जनता खड़ी हो गई। जगह जगह सामूहिक उपवास किए गए। सरकार के पास हजारों चिट्ठियां भेजी गईं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा, जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम किसी के सामने कैसे झुक सकते हैं। हालात ये थे कि एक तरफ पूरे देश की जनता गांधी जी की जान बचाने की अपील कर रही थी, वहीं सरकार उनके अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गई। हमेशा की तरह वे मौत और विरोधियों को मात देने में कामयाब हुए। बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 को उन्हें रिहा कर दिया गया। उन्होंने आंदोलन वापस नहीं लिया और न दंगों की आलोचना की। इस ऐतिहासिक आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी ये रही कि इसके द्वारा आज़ादी की मांग राष्ट्रीय आंदोलन की पहली मांग बन गई। हालांकि ये आंदोलन भी सरकार की क्रूर दमन नीति का शिकार हुआ, पर इस आंदोलन ने राष्ट्रीय लहर पैदा की और ब्रिटिश हुकूमत को संदेश दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारण जनता को नई ताकत मिली है, वो अब पीछे नहीं लौटेगी। जनता का ये आंदोलन दमन का शिकार होने के बावजूद कामयाब रहा और 15 अगस्त 1947 को भारत ने आज़ादी पाई।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। आज इस कार्यक्रम में सुनिए राजा संग्राम शाह के इतिहास के बारे में।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आपके साथ हूं मैं सुनीता सिंह। प्रस्तुत है कार्यक्रम मध्य भारत के जनजातीय राजवंश और स्थापत्य कला में उनका योगदान। समय की एक सुदीर्घ यात्रा तय करते हुए एक देश, एक समाज की अपनी पहचान बनती है। पीढ़ियों की आवाजाही में कुछ निशान बनते हैं, कुछ निशान छूटते हैं, जो किसी सभ्यता, किसी समाज के होने की गवाही देते हैं। धरती के सीने पर मौन खड़े ये महल, किले, दुर्ग, मंदिर या बावड़ियां कितनी कहानी समेटे हैं। इतिहास इन निशानियों को गौर से देखता है, इन साक्ष्यों को टटोलता है, इनके एकांत में बैठ इन कहानियों को सुनता है और फिर वर्तमान पीढ़ी को सुनाता है। इस तरह किसी देश की सभ्यता और संस्कृति से, उसकी रंगत, उसकी महक से हम परिचित होते हैं। और हमारे देश का तो एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जितना प्राचीन उतना ही व्यापक। अपने इस कार्यक्रम में हम मध्य भारत के जनजातीय राजवंशों के इतिहास और स्थापत्य कला में उनके योगदान पर चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें कि मध्य भारत में मुख्य रूप से चार राज्यवंश हुए हैं। गढ़ा मंडला का गोंड राज्य, देवगढ़ का गोंड राज्य, चंद्रपुर का गोंड राज्य और खेरला का गोंड राज्य। इसके अलावा भी अनेक गोंड रियासतें यहाँ रही हैं। अपनी इस कार्यक्रम श्रृंखला की शुरुआत हम गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश से करने जा रहे हैं। गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश में प्रतापी राजा हुए संग्राम शाह और इसी राजवंश में हुई सुप्रसिद्ध वीरांगना रानी दुर्गावती। तो आइए जानते हैं गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश का इतिहास और स्थापत्य कला में उनके योगदान के विषय में। हमारे बीच हैं पुरातत्वविद सुश्री पूजा सक्सेना। आपको पुरातत्व के क्षेत्र में अध्ययन और संरक्षण का 23 वर्षों का लंबा अनुभव है। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि धर्मपाल शोधपीठ द्वारा पूजा जी की एक पुस्तक का प्रकाशन भी किया गया है, गोंड राजवंशों की स्थापत्य कला, जिसका संपादन किया है प्रोफेसर संतोष कुमार वर्मा ने। नमस्कार पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हम आज गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश की बात करने जा रहे हैं और स्थापत्य कला में उनके योगदान की चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आप ये बताएं कि जो गोंड राजवंश था गढ़ा मंडला का, उसका उद्भव कैसे हुआ?
2: भारत का इतिहास बहुत विस्तृत है और 12वीं सदी में हम देखते हैं कि एक मोड़ आता है
1: जी।
2: और जब मोहम्मद गौरी के आक्रमण दिल्ली पर होते हैं और विदेशी सत्ता काबिज हो जाती है और धीरे धीरे जो है वहाँ बहुत उथल पुथल चलती है, उसी समय मध्य भारत में जहाँ पर 11वीं-12वीं सदी में बहुत से राजपूतों का शासन था, जैसे परमार, प्रतिहार, कलचुरी या चंदेल, उन स्थानों पर जब 13वीं सदी में इनका शासन समाप्त होता है, उसके बाद अचानक से हमें पूरे मध्य भारत, मध्य भारत से अर्थ है मध्य प्रदेश और उसके आसपास लगे हुए प्रदेश
1: जी,
2: तो इन क्षेत्रों में हमें गोंड राजवंशों का शासन दिखाई देता है, जिसमें से सबसे प्रमुख रहा गढ़ा मंडला का गोंड राज्य। गढ़ा से अर्थ है जबलपुर, मध्य प्रदेश का जबलपुर
1: जी,
2: नर्मदा के किनारे बसा हुआ। तो उनका सबसे प्रतापी राजा संग्राम शाह है। संग्राम शाह से पहले भी जो उनकी वंशावलियां मिलती हैं उसमें 48 राजाओं का जिक्र आता है।
1: अच्छा,
2: तो उसमें 49वें नंबर पर संग्राम शाह है।
1: अच्छा,
2: और गढ़ा मंडला में जो मदन महल है, जबलपुर के पास में जो मदन महल है, वो उनका प्रमुख केंद्र रहा।
1: तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि गढ़ा मंडला में, जैसे कि आपने बताया कि पहले राजपूतों का शासन था, उनका राज्य था, धीरे धीरे वो सारा राज्य समाप्त हुआ और गोंड जो राजवंश है उसकी स्थापना हुई। तो ये स्थापना कैसे हुई, और विशेष रुचि ये जानने में है कि संग्राम शाह जो हैं, जिनको आपने बताया कि वो 49वें अपनी पीढ़ी के राजा थे, तो वो किस तरह से राजा बने?
2: गढ़ा के गोंड राजवंश की स्थापना के संबंध में बहुत सारी जनश्रुतियां हैं, उसमें से एक जनश्रुति मैं आपको सुनाती हूँ।
1: जी जी।
2: कहानी है कि गढ़ा के राजा ने यह घोषणा की कि वह अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह करना चाहते हैं।
1: अच्छा।
2: और सभी लोग नदी के किनारे पर इकट्ठे हों। तो सब लोग इकट्ठे हुए तो वहां पर एक सर्वे पाठक नाम का एक ब्राह्मण भी खड़ा था। तो उसने देखा दूर एक गोंड लड़का खड़ा है, जदुराव। हाँ। उसका बाद में नाम यादव राव भी मिलता है
1: जी।
2: तो जदुराव भी खड़ा था, तो सर्वे पाठक ने कहा कि आ जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ। तो जदुराव आकर वहां नदी के किनारे खड़ा हो गया। और जैसा कि शर्त थी कि जिसके सर पर नीलकंठ पक्षी बैठेगा उसी से रत्नावली का विवाह होगा।
1: अच्छा।
2: तो जब नीलकंठ उड़ा तो वो जाकर जदुराव के सर पर बैठ गया।
1: अच्छा।
2: तो जदुराव और रत्नावली की शादी हो गई और बाद में फिर जदुराव गढ़ा का राजा बना।
1: तो ये बहुत ही रोचक सी आपने कहानी बताई। जनजातीय समाज में इस तरह की प्रथाएं होती हैं या इस तरह की शर्तें वो रख लेते हैं कि एक नीलकंठ अगर आपके सर पर आकर बैठेगा तो शादी होगी।
2: इसका मतलब ये है कि जिस पर महादेव की कृपा होगी तो वो अगला राजा होगा।
1: अगला राजा होगा, ये भाव रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से मतलब गोंड राजवंश की स्थापना होती है। और संग्राम शाह के विषय में आप बताएं कि वो किस तरह से राजा बने।
2: गोंड राजवंश की, गढ़ा के गोंड राजवंश की बहुत सारी हमको वंशावलियां मिली हैं, लिखी हुई वंशावलियां भी हैं और कहावतों में, कहानियों में भी आती हैं। तो उनसे पता चलता है कि 48 राजा हो चुके थे, उसके बाद 49वें राजा संग्राम शाह थे।
1: हाँ।
2: संग्राम शाह के पिता जो थे अर्जुन दास, वो भी राजा रह चुके थे और उनका लगभग 10 वर्षों का शासन है। तो जब संग्राम शाह शासक बने 1510 में।
1: अच्छा।
2: और उनका शासन काल है 1543 तक।
1: अच्छा।
2: तो शुरू में उनका नाम मिलता है आमणदास, जबलपुर में एक जगह भी है जो उनके नाम पर है।
1: अच्छा।
2: और फिर बाद में 1516 के आसपास आते आते उनका नाम मिलता है संग्राम शाह या संग्राम शाही।
1: अच्छा।
2: तो संभवतः उन्होंने कोई संग्राम जीता होगा इसलिए उनका नाम संग्राम शाही पड़ा।
1: तो ये भी बड़ी रोचक सी बात है कि पहले आमणदास उनका नाम था और संभवतः कोई युद्ध जीता तो संग्राम शाही या संग्राम शाह के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। अच्छा, ये भी पढ़ने में आता है कि उन्होंने सोने का सिक्का चलाया था, तो इस पर आप प्रकाश डालें। बड़ी रोचक बात है कि सोने का सिक्का यानी काफी समृद्धि।
2: जी हाँ। सोने का सिक्का चलाने का अर्थ ही यही है कि वह राज्य बहुत शक्तिशाली और आर्थिक रूप से समृद्ध है, तभी आप सोने का सिक्का चला पाते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो संग्राम शाह के कुछ सोने के सिक्के मिले हैं और इन सिक्कों से कई सारी जानकारियां मिलती हैं।
1: अच्छा।
2: जैसे सिक्के पर संग्राम शाह अपने आप को पुलस्त्य वंशी लिखते हैं।
1: अच्छा।
2: तो पुलस्त्य ऋषि के गोत्र से जो लोग अपना उद्भव मानते हैं वो लोग अपने आप को पुलस्त्य वंशी कहते हैं, तो संभवतः वो पुलस्त्य वंशी रहे हैं।
1: बिल्कुल।
2: दूसरी बात यह है कि सिक्कों पर एक शेर बना हुआ मिलता है और एक पुत्री।
1: अच्छा।
2: पुत्री मतलब एक ह्यूमन फिगर है, लाइन ड्राइंग रहती है, जो बहुत शुभ माना जाता है, इस क्षेत्र में आज भी बनाई जाती है। और साथ ही उनका नाम मिलता है स्वस्ति श्री संग्राम शाही।
1: अच्छा।
2: ये संस्कृत में है।
1: अच्छा।
2: और खास बात यह है कि यही नाम उसी सिक्के पर तेलुगु में भी मिलता है।
1: तेलुगु में?
2: जी हाँ।
1: अच्छा।
2: दो भाषाओं का उपयोग किया है। तो शुरू के विद्वान ये मानते थे कि गोंडों का उद्भव भारत के दक्षिणी भाग से हुआ है, इसलिए यहाँ पर दो भाषाओं का,
1: तेलुगु भाषा का भी प्रयोग सिक्कों पर है।
2: जी हाँ। जी। लेकिन बाद के जो विद्वान हैं जैसे डॉक्टर आर के शर्मा हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। दो राज्यों के बीच जब बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध होते हैं तो लेन देन को आसान बनाने के लिए दो भाषाओं का उपयोग किया जाता है।
1: बिल्कुल।
2: तो ये भी दिखाता है कि ये आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध होगा।
1: बिल्कुल।
2: और मैं आपको बताऊं कि स्वतंत्रता के कुछ समय बाद ही मदन महल के पास से एक घड़ा निकला था, एक खेत से।
1: अच्छा।
2: तो उसमें बहुत सारे सिक्के निकले थे प्राचीन। तो ये प्राचीन सिक्के विभिन्न राजवंशों के थे, भारत के दूर दूर तक के राजवंशों के। और ये दिखाता है कि जबलपुर उस समय बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा और यहाँ से प्राचीन राजमार्ग निकलता होगा। तो यहाँ पर व्यापारिक संबंध रहे होंगे, तभी यहाँ पर एक साथ बहुत सारे सिक्के
1: अलग अलग जगह
2: अलग अलग जगहों के मिल रहे हैं,
1: वहां से मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से मालूम पड़ता है कि समृद्धि थी उस वक्त, ये मालूम पड़ रहा है क्योंकि सोने के सिक्के थे। और जैसा कि आपने बताया कि संस्कृत में उनका नाम लिखा है संग्राम शाह का, तो शिक्षा भी अच्छी मालूम पड़ती है कि शिक्षा की स्थिति भी अच्छी थी। और फिर आपने बताया कि तेलुगु भाषा में भी लिखा है, यानी व्यापारिक संबंध जो थे वो दूर दूर के राज्यों तक भी थे, तो समृद्धि निश्चित तौर पर बहुत अधिक थी, ये तो साबित होता है। अच्छा पूजा जी, हमने जैसा कि बताया ही अपने श्रोताओं को कि इस कार्यक्रम में हम जनजातीय राजवंशों की चर्चा तो करेंगे ही, इसके साथ ही स्थापत्य कला में उनके योगदान की भी हम चर्चा करेंगे। और गढ़ामंडला की जब इस राजवंश की बात चलती है तो मदन महल वो उनका प्रमुख गढ़ था, तो इसके विषय में आप बताइए।
2: मदन महल, अगर अभी भी आप जबलपुर जाएं कभी, तो जब आप जबलपुर से भेड़ाघाट की तरफ जाते हैं तो एक ऐतिहासिक स्मारक आपको रास्ते में दिखाई देता है और ये सभी को आकर्षित करता है। उसका कारण ये है कि ये जो भवन है ये आधा एक गोल चट्टान के ऊपर है और आधा जमीन के ऊपर है।
1: अच्छा।
2: हाँ, तो ये सभी को बहुत आकर्षित करता है। ये असल में पुरानी चौकी है
1: जी।
2: जब कलचुरियों का शासन रहा होगा तो क्या है कि जहां भी इन राजपूतों का शासन था तो ये लोग वन क्षेत्र में हमेशा जनजातियों के प्रमुखों को नियुक्त करते थे।
1: अच्छा।
2: क्योंकि जनजातियों को जंगल का, जीव जंतुओं का बहुत ज्ञान होता है, साथ ही ये लोग सुरक्षा भी करते थे, जो व्यापारी काफिले जाते थे उनकी, तो जनजातियां ही वन क्षेत्र को संभालती थी। तो ये जो मदन महल है ये भी एक चौकी की तरह रहा होगा, और संभवतः इसका नाम जो पड़ा मदन महल वो मदन शाही के नाम पर पड़ा होगा, क्योंकि जो गोंड राजवंशों की हम वंशावली देखते हैं उसमें एक नाम आता है मदन शाही, जो कि 1116 के आसपास होंगे
1: जी।
2: तो संभवतः वो यहाँ के प्रमुख रहे होंगे इस चौकी के, तो उनके नाम पर मदन महल पड़ा।
1: आपका कहना ये है कि जो वनांचल थे, जो वन क्षेत्र था
2: जी
1: कलचुरियों के राज में, उसकी रक्षा के लिए ये जनजातीय समाज वहाँ था और मदन शाही के नाम पर मदन महल ये नाम पड़ा है। और वास्तव में जबलपुर के आसपास से आप जब निकलते हैं तो मदन महल की चर्चा होती ही है, लेकिन इस तरह से उसको जोड़कर नहीं देख पाते हैं। अच्छा, संग्राम शाह के 52 गढ़ की भी बहुत चर्चा है, तो इस पर भी आप विस्तार से प्रकाश डालें, हम चाहते हैं हमारे श्रोताओं के लिए।
2: एक कहावत है, आमन बुद्ध 52 गढ़ा, यानी कि आमनदास, जैसा कि मैंने कहा संग्राम शाह का नाम था, तो संग्राम शाह के 52 गढ़। 52 गढ़, गढ़ यहाँ से मतलब है किला, फोर्ट।
1: अच्छा।
2: तो 52 फोर्ट्स जिसके हों वो बहुत शक्तिशाली राजा होगा। तो ये किले दिखाते हैं कि आपकी कितनी अच्छी प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं। तो 52 गढ़ उनके पास था। जो संग्राम शाह के अधिकार क्षेत्र था वो बहुत विस्तृत था, उसमें मध्य प्रदेश का कुछ भाग, कुछ महाराष्ट्र का और कुछ छत्तीसगढ़ का आता था।
1: अच्छा।
2: तो आज अगर हम इसको जिलों में देखें, मध्य प्रदेश में जबलपुर, मंडला, दमोह, बालाघाट, कवर्धा, डिंडोरी, नर्मदापुरम, सिवनी, नरसिंहपुर, पन्ना, सागर, बिलासपुर अब छत्तीसगढ़ में, और नागपुर, ये सब संग्राम शाह के यहाँ पर गढ़ मिलते हैं,
1: किले मिलते हैं।
2: तो बहुत ही ये दिखाता है कि उनके बहुत स्ट्रॉन्ग अधिकार रहा है। तो इन 52 गढ़ों के नाम भी मिलते हैं, हालांकि उसकी सूची बहुत लंबी है। पर उसमें से जैसे सिंगौरगढ़ है, चौरागढ़ है, गौरझामर, खिमलासा, रहली, राहतगढ़, मड़िया दो, गड़ाकोटा, ये इस तरीके के कुछ बहुत प्रमुख किले उनके रहे।
1: जी जी। तो आपने सिंगौरगढ़ का नाम लिया तो मेरी रुचि उस ओर हुई कि हमें मतलब विस्तार से बताइए इस किले के बारे में।
2: सिंगौरगढ़ को सबसे ज्यादा प्रमुखता संग्राम शाह के समय में ही मिली। सिंगौरगढ़ आजकल दमोह जिले में है मध्य प्रदेश के
1: जी।
2: आज भी यहाँ तक पहुंचना बड़ा दुर्लभ है। शहर से आप 10-15 किलोमीटर अंदर चले जाते हैं एकदम सुनसान जंगली जंगल में, तब आप जाके सिंगौरगढ़ पहुंचते हैं। तो ये बड़ा दुर्गम किला रहा होगा। किला एक ऊंची पहाड़ी पर है, फिर चारों तरफ से किले की सुरक्षा दीवारें हैं। लेकिन खास बात क्या है जो गोंडों की सुरक्षा व्यवस्था में होती है कि इस पहाड़ी के चारों ओर भी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, यानी कि इस पहाड़ी को चारों ओर से ऊंची ऊंची पहाड़ियों ने घेरा हुआ है। और फिर इन पहाड़ियों के बाद एक घना जंगल है। आज उसका नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के ऊपर वह है, वीरांगना रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
1: जी।
2: यानी कि दुर्ग तक कोई सेना पहुंचना चाहती है तो उसको पहले तो एक घना जंगल पार करना होगा जिसमें जंगली जानवर भी होंगे, और उसके बाद कई नदी नाले, और उसके बाद ये ऊंची पहाड़ियां जो चारों ओर से घेरी हुई हैं, और इन पहाड़ियों के ऊपर भी फोर्टिफिकेशन वॉल बनाई हुई है, सुरक्षा दीवार बनाई हुई है।
1: अच्छा।
2: तो अगर कोई सेना इसको पार भी कर जाती है तो आगे जाके आपको सामना करना पड़ेगा जो मुख्य पहाड़ी है उसके नीचे एक पश्चिमी ओर बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है जिसे भंगौरगढ़ तालाब कहते हैं।
3: अच्छा।
2: तो ये तालाब मुख्य द्वार के तक आया करता था, जैसे खाई होती है तो खाई भी पार करनी पड़ेगी और फिर कहीं जाके आप ऊंची पहाड़ी पर जब चढ़ना शुरू करोगे तो पहला दरवाजा आएगा जिसको हाथी दरवाजा कहते हैं, फिर एकदम खड़ी चढ़ाई आएगी, उस पर कई सीढ़ियां चढ़ के आप दूसरा दरवाजा अगर पार कर लेते हो, ये सुरक्षा चौकी है, उसको भी अगर आपने पार कर लिया, क्योंकि चारों ओर से दीवार से भी घिरा हुआ है, और तब आप जाके किले के अंदर पहुंचते हो।
3: क्या बात है।
2: तो जब आप किले के अंदर पहुंच जाते हो तो एक विशाल तालाब दिखाई देता है जो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम टैंक है। ये लगभग 100 मीटर से ज्यादा लंबा और 60 मीटर से ज्यादा चौड़ा और काफी गहरा है।
3: अच्छा।
2: तो खास बात क्या है कि इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी।
3: अच्छा।
2: यानी कि किले के लिए जरूरत होती है कुछ चीजों की, पानी, खाना और सेना और हिम्मत। तो पानी खत्म ना हो जाए इसके लिए साल भर, जब बारिश होती थी तो साल भर का पानी टैंक में इकट्ठा कर लिया जाता था, उसके लिए वहां पर कई सारी नालियां बनी, पक्की नालियां बनी हुई हैं। फिर हम आगे जाते हैं तो हमको रानी महल मिलता है। रानी महल में एक मुख्य हॉल है बीच में और उसके चारों तरफ गलियारे हैं, कक्ष हैं, ये 2 मंजिला है तो बहुत सुंदर है। उसके आसपास कुछ मूर्तियां रखी हुई हैं, कर्चुरी काल की कुछ मूर्तियां दिखाई देती हैं और कुछ गोंड काल की हैं।
3: तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया कि क्या चौकस सुरक्षा व्यवस्था, और अगर किले तक पहुंचना है तो कितनी कठिनाइयों के बाद आप पहुंचेंगे, और फिर उतना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी वहां देख पा रहे हैं, जिसकी बात आज की जा रही है। आज हम चर्चा करते हैं और इसका प्रचार प्रसार करते हैं कि आप कीजिए पानी बोइए, तो ये उस वक्त कर रहे थे संग्राम शाह के समय में। अच्छा पूजा जी, जबलपुर में ही बाजना मठ भी है, तो हम चाहते हैं कि इसके विषय में भी आप विस्तार से बताएं।
2: जबलपुर में एक टेकरी है यानी कम ऊंची पहाड़ी, उस पर बाजना मठ है। बाजना मठ में बटुक भैरव की एक छोटी सी मूर्ति है।
3: अच्छा।
2: ऐसा माना जाता है कि बाजना मठ का निर्माण संग्राम शाह ने ही किया और यहाँ तांत्रिक साधना होती थी, यह मठ। अच्छा। था। इस बाजना मठ में एक कमरा है, कमरे में एक ही प्रवेश द्वार है, खिड़कियां नहीं है और ऊपर गुंबजाकार छत है, साथ में गलियारा भी रहा होगा जो अब नहीं है। तो मठ जो होते हैं यहाँ आचार्य रहते हैं।
3: अच्छा।
2: और वो आचार्य अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, ग्रंथों की रचना करते हैं, इस तरीके के कार्य मठों में हुआ करते थे, तो यहाँ पर भी हुआ करते होंगे। तो हम देखते हैं कि संग्राम शाह खुद भी संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने खुद रस रत्न माला नामक एक ग्रंथ लिखा है।
3: अच्छा।
2: और उसके आखिरी पन्ने पर उनका नाम भी उन्होंने लिखा है।
3: जी। अच्छा, अच्छा।
2: तो संग्राम शाह ने बहुत से अन्य विद्वानों को भी प्रश्रय दिया, खासकर इस समय मैथिल ब्राह्मण जो हुआ करते थे उनका बड़ा बोलवाला था, तो उन्होंने कई मैथिल ब्राह्मणों को जबलपुर में बुलवाया और उनसे काफी ग्रंथों की रचनाएं भी करवाई। तो उसमें एक हुए हैं दामोदर ठाकुर, उन्होंने काफी ग्रंथ लिखे हैं और एक ग्रंथ लिखा है संग्राम शाही विवेक दीपिका, जो कि संग्राम शाह के ऊपर ही है। और इसके साथ में दूसरे जो बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए उनका नाम है महेश ठाकुर।
3: अच्छा।
2: और उनके भी कई ग्रंथ हैं, और संग्राम शाह की जो पत्नी थी उन्होंने महेश ठाकुर को विष्णुपुर नाम का एक ग्राम दान दिया था।
3: अच्छा।
2: जो उनके योगदान के लिए रहा होगा।
3: बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बाजना मठ के विषय में भी बताया और संग्राम शाह जी की सांस्कृतिक साहित्यिक अभिरुचि के विषय में भी बताया कि वो खुद संस्कृत के ज्ञाता थे और बहुत से साहित्यकारों को प्रश्रय भी था उनके राजवंश में। मध्य भारत के जनजातीय राजवंश और स्थापत्य कला में उनके योगदान, इस श्रृंखला के अंतर्गत गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश पर हमने चर्चा की, संग्राम शाह की चर्चा की और उनके स्थापत्य में उनके योगदान की भी हमने कुछ बात की है, और ये हमारी श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। और अपने श्रोताओं को हम बता दें कि इस कार्यक्रम के अगले भाग में हम चर्चा करेंगे वीरांगना रानी दुर्गावती की। पूजा जी, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुई, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
3: तो श्रोताओं, मध्य भारत के जनजातीय राजवंश और स्थापत्य कला में उनका योगदान, इस श्रृंखला के अंतर्गत गढ़ा मंडला के गोंड राजवंश पर हमने चर्चा की, संग्राम शाह की चर्चा हुई। बहुत जल्द इस कार्यक्रम के अगले अंक के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, वो कोई सौभाग्य क्षण ही होता है जब जीवन से जुड़े प्रश्न मन को इतना आंदोलित कर देते हैं कि संसार का समस्त वैभव, सामर्थ्य और आकर्षण मन को संतोष नहीं दे पाता है। लहरों की तरह प्रश्न जीवन तट से टकराते रहते हैं और मनुष्य के भीतर समुद्र जैसा शोर गूंजता रहता है। लेकिन विशेष बात यह है कि यही वो समय होता है जब ज्ञान का द्वार खुलता है और उस द्वार तक पहुंचाने के लिए नियति स्वयं गुरु का मार्ग प्रशस्त करती है। योग वासिष्ठ का आरंभ भी एक ऐसे ही अद्भुत क्षण से होता है। अयोध्या के राजकुमार श्री राम तीर्थ यात्रा से लौटकर गहन वैराग्य में डूबे हुए हैं। उनके अंतर्मन की पीड़ा को महर्षि विश्वामित्र पहचान लेते हैं। वो जानते हैं कि ये विषाद नहीं है, सत्य की खोज है। ये मौन नहीं है, आत्मबोध की पुकार है। इसलिए वो कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से आग्रह करते हैं कि वो युवराज श्री राम के संशयों का निवारण करें और उन्हें आत्मज्ञान का अमृत प्रदान करें। यहीं से आरंभ होती है गुरु और शिष्य के बीच की वो दिव्य संवाद धारा जिसने युगों युगों से अनगिनत साधकों के जीवन को आलोकित किया है। आइए योग संवाद में आज की चर्चा आरंभ करें। योग वासिष्ठ के पन्ने पलटें और उस बिंदु पर पहुंचें जहां महर्षि विश्वामित्र श्री राम को उपदेश देने हेतु महर्षि वशिष्ठ से अनुरोध कर रहे हैं। हमेशा की तरह इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: भगवान श्री राम तीर्थ यात्रा करके लौटे हैं, संसार की नश्वरता और सुख दुख को देखा है, जीवन मृत्यु को देखा है, मोह को भी बहुत निकट से देखा है
1: जी।
0: और उनके भीतर वैराग्य का उदय हुआ है और महर्षि विश्वामित्र ये बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ये जो श्री राम की उदासी है ये कोई साधारण उदासी नहीं है, बल्कि ये आत्मज्ञान की एक पुकार है। तो इस बात को विश्वामित्र जी किस तरह से देख रहे हैं? क्या आत्मज्ञान के लिए पात्रता भी आवश्यक है?
1: बिल्कुल, आपने जब ये बात कही तो मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में विश्वामित्र जी ने राम जी को सुखदेव जी का वृतांत सुनाया। उसमें वो कहते हैं कि सुखदेव जी ने अपने विवेक से उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया था जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद किसी और ज्ञान की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है। बावजूद इसके सुखदेव जी को शांति नहीं मिली और संसार को देख करके उन्होंने अपने पिता से प्रश्न किया। पिता ने भी वही उत्तर दिया जो उन्होंने अपने विवेक से जाना था
0: जी।
1: उसके बाद भी शांति नहीं मिली, क्योंकि इसके पीछे कारण यह है कि उनके अंदर जो पिता होने का जो भाव था कि ये मेरे पिता हैं, तो वो ज्ञान ग्राह्य नहीं हो पाया।
0: अच्छा।
1: कई बार आप देखिएगा कि ज्ञान की स्थिति ऐसी होती है कि जो हम अपने अनुभव से प्राप्त करते हैं उन अनुभवों को हम स्वीकारने की बजाय हम दूसरों के द्वारा बताए गए ज्ञान पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हाँ, अपने जीवन के अनुभव पर हम बहुत नहीं ठहरते। तो ऐसे में जब ये जाते हैं जनक जी के पास, तो जनक जी सबसे पहले इनकी परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में वो देखते हैं कि पहले उनकी अवहेलना करते हैं कि ठीक है, उनको द्वार पर खड़े रहने दो
0: जी जी।
1: फिर उनको अंदर बुलाते हैं आंगन में, जहां पर अब राज्य वैभव सारा मिलता है। एक तरफ त्याग है, दूसरी तरफ भोग है, और इन दोनों में उनके चित्त की स्थिरता बनी हुई है। और जब ये चित्त की दोनों स्थितियों में स्थिरता बनी है, तब उनको वो अंतःपुर में बुलाते हैं जहां पर उनसे वो संवाद कर रहे हैं जनक जी कि अब बताइए क्या है। तो वो जनक जी से भी वही प्रश्न करते हैं जिस प्रश्न को उन्होंने अपने पिताजी से किया। तो जनक जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आपको जो जानने योग्य है वो जान लिया है आपने, आप पूर्ण काम हो चुके हैं। अब आप

0: जाए।
1: जी,
0: तो आप देखिए जिस तरह से संसार में लोग भोगों के पीछे बेहोश होकर के कह सकते हैं भाग रहे हैं, तो वो जानेंगे कि ये भोग जैसे हविष की भांति है, जैसे आप यज्ञ में हविष डालते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती है, ऐसे ही संसार के जो भोग हैं ये और प्रज्वलित होते हैं, न कि शांत होते हैं। तो ऐसे में किसी व्यक्ति का पूर्ण सत्य को जान लेने का आधार ही यही है कि संसार के भोगों के प्रति वो आकर्षित है कि नहीं है, या संसारेतर जैसे किसी भी प्रकार की कामना अगर आपके मन में शेष है तो इसका मतलब यह है कि आपने कामनाओं के बढ़ने के सत्य को नहीं जाना कि कामनाएं कभी शांत नहीं होती बल्कि और प्रज्वलित होती हैं, वो यज्ञ के अग्नि की भांति जब उसमें हविष पड़ता है। तो कहते हैं कि राम ने जान लिया और राम की शुद्ध बुद्धि है, वे इन्हें रोग के समान प्रतीत होते हैं। भोग रोग के समान जब प्रतीत होने लगे तो इसका मतलब यह है कि भोगों का वो सत्य आपके सामने उद्घाटित हो चुका है, जिस सत्य को नहीं जानने के कारण लोग भोगों के पीछे अपने जीवन को तबाह कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम लोग कहते हैं कि समा और परवाने की बात, कि वो आकर के दिए पर जल जाता है, तमाम जले हुए लोगों को देखता है फिर भी वो जान नहीं पाता। तो ऐसे ही इंसान भोगों में जी लिप्त रह करके भी उसी को शांत करने के लिए उसी का सहारा ले रहा है कि फिर से वो सोचता है कि मैं और कोई हविष डाल करके उस अग्नि को शांत कर दूंगा, जबकि भोगों की अग्नि भोगों से कभी शांत नहीं होती।
1: तो ये जानना आवश्यक है कि जो भोग है वो एक तरह का रोग है।
0: हाँ, भोग रोग है, लेकिन ये बात वही जान सकते हैं जिनकी बुद्धि राम की तरह शुद्ध हो गई है। अशुद्ध बुद्धि से इसका ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि भोग बुद्धि को अशुद्ध करते हैं। भोगों के प्रभाव से अशुद्ध हुई बुद्धि में ये ज्ञान उपजेगा ही नहीं कि भोग रोग है।
1: जी बिल्कुल,
0: वो तो भोग योग बन जाएगा उनके लिए।
1: जी। तो अच्छा, भगवान श्री राम ने भव बंधन को देखा है, जो संसार में जिस तरह से वो लिप्त हैं ये देखा है, तो इसी बात से वो उद्वेलित भी हैं।
0: जी,
1: तो संसार का जो बंधन है कैसे क्षीण होता है?
0: भोगों के चिंतन से अज्ञान जनित बंधन दृढ़ होता है। अब देखिए, मैंने हम लोग बात की कि अज्ञान जनित बंधन, बंधन हमेशा अज्ञान जनित है, बंधन कभी ज्ञान के साथ नहीं टिकता। ठीक वैसे ही जैसे हजारों साल का अंधेरा प्रकाश के सामने खड़ा नहीं हो सकता कि आप वो कहे कि नहीं, हजारों साल से मेरा साम्राज्य है, अभी अभी आप आए हैं, कैसे हम चले जाएं। तो ऐसे ही ज्ञान के होते ही बंधन क्षीण हो जाता है, यानी बंधन हमेशा अज्ञान से ही जन्म लेगा, इसीलिए अज्ञान जनित कहलाता है। और अज्ञान जनित बंधन अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में है तो उसकी भोग में आकांक्षा बनी रहेगी, कामना बनी रहेगी, वो अनासक्त नहीं हो सकता। हाँ। वो हमेशा उसकी आसक्ति बनी रहेगी, और भोग वासना के शांत हो जाने पर संसार बंधन क्षीण हो जाता है। ये राम जी ने देखा है, और राम जी ने संसार में जो जितने भी लोग लगे उनको जो कर्म करते हुए भी दुख से मुक्त नहीं दिखाई दिए, उनके मूल में यही कारण था कि वो कर्म किसी भोग की आकांक्षा में कर रहे थे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा मां फलेषु कदाचना, क्योंकि जब फल की कामना से तुम कर्म करोगे तो वो कर्म ही तुम्हारे बंधन का कारण बनेगा, और जब फल के भोग की वासना क्षीण होगी तो वो स्वयमेव आपके कर्म का परिणाम, वो फल बनेगा ही बनेगा, बिना चाहे ही आपको मिलेगा। इसलिए आपने सुना होगा वो एक लोकोक्ति है ये कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर से मांग खत्म हो जाए तो वो समस्त जिसकी चाह आपको है वो अपने आप पूरी हो जाती है, लेकिन मांग के रहते ही उसमें बंधन खड़ा होगा, बैरियर खड़ा होगा।
1: अच्छा, इस बंधन की बात हो रही है तो मेरे मन में ये सवाल आता है कि बंधन और मोक्ष का कोई संबंध है आपस में, क्या आशय है?
0: शंकराचार्य जी थे, आदिगुरु शंकराचार्य जी, जब वो निर्वाण शतकम लिखते हैं तो उसमें कहते हैं वो कि न बंधन न मुक्ति, यानी बंधन नहीं तो मुक्ति नहीं, बंधन और मोक्ष ये दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं। जिस व्यक्ति ने बंधन को अपने जीवन में अनुभव किया वही मोक्ष का अनुगामी होगा। बंधन जब महसूस होगा, यानी जब भोग बंधन स्वरूप दिखाई देने लगे, तो निश्चित ही आप ये मान लें कि उन भोगों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। लेकिन जब तक भोग योग बना रहेगा, जब तक भोगों को पाने की कामना बनी रहेगी, तब तक व्यक्ति कभी भी बंधन से मुक्त नहीं होगा। विश्वामित्र जी कहते हैं कि श्री राम विद्वान लोग भोग वासना के क्षय को ही मोक्ष कहते हैं। विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो तत्वज्ञ हैं, तत्वदर्शी हैं, वो भोग वासना का क्षय होना ही मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कुछ और नहीं है, भोग वासना का क्षय मोक्ष है। कहते हैं मोह का क्षय होना मोक्ष है।
1: जबकि आम सांसारिक जो मनुष्य है वो क्या सोचता है कि जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्ति ही मोक्ष है।
0: अब जन्म मृत्यु भी तो भोग का परिणाम है, भोग के लिए मिला हुआ है। आप देखिए जो जाति आयु और भोग जो योग में शब्द आता है, जाति मतलब होता है जन्म, कि व्यक्ति का जन्म किसी अतृप्त भोग के कामना की वजह से यहाँ जन्म होता है और पूरे जीवन जब तक उसकी आयु पूर्ण नहीं होती है वो उन भोगों में संलग्न होता है। ये तब तक व्यक्ति रहता है इस संसार में जब तक उसके प्रारब्ध क्षीण नहीं हो जाते। जब सुखदेव जी को जनक जी ने ज्ञान दिया तो जनक जी फिर उसके बाद सुमेरु पर्वत पर चले गए और वहां जब तक प्रारब्ध क्षीण नहीं हुआ तब तक वो शरीर में बने रहे, नहीं तो वो निर्विकल्प समाधि में स्थित रहे। अब देखिए यहाँ पर एक इशारा ये भी है कि जब भी शरीर मिलेगा वो प्रारब्धावशात मिलेगा और प्रारब्ध के क्षीण हुए बिना आप शरीर से मुक्त नहीं हो सकते और शरीर से मुक्त नहीं होंगे तो भोग से भी मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि शरीर पर आप भले अंतर जगत को अपने शांत कर लें और भोग की वासना का क्षय कर दें यानी मोक्ष की प्राप्ति कर लें, लेकिन शरीर के रहते शरीर के भोगों का तो भोग शरीर को भोगना ही है ना। भूख प्यास नींद ये सब उसको आएगी, तो ये स्वाभाविक है,
1: शरीर के साथ जुड़ी वो एक स्वाभाविक सी बात
0: जी। तो वो कहते हैं कि विषय भोग वासनाओं के क्षय को ही विद्वान लोग मोक्ष कहते हैं और विषयों में होने वाली सुदीर्ण वासना को ही बंधन कहते हैं। देखिए कितना सुंदर परिभाषा है कि विषयों में जो आकर्षण है, जो आसक्ति है, ये क्या है, ये बंधन है, और विषयों की वासना का क्षय होना मोक्ष है।
1: मोक्ष है। अच्छा, तत्वज्ञ की इसमें चर्चा होती है
0: जी,
1: तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो तत्वज्ञ है वो कौन है, कैसा होता है, क्या लक्षण होते हैं उसके।
0: बिल्कुल, तत्वज्ञ के बारे में जब विश्वामित्र जी राम जी को बताते हैं तो वो कहते हैं कि जिसकी दृष्टि राग द्वेषादि दोषों से रहित है वही तत्वज्ञ है, उसी ने जानने योग्य वस्तु को जाना है और वही विद्वान है। उस महात्मा पुरुष को भोग हठात अच्छे नहीं लगते, जैसे मरुभूमि में लता नहीं उगती, उसी प्रकार जब तक जानने योग्य तत्व का कुछ भी ज्ञान नहीं होता तब तक मनुष्य के हृदय में विषयों की ओर से वैराग्य नहीं होता है। अब एक चीज देखिए कि जब तक जानने योग्य आपको संसार में शेष चीजें रहेंगी तब तक आपके जीवन में वैराग्य नहीं होगा, यानी भोग की वासना का क्षय नहीं होगा। जब जानने योग्य को आप जान लेंगे, अब जानने योग्य क्या है, जानने योग्य यही है कि संसार के विषयों में वासना का होना बंधन है और वासना का क्षीण हो जाना मोक्ष है। जब आप ये बात जान लेते हैं तो फिर आप जानने योग्य को आपने जान लिया, फिर संसार के विषय आपके आसपास आएंगे, जैसे जनक जी संसार के विषय में ही हैं लेकिन वो उससे वैसे निर्लिप्त हैं जैसे कीचड़ से कमल। अध्यात्म में कमल और कीचड़ का उदाहरण बड़ा सामान्य रूप से दिया जाता है कि कीचड़ में कमलवत रहिए, इसका अर्थ ये हुआ कि इन दोनों का संबंध है लेकिन दोनों एक दूसरे से मुक्त हैं,
1: इसीलिए जनक विदेह हैं।
0: जनक विदेह कहलाते हैं कि देह में रह करके भी देह के किसी वासनाओं का उन पर प्रभाव नहीं है, वासनाएं क्षीण हो गई हैं इसलिए वो विदेह हैं, और विदेह होकर के ही आप मोक्ष को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि देह में तो आपको वासनाएं खींचेंगी, वो बंधन का कारण बन सकती हैं।
1: अच्छा, अब अगला प्रश्न मेरे मन में ये है कि श्री राम जी ने संसार को देखा है और जिस तरह से देखा है उसे चित्त उनका विचलित हो गया है, वैराग्य उसमें उत्पन्न हुआ है, इस चित्त को कैसे विश्राम मिलेगा, कैसे मिलता है विश्राम।
0: देखिए चित्त को विश्राम तभी मिलेगा जब आप सदचिंतन करेंगे, और सदचिंतन क्या है ये विश्वामित्र जी कह रहे हैं, हे मुनिवर आप लोग यह निश्चित रूप से समझ लें कि रघुकुल शिरोमणि श्री राम को गेय तत्व का ज्ञान हो गया है, क्योंकि गेय का मतलब जो जानने योग्य है, क्योंकि इन्हें ये भोगों की रमणीयता अब आनंदित नहीं कर रही है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि संसार के विषयों में जो व्यक्ति रमण करता है इसका मतलब ये है कि उसको अभी इस सत्य का पता नहीं है कि संसार में कभी भी सुख नहीं बल्कि अंततः उसका परिणाम दुख कहलाता है। और भोग आपको योग में तो ये कहा भी गया है, परिणाम दुख, माने ऐसा सुख जिसका परिणाम दुख में परिणित हो जाए। तो संसार का कोई ऐसा सुख नहीं है जो परिणामी रूप से दुखी न करे आपको, है ना। तो उसको जो ज्ञानी व्यक्ति है वो जानता है कि इसको कहता है वो परिणाम दुख है, कि प्रकृति के किसी भी विषय के सानिध्य के साथ परिणाम में अंततः दुख ही प्राप्त करेंगे आप। तो राम जी को कहते हैं कि राम जी ये मान लीजिए आपकी ये अब संसार के रमणीय भोगों में इन्हें आनंद नहीं आ रहा है, इसलिए राम जी तत्व को बुद्धि द्वारा जानते हैं
1: जी।
0: यानी जो बुद्धि तत्व को जाने, जैसे आप देखिए भौतिक जगत में भी जो वैज्ञानिक हैं, जो फिजिसिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, उन कार्य कारण के संबंधों को उद्घाटित करते हैं। ऐसे ही आत्मिक जगत में जब अध्यात्म का चिंतन या अध्यात्म विद्या का तत्वज्ञ पुरुष चिंतन करते हैं तो उस तत्व की तरफ जानना चाहते हैं कि आखिर वो मूल तत्व क्या है जिसके द्वारा ये जो चित्त की जो प्रवाहमान अवस्था है ये स्थिरता को प्राप्त हो, आखिर क्यों चित्त विषय वासनाओं की तरफ भाग रहा है। तो उसको उन्होंने कहा कि ये अज्ञानता के नाते भाग रहा है क्योंकि हम आज तक विषयों के पीछे भागे लेकिन विषयों से कभी शांति नहीं मिली। तो आने वाले समय में जिन विषयों की आकांक्षा पाल करके हम बैठे हैं और सोचते हैं कि हम उससे शांत हो जाएंगे, तो एक तो महज ये मुगालत है, एक दिवा स्वप्न की तरह है। क्योंकि अगर ये होता तो आज तक तो हमें शांति का कितनी बार अनुभव हुआ होता।
1: तो बड़ी गंभीर बात है कि सुख शांति आनंद की कामना हर मनुष्य को है। हाँ। उसी प्रयास में वो जीवन बिता रहा है, प्रयास कर रहा है
0: जी,
1: लेकिन ये मिलना नहीं है।
0: नहीं, मिलना जैसे होश पूर्वक, जैसे कहते हैं इसको महात्मा बुद्ध कहते थे या उनको मानने वाले लोग कहते हैं कि माइंडफुल होकर के अगर आप पूरी एकाग्रता और पूरी तन्मयता के साथ अगर देखें तो जो भी आपके चित्त में जो वेग आया है, अगर थोड़ा सा आप स्पेस लें, पॉज लें, अल्प विराम लें, तो आपको लगेगा कि वो एक लहर की तरह आया है और फिर धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। किसी भी भाव को आप देखिए जो अपना उद्वेग पैदा करता है चित्त में, चाहे क्रोध हो, चाहे वो प्रेम, प्रेम तो भाव यद्यपि बहुत ऊंचा ऊंची भाव है, मैं उसे नहीं मानता कि इस श्रेणी में आता है, लेकिन वो भाव थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है, जैसे लहरें अपने आप शांत होती हैं। लेकिन अगर उस भाव के बहाव में आप आ गए तो फिर आप जीवन भर अशांत रहेंगे या उसी के आदती हो जाएंगे, जिसको ये न्यूरोसाइंस के लोग कहते हैं, वो एक लूप में व्यक्ति फंस जाता है और लगातार उसी को रिपीट करता है। तो हम लोग सांसारी लोग सामान्यतः उसी लूप को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन जो तत्वज्ञ है वो वहां पॉज लेता है, जैसे ही वो प्रतिक्रिया नहीं करता कि जैसे कोई भाव बना और तुरंत उस प्रवाह में उसने प्रतिक्रिया की, क्योंकि आप प्रवाह में प्रतिक्रिया करते हैं और जैसे ही आप शांत होते हैं उस समय आप क्रिया करने में दक्ष होते हैं। तो उसके लिए तत्वज्ञ होना जरूरी है, तत्व से जानना जरूरी है, और तत्व ये है कि जैसे ही आप थोड़ा सा शांत होंगे, जगह देंगे, तो भाव अपने आप डाइल्यूट होने लगेगा, शांत होने लगेगा और फिर आप सही निर्णय ले पाएंगे।
1: अच्छा, तो भगवान श्री राम जो हैं, सब कुछ उन्होंने देखा है
0: जी,
1: तीर्थ यात्रा के दौरान विचलित हुए हैं, तो देखने के बाद वो स्वयं समझ नहीं पाए, चित्त बहुत उनका विचलित है, बहुत परेशान है वो, तो ये उनका चित्त किस तरह से शांत होगा?
0: राम जी का चित्त कैसे शांत होगा अगर आप ये कह रहे हैं, तो ये कहते हैं कि वो गुरु के वचन से शांत होगा। यहाँ पर एक बड़ी बात आपने कहा कि गुरु के वचन, अब यहाँ पर हम श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम लोगों की गुरु की मान्यता है, ऐसे वचन की बात यहाँ नहीं हुई है। यहाँ पर जैसे मैं फिर सुखदेव जी के वृतांत पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सुखदेव जी को जो ज्ञान अपने स्वयं के विवेक से मिला था और उसके बाद भी उनके मन में प्रश्न बने, यानी विवेक से ज्ञान होने के बाद भी प्रश्न का निर्मूलन नहीं हुआ। उसके बाद जब उस प्रश्न का उत्तर वही ज्ञान दिया गया जिस ज्ञान को उन्होंने अपने विवेक से पाया था, तो भी नहीं हुआ, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हें जानता ही हूं जो बता रहे हैं आप। फिर उनको जनक के पास भेजा गया, यानी यहां जनक की जो भूमिका है वो गुरु की भूमिका है। तो जनक के पास जाकर के उनका चित्त शांत होता है, लेकिन खुद के द्वारा एक्सप्लोर किया हुआ ज्ञान उनके चित्त को शांत नहीं करता, पिता के द्वारा दिया ज्ञान उनके चित्त को शांत नहीं करता, शास्त्रों में भी वही बात लिखी हुई है, उन शास्त्रों के ज्ञान से भी उनका चित्त शांत नहीं होता। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां गुरु का वचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि गुरु वो होता है जो जिस ज्ञान को आपको देने वाला है या जिस ज्ञान को आप उससे प्राप्त करने वाले हैं, वो उसके प्रत्येक कोशिकाओं से वो ज्ञान प्रवाहित हो रहा है, उसके प्रत्येक क्रियाओं में वो ज्ञान बह रहा है।
1: यही मैं पूछने जा रही थी। हाँ। कि क्या कारण है कि वही जवाब आपकी बुद्धि ने आपको दी है, विवेक ने दिया है, वही जवाब आपको पिता ने दे दिया, लेकिन शास्त्रों से भी वही उत्तर आपको मिला है, लेकिन गुरु के वचन से या गुरु के सानिध्य से वो बात, उसका समाधान हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है।
0: जी जी,
1: तो उसका कारण यही है।
0: उसका कारण यही कि वो जो सद्गुरु है वो सद जीता है, वो ऐसा नहीं है कि सद की बातें करता है,
1: जी, जी, जी।
0: वो सद को जीता है, सद चिंतन करता है, सद वचन बोलता है और सद को जीता है। इसी को कबीर साहब ने एक दोहे में शायद कहा है कि कथनी करे सुपूत हमारा, करनी करे सुनाती, रहनी रहे सदगुरु हमारा, हम रहनी के साथी। तो कथनी करनी और रहनी, ये तीन स्थिति बनी कि आपने शास्त्रों से सद्वचन पढ़ा और उसे कह दिया, एक बात ये हो गई। जी, जी, जी। और आपने शास्त्रों से सद्वचन सुना, उसका श्रवण किया, मनन किया, एक दूसरी बात हो गई, एक स्थिति और अच्छी हुई कि मनन कर रहे हैं आप और उसका निधिध्यासन कर रहे हैं, यानी वो आपके रहन में आ गया, आपके रहने में आ गया। तो जब रहने में आ गया तो फिर बच्चा या कोई भी व्यक्ति उससे सीखता है। सीखने की एक प्रक्रिया है जो आज मनोविज्ञान में जो सोशलाइजेशन की थ्योरी है कि आदमी सामाजिक संज्ञान कैसे लेता है, तो जॉन बेंडुरा नाम का एक मनोवैज्ञानिक है, वो कहता है कि जो आदमी इमिटेशन से सीखता है, अनुकरण से सीखता है, वो देखता है लोगों को, अपने माता पिता को, अपने आसपास को। तो जो गुरु होता है, गुरु को देखने मात्र से ज्ञान होता है, गुरु का दर्शन ही उसका वचन है, गुरु शब्द नहीं बोलता, गुरु का जीवन बोलता है, गुरु का एक्शन बोलता है। और हम लोग कहते हैं कि योर एक्शन लाउडर देन वर्ड, कि आपका कार्य आपके शब्दों से तेज बोलता है, उसकी ध्वनि बहुत आसानी से सुनने में आती है, लेकिन आदमी उसे क्रिया में नहीं, सिर्फ बातों में, वचनों में रखता है। तो मन, वचन और फिर जब वो कर्म में आता है तब वो ज्ञान आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है और आप उस ज्ञान से प्रकाशित दिखते हैं, फिर अन्य लोगों के प्रकाश की वजह भी बन जाते हैं।
1: जी, तो मतलब गुरु का जो जीवन है, उसका जो आचरण है, वही एक मुखर या बुलंद स्वर में एक संदेश देता है और एक ज्ञान दे देता है।
0: विश्वामित्र जी कहते हैं कि महात्मा श्री रामचंद्र जी के चित्त को के विश्राम के लिए ये पूज्यपाद वशिष्ठ जी ही यहाँ युक्ति का प्रतिपादन करेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है, जब वो जान रहे हैं, उन्होंने सुखदेव की कथा भी सुनाई, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, इनके जो गुरु वशिष्ठ हैं, ये वशिष्ठ ही वो युक्ति प्रतिपादित करेंगे जिससे राम के चित्त को विश्राम मिलेगा। अच्छा, एक बात और भी है कि गुरु जितना मूल्यवान है, उससे अधिक जो है महत्वपूर्ण है शिष्य की श्रद्धा। क्योंकि जो वशिष्ठ के प्रति राम की श्रद्धा है, क्योंकि वशिष्ठ उनके कुल गुरु हैं, उनके परदादा के गुरु रहे हैं, तो ऐसे में जो आस्था, जो श्रद्धा राम के अंदर वशिष्ठ के प्रति है, वो शायद विश्वामित्र के प्रति ना हो।
1: अच्छा, यही सवाल मैं करने जा रही थी कि जो भगवान श्री राम के चित्त की अवस्था है, विश्वामित्र उसको समझ रहे हैं
0: जी,
1: और वो ज्ञान भी उनके पास है, विश्वामित्र के पास भी है, लेकिन फिर वो वशिष्ठ जी से क्यों कहते हैं कि वो उपदेश करें?
0: वो कहते हैं कि क्योंकि ये इनके समस्त रघुवंशियों के ही नहीं, समूचे इक्ष्वाकु वंशियों के गुरु हैं, सदा से ये शिक्षक और नियंता हैं और कुल गुरु हैं। माने विश्वामित्र को, जैसे उस समय के ब्रह्मर्षि हैं वो, यानी उस समय के सबसे प्रतिष्ठित ऋषि हैं, यहाँ तक कि विश्वामित्र जी को भी उन्होंने राजर्षि से ब्रह्मर्षि का दर्जा वशिष्ठ जी ने ही दिया है।
1: अच्छा,
0: वो उतने पात्र व्यक्ति हैं।
1: जी, जी।
0: तो इसलिए कहा कि ये इनके जब मुख से ये बात आएगी तो ये राम के लिए युक्ति पूर्वक होगी। तो वशिष्ठ जी से उन्होंने अनुरोध किया कि अब जो है राम को आप वो योग, जिस योग के प्राप्त होने के बाद बुद्धि से वैषम्य मिट जाता है, जिसको भगवान कृष्ण समत्वम योग उच्चते कहते हैं, बुद्धि समत्व में स्थित हो जाती है, ऐसी स्थिति में राम अब आ चुके हैं और आप इनको उपदेश करें ताकि वहां ये ठहर सकें। जैसे सुखदेव जी जाकर के जनक जी के यहाँ ठहर गए, ऐसे ही वो वशिष्ठ जी से आग्रह करते हैं कि अब आप इनको उपदेश करें जिससे इनका भी चित्त सुखदेव जी की तरह ठहर जाए। और फिर जो ये तमाम चीजों में लगे हैं, जो तमाम इनके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, इन अज्ञान जनित भ्रमों की तरफ दिमाग लगाने से शांत हो जाएं, क्योंकि इनको जो जानना है वो जान चुके हैं। अब जिसको भी जानने की ये बात करेंगे वो उचित नहीं है, क्योंकि वो भ्रम होगा या वो भटकाव होगा।
1: जी, जी, जी।
0: क्योंकि अंततः फिर वही जानेंगे जो आप जानते हैं। तो सत्य एक बार प्रकट हो जाने के बाद बार बार उसको खोजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस सत्य के साथ स्थित होने की, इसी को स्थित प्रज्ञ कहा गया, कि उस सत्य की स्थिति में आप उस वो प्रज्ञा को बनाए रखें।
1: तो दो महत्वपूर्ण बातें समझ में आती हैं कि एक तो वो गुरु जो ज्ञान देगा
0: जी,
1: उसका आचरण है ना, उसकी पहुंच
0: जी,
1: और दूसरी बात वो शिष्य और उसकी श्रद्धा,
0: बिल्कुल
1: ना, इससे ही ये बात बन रही है।
0: इसको और मैं कहूं तो गुरु और शिष्य, देखें ये हमेशा भगवान ने एक गीता में बात कही है कि मैं समासों में द्वंद्व समास हूं। जैसे किसी भी गुरु का प्राकट्य तब तक गुरु की उपाधि उसे नहीं मिलेगी जब तक उसका योग्य शिष्य ना हो। तो देखें तो शिष्य गुरु बनाता है या गुरु शिष्य बनाता है, ये दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं। ठीक वैसे ही जैसे संसार के रिश्ते दो होते हैं, माता पिता, पिता पुत्र वगैरह वगैरह, जो भी जितने रिश्ते हैं उनके पीछे दोनों लगे हुए हैं। तो ऐसे में जो शिष्य की पात्रता है, तो राम जैसा पात्र शिष्य के लिए वशिष्ठ जी ने उस कुल का पौरोहित्य कर्म स्वीकार कर रखा था। ये कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए कि जबकि वो चाहते थे कि मैं इससे मुक्त हों, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, राम आएंगे, तो इसलिए राम के लिए उनके गुरु के होने का सौभाग्य आपको मिलेगा। तो सोचिए वो गुरु का भी सौभाग्य है ऐसे योग्य शिष्य को पाना। कई बार क्या होता है कि गुरु को हम जानते भी हैं उसके शिष्य की वजह से, तो ऐसा भी देखा गया है। वो ऐसा माने तो उसमें जो आपने कहा कि गुरु शिष्य का संबंध अनुपूरक संबंध है, ये अलग अलग नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। कहते हैं कि जिस दिन आप पात्र होते हैं गुरु स्वयं आपको धारण करता है, जैसे धर्म धारण करता है ऐसे ही गुरु भी धारण करता है। वशिष्ठ जी सदा से प्रभु हैं, कुल गुरु हैं, इसलिए वशिष्ठ जी के वचन से राम जी को जो शांति मिलेगी उसके लिए विश्वामित्र जी कहते हैं। और विश्वामित्र जी कहते हैं वशिष्ठ जी से कि महात्मन आप इनको वही ज्ञान दीजिए जिससे हमारे आपके बीच जो बैर भाव था उसमें शांति मिली थी।
1: बैर भाव था,
0: भाव था।
1: संक्षेप में जल्दी से
0: हाँ, मैं ये कहता हूँ कि जैसे एक चूंकि विश्वामित्र राजर्षि थे तो राजर्षि से ब्रह्मर्षि तक की यात्रा उनको करनी थी, और उस यात्रा में जो तमगा था कह सकते हैं या जो उपाधि थी वो वशिष्ठ जी के द्वारा दी जानी थी। और चूंकि राजर्षि थे तो राजा जो है अपने पुरुषार्थ से चीजों को अर्जित करना चाहता है, तो वो ब्रह्म ऋषि होना भी अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करना चाहते थे, और पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं अहंकार मिटता नहीं है, तो वो अहंकार के साथ खड़े रहे। और कहा तो ये तक जाता है पुराणों में कि विश्वामित्र जी ने क्रोध में आकर के वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों की हत्या कर दी। ये मुझे राजर्षि से ब्रह्मर्षि होने में बाधा है, क्योंकि ये ब्राह्मण अपने अहंकार में डूबा हुआ है और मुझे ब्रह्मर्षि की उपाधि नहीं दे रहा है। तो एक दिन क्या होता है कि वो विश्वामित्र जी वशिष्ठ को ही मारने उनके आश्रम में आ जाते हैं, छुपे हुए हैं। तब तक वो ब्रह्म मुहूर्त में जब विश्वामित्र वशिष्ठ जी जागते हैं तो ऐसे में हवाओं का जो स्पर्श है उनकी पत्नी को बड़ा अलग लगता है। कहती हैं वो कि आज क्या है कि आज कुछ ये हवाएं या जो यहाँ का सौंदर्य है बड़ा बदला सा लगता है। तो वो कहते हैं वशिष्ठ जी ये सब विश्वामित्र के तप का प्रभाव है। अच्छा। तो जब विश्वामित्र की प्रशंसा उन्होंने की विश्वामित्र की अनुपस्थिति में, तो विश्वामित्र को रोना आ गया। कहते हैं कि मैं इनसे इतना द्वेष करता हूं और जबकि ये तो मेरे प्रशंसक हैं।
1: जी, जी, जी।
0: तो वो आते हैं और आकर के उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और क्षमा मांगते हैं कि ये मुझसे क्या हो गया। तो जब गिरते हैं और अहंकार शून्य होते हैं तो फिर वहां पर वशिष्ठ जी उनको उठाते हैं, कहते हैं उठो ब्रह्मर्षि उठो। तो ब्रह्मर्षि का मतलब होता है कि जहां पर उसी परम तत्व को सब में देखना।
1: जी, जी, जी।
0: तो ऐसे में फिर कोई दूसरा अहंकार के खड़ा होने की वजह ही नहीं बनेगा ना। जैसे आप जब सर्वव्यापी ईश्वर को आप जान गए और उसी सर्वव्यापी ईश्वर में ये पूरे जगत की क्रिया को होते हुए आप देख रहे हैं, तो फिर ऐसे में किस क्रिया के बदले आप अपने मैं को खड़ा कर पाएंगे। तो आदमी अहंकार शून्य हो जाएगा। अहंकार शून्य होना यानी निर्वैर भाव, यही बैर अहंकार से खड़ा होता है। तो कहते हैं कि हमारे बैर की शांति, यानी जब मैं अहंकार शून्य हुआ तो हमारा बैर शांत हो गया। तो ऐसे में राम जी के अंदर जो अभी ये बात आ रही है कि संसार कैसे बना, संसार में क्या है, तो इन्होंने जो जानने योग्य है वो जान लिया है। अब इनको उस परम तत्व के साथ आप उपदेश करें ताकि ये वहीं प्रकाशित हो सके। तत्वज्ञ तो हैं ही ये, तत्व दर्शन इन्हें हो चुका है और उपदेश के लिए वो उनसे प्रार्थना करते हैं।
1: तो शशिकांत जी आज बहुत ही सुंदर चर्चा रही योग संवाद कार्यक्रम में, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में हमने चर्चा की श्री राम को उपदेश हेतु विश्वामित्र जी का जो अनुरोध था इस विषय पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित होते हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं
2: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति।
3: भारत विभूति कार्यक्रम में आज सुनिए अमन के सिपाहियों की दास्तान, लेकिन पहले स्वीकार कीजिए मनीषा
4: और दानिश का
3: नमस्कार।
4: भारत की सांस्कृतिक परंपरा और यहाँ के समाज के ताने बाने को समझने के लिए हमें वर्षों पुरानी रस्मों और जीवन को समझना होगा।
3: भारत की भौगोलिक संरचना ऐसी है कि इसमें कई तरह की सुख संपदा भरी पड़ी है। हजारों साल पहले सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर हमारा देश विदेशी आक्रांताओं की पहली पसंद था।
4: यही कारण है कि शक, यवन, हूण, मंगोल आदि विदेशी आक्रमणकारी अपनी खाली झोली भरने के लिए भारत की ओर कूच करते थे। रेगिस्तान के बंजर इलाकों या साल भर बर्फ से ढके उत्तरी क्षेत्र के दुर्दांत सिपाही हमारे देश में लूट कर अपना जीवन यापन करते थे।
3: इनका रास्ता था हिमालय की घाटियों और दर्रों को पार कर पंजाब सिंध में प्रवेश, या पश्चिमी भारत के रेगिस्तानों के रास्ते भारत का पश्चिमी समुद्र क्षेत्र भी भारत पहुंचने का एक विकल्प था, विशेषकर समुद्री दस्युओं के लिए।
4: इसी समुद्री रास्ते से पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और अंग्रेज भी भारत आए और यहाँ से व्यापार के बहाने जमीन, जंगल और खदानों पर कब्जा करने लगे। भारत की प्राकृतिक संपदा का दोहन कर अपना घर भरने लगे।
3: पर इन सब के बावजूद ये तमाम नस्ल के लोग धीरे धीरे भारत में घुलने मिलने लगे। यहाँ की सांस्कृतिक परंपराएं, संगीत, पुरातत्व, स्थापत्य कला इनके लिए विस्मय का कारण और खोज का कारण बनी।
4: इसके ठीक विपरीत पूर्व के देश और सभ्यताएं भारत की सांस्कृतिक प्रतिछाया सी बन गईं। संस्कृत और बौद्ध ग्रंथों ने उनके जीवन को भारतीयता से रंग दिया। वे भारत से धन संपदा नहीं, बौद्धिक संपदा आयात कर रहे थे, उसे आत्मसात कर रहे थे।
3: रामायण की विपुल रंजक छवियों को उन्होंने अपने जीवन में उतारा और उसके मानवीय मूल्यों को आत्मसात किया। बौद्ध धर्म का अनुशासन, साधना और तप उनके राष्ट्रीय मूल्य बन गए और वे कृतज्ञ भाव से भारत की ओर देखने लगे।

0: मुगलों के आक्रमण के साथ फारसी संस्कृति भी आई। दरबारों का कामकाज, शाही फरमान सब फारसी भाषा और लिपि में दर्ज होने लगे। फारस यानी आज का ईरान भी संगीत की समृद्ध परंपरा से भरा हुआ है।
1: श्रोताओं, संगीत के सात सुरों की सरगम उनके यहाँ भी उतनी ही मान्य है जितनी हमारे यहाँ। उनके संगीत में ओम तोम की लगावट और तराना की दिर्तुम दिर्दिर्तुम की तेज लय में डूबना सीधा खुदा की इबादत में डूबने जैसा है।
0: भारत के संगीत भजन ध्रुपद पद गायन से प्रभावित हो सूफी संतों ने अपने कोष में एकाकार कर दिया।
1: ये धुएं की बलखाती वलयों के साथ स्वरों का उत्तेजक लय प्रधान संगीत उस्तादों और संतों का प्राण आधार बन गया। साधारण आम जन भी इससे जुड़ने लगा। दिन भर की थकान को सूफी संतों की वाणी ने अल्हाद और खुशियों से भर दिया।
0: भाईचारे का संदेश जन जन तक फैलाने वाले सूफी संतों में हजरत दाता गंज बख्श, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, शाह आलम, हजरत बहाउद्दीन जकारिया और शाह शम्स मशहूर हैं।
1: इन संतों ने अपनी सरल भाषा में दिल को छू लेने वाली कविताएं लिखी, उनकी धुनें बनाई और जन जन में इसे लोकप्रिय बनाया। गांव गांव की चौपालें इन तरानों से गूंजने लगी।
0: बाबा फरीद ने लिखा, हे फरीद, धूल मिट्टी की निंदा न कर, धूल के समान कोई नहीं। जब हम जीवित होते हैं तो ये पैरों के नीचे होती है और जब हम मरते हैं तो ये हमारे ऊपर होती है।
1: जोते मारण मुखिया उना न मारो गुम, अपने घर जाइए पैर तिना दे चुम। यानी हम सहनशील हो, जो तुम्हें मुक्का मारता है उसे मुक्का मत मारो, उसे क्षमा कर उसके पैरों को चूम लो।
0: मुल्तानी काफी में बाबा फरीद के दोहे गांव गांव गाए जाते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी उनके चार शब्द और 112 श्लोक शामिल किए गए हैं, जो गुरु अर्जुन देव जी ने खोज निकाले थे।
1: सूफी कवि वारिस शाह ने अपने हीर के माध्यम से प्रेम और करुणा का संसार रचा। वहीं बुल्ले शाह ने मानव मात्र को एक होने का संदेश दिया। चल बुलिया चल उत्थे चलिए, जिथे सारे अन्हे, ना कोई साड़ी जात पछाणे, ना कोई सानू मन्ने।
0: संत बुल्ले शाह एक ऐसे संसार की कल्पना करते हैं, आंखों से भेदभाव न दिखाई पड़े, इंसानियत और बराबरी सबसे बड़ी पूंजी है। ऐसी जगह चलकर रहो जहां न कोई जाति पहचाने न कोई उसको माने।
1: लगभग 11वीं शताब्दी से लेकर आज तक उत्तर भारत के अनेक सूफी संतों ने प्रेम की वाणी का संचार किया, जो हिंदू मुस्लिम सिख और सिंध के बाशिंदों के बीच आदर पूर्वक स्वीकार की गई।
0: 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारत के पूर्वी हिस्से यानी अविभाजित बंगाल में रहस्यमय सूफीवाद विकसित हो रहा था, जो बाउल गान के नाम से प्रसिद्ध है।
1: ये एक ब्राह्मणवाद, शैववाद और बौद्ध सहजिया संप्रदाय के सहयोग से एक मिश्रित संप्रदाय विकसित हुआ, जो नाथ संप्रदाय कहलाया। इस्लाम और वैष्णव संप्रदाय में परिवर्तन के बावजूद पुराने संस्कारों को छोड़ना संभव नहीं था, सो उन्होंने धर्म पालन जारी रखा। हिंदू गुरु या मुस्लिम पीर के कोई भी शिष्य इसमें हो सकते हैं।
0: बाउल का समानार्थी शब्द है व्याकुल, यानी अपने इष्ट के प्रेम में व्याकुल, तंद्रा में रहना। यह सूफी के हाल के जैसा ही है। बाउलों के दो वर्ग हैं, सन्यासी बाउल जो पारिवारिक जीवन त्याग भिक्षा पर निर्भर रहते हैं, दूसरे हैं पारिवारिक बाउल जो गांव बाहर अपना अखाड़ा बना परिवार के साथ रहते हैं।
1: श्रोताओं, बाउल संगीत दिव्य प्रेम का गुणगान करता है। इकतारा इनका वाद्य यंत्र है। सभी धर्मों में मनुष्य धर्म सबसे बड़ा है और बाउल संगीत इसी की व्याख्या करता है।
0: लालन फकीर 1774 में जन्मे सबसे बड़े सूफी बाउल माने जाते हैं। ये आशु कवि थे इनकी रचनाएं 19वीं सदी के प्रारंभ तक मुखाग्र रूप से एक से दूसरे गायक तक पहुंचती रहीं। पूर्व और पश्चिमी बंगाल की सांगीतिक संस्कृति पर बाउल गीतों का बहुत प्रभाव है।
1: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर लालन शाह को अपना गुरु जैसा मानते थे। उनकी अनेक रचनाएं बाउल संगीत और उसके रहस्यमय दर्शन से प्रेरित हैं।
0: लालन शाह बंगला संस्कृति के सबसे बड़े संवाहक कवि हैं। उनके 5000 के लगभग गीत चलन में हैं, पर शोधकर्ता मानते हैं कि इनमें लगभग 1000 लालन शाह रचित ही हैं। लालन क्रांतिकारी सूफी कवि हैं।
1: वो कहते हैं कि सब लोग कहते हैं कि लालन कौन जाति के हैं। लालन पूछता है कि जाति का क्या रूप होता है, इन आंखों ने देखा तो नहीं, कोई माला कोई तस्वीर, तो जात अलग हो जाती है, अंत समय कौन सा चिन्ह रह जाता है।
0: एक गीत में लालन कहते हैं कि मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, जो करना है शीघ्र करो। अरे अबोध मन, तू अपने ही लोगों को नहीं पहचानता, अरे दोबारा मनुष्य जन्म नहीं होगा। बाउल सूफी संप्रदाय केवल मानव धर्म को मानता है, जाति पाति की अवधारणा से दूर वे अपने मन के भीतर छिपे मोनेर मानुष की खोज करते हैं। इन गीतों में देह तत्व परम आत्मा से मिलन और बिचोह का संदेश तो है ही, साथ ही सर्वधर्म संभाव का आग्रह भी स्पष्ट है।

0: श्रोताओं, लालन शाह के अनुगामी हजारों बाउल गायक शिष्य हैं, जो आज भी पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में घर घर अमन और समता का संदेश अपने संगीत के माध्यम से फैला रहे हैं। विदेशों में भी ये फकीर आमंत्रित किए जाते हैं और अभिजात कलाकारों ने भी इसे नए परिवेश और नई संगीत योजना के साथ अपनाया है।
1: आइए श्रोताओं, सुदूर दक्षिण में केरल प्रांत की बात करें। दक्षिण भारत की चारों प्रमुख भाषाओं में अनेक संतों ने भक्ति रचनाएं लिखी। तमिल में 12 अलवार संतों ने वैष्णव धर्म पर 5वीं से 9वीं शताब्दी के बीच महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। संस्कृत रामायण के लोक भाषाओं में अनुवाद हुए।
0: केरल में आदि शंकराचार्य ने अनेक सुंदर काव्य रचनाएं संस्कृत में रची, जो मंदिरों में संगीत रूप में गाई जाने लगी। संत त्यागराज, श्यामा शास्त्री और मुथु स्वामी दीक्षितर ने कर्नाटक संगीत पर आधारित अनेक भक्ति रचनाएं तैयार की, जो आज भी पूरे कर्नाटक संगीत का आधार संगीत मानी जाती हैं।
1: 20 अगस्त 1856 को केरल के चैंपा झंथी में एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया जो बाद में चलकर एक बड़े दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हुए।
0: उनका नाम है नारायण गुरु। उन्होंने केरल के जाति प्रधान समाज में व्याप्त अन्यायों के विरुद्ध आवाज उठाई, एक सुधार आंदोलन आरंभ किया जिसका सूत्र था सभी मनुष्यों के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर।
1: संस्कृत और वेदांत के अध्ययन के बाद उन्होंने योग और ध्यान साधना की। 1904 में शिवगिरी में उन्होंने एक स्कूल खोला जहां जाति धर्म आदि के परे निशुल्क शिक्षण देना शुरू किया। जातिगत भेदभाव के खिलाफ उन्होंने समाज सुधार का बीड़ा उठाया।
0: अपनी केरल यात्रा में गांधी जी भी उनसे मिले थे और उनके ज्ञान और विचारों से प्रभावित हुए। नारायण गुरु ने केरल और तमिलनाडु में 45 मंदिरों की स्थापना की।
1: इन अनोखे मंदिरों में कोई प्रतिमा नहीं, इनमें सत्य, नैतिकता, करुणा, प्रेम शब्दों से उत्कीर्ण एक शिलापत्र, एक शाकाहारी शिव, एक दर्पण और एक इटालियन मूर्ति शामिल थी।
0: श्रोताओं, सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने कृषि मजदूरों को संगठित किया, नारियल कारखानों के गरीब मजदूरों को उचित पारिश्रमिक की पैरवी की और समाज को संगठित किया।
1: नारायण गुरु ने अनेक ग्रंथों की रचना की जिनमें उन्होंने वेदांत की सरल व्याख्या की। नैयर नदी के किनारे उन्होंने अरु विप्पुरम में विशाल मंदिर बनवाया जिसमें बिना जातिगत भेदभाव के कोई भी पूजा कर सकता है। स्वर्ण समाज ने उसका विरोध किया तो नारायण गुरु ने कहा, ईश्वर ना तो पुजारी है ना किसान, वह सब में है। उन्होंने मनुष्य को स्वाभिमान से जीना सिखाया। बगैर जातिगत भेदभाव के यही उनका गुरु मंत्र था।
0: आज हजारों सूफी गीत, बाउल गीत और नारायण गुरु की रचनाएं उपलब्ध हैं, पर ये केवल पढ़ने की नहीं, देश के जन जन में बसी प्राणवायु है, उसका जीवन संगीत है। भारत इसी में जीता है, इसी में सांस लेता है।
1: अमन के सिपाहियों की ये दास्तां अब संपन्न हुई। इसे आपके लिए लिखा था ईला शंकर गोहा ने। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और लेखन
2: ईला शंकर गुहा।
0: श्रोताओं, इसी के साथ भारत विभूति कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अनुमति दीजिए मनीषा
1: और दानिश को।
0: नमस्कार।
3: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव पर केंद्रित रेडियो रिपोर्ट

0: रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं रविंद्र भवन सभागार में, जहां 6 अगस्त की शाम ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव में 6 देशों के कलाकारों ने अपनी दिलकश प्रस्तुतियां दी।
1: Tapi waktu, tapi

to welcome the delegation from Indonesia.

ये थी रेड रिपोर्ट ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव की। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं गंगाधर मेहर पर केंद्रित कार्यक्रम आजाद हिंद।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को इतिहास
2: और तारीख का नमस्कार।
1: देशभक्ति की मिसाल रखने वाले देशभक्तों की बातें तो इस कार्यक्रम में होती ही हैं। देश की महान विभूतियों की बातें भी हम यहाँ करते हैं और साथ होते हैं दिल को छू लेने वाले कुछ देशभक्ति के तराने।
2: हाँ, तो आज हम किस महान हस्ती की बात करने वाले हैं इतिहास?
1: सन 1862 में संबलपुर के बरपली ग्राम में जन्मे थे उड़िया के महान कवि श्री गंगाधर मेहर। पिता चैतन्य और माता सेवती के घर ज्यादा कुछ तो था नहीं, पर पिता वैद्य थे तो सभी उनका आदर सम्मान करते थे। वैसे मेहर लोगों का पुश्तैनी काम कपड़े बुनने का था, जो सूती और टसर की साड़ियां बुनते थे।
2: पर गंगाधर बाल्यकाल से ही पढ़ाई में बड़े होशियार थे। उन्होंने एक के बाद एक कई कक्षाएं एक साल से कम अवधि में ही पूर्ण कर ली, पर उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि घर की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी।
1: ऐसे में भी उनकी रुचि कविताओं से हटी नहीं, वे संघर्ष करते रहे और घर पर ही निरंतर पढ़ते रहे। समाज की धारा का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। भारत की गुलामी से वे खिन्न थे और ये उनकी कविताओं में साफ झलकता है। प्रियतम हिंदुस्तान, सकल जगत की शान, प्रियतम हिंदुस्तान।

0: कलात्मकता के साथ साथ संवेदना और ईमानदारी, ये सभी गुण थे श्री गंगाधर मेहर जी में। उन्हें उड़ीसा का कालिदास भी कहा जाता है और वे भारत की परतंत्रता से बहुत दुखी थे।
1: उस समय तो बयार ही कुछ ऐसी थी कि सभी अंग्रेजी शासन से खिन्न थे। उनके अत्याचार और जुलाहों के अत्याधिक शोषण से गंगाधर जी भी बहुत रुष्ट थे।
0: असल में 1758 के बाद से ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई थी और तभी से आर्थिक शोषण का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया।
1: बंगाल में बुनकरी एक सफल व्यवसाय होने के कारण और वहां की उपजाऊ भूमि से अच्छा कपास होने के कारण विदेशियों ने इसी उद्योग पर अपना कब्जा करना ठीक समझा। धीरे धीरे ये उद्योग इन्हीं अंग्रेजों के कारण बिल्कुल ठप्प हो गए और खेती किसानी पर भी अत्यधिक भार आ गया, क्योंकि जुलाहे कपड़ा बुनना छोड़ किसानी और मजदूरी करने लगे।
0: कई भारतीय तो अपने घरों को छोड़ के भूमिगत भी हो गए, क्योंकि करों का बोझ इतना था कि अपने गांव और जमीन पर रहना मुश्किल हो गया था। पर वे जहां भी रहते अपनी मातृभूमि की याद तो सताती ही थी। देश से आने वाले बता किस हाल में है याराने वतन।

0: जिन कविताओं में गंगाधर मेहर जी ने अपने आप को व्यक्त किया है, उनसे पता चलता है कि वे कितने सादे, ईमानदार और देशभक्त थे। भारतीय दर्शन और अध्यात्म की ओर उनका खास रुझान था।
1: उदाहरण के तौर पर उनकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। वास्तव में तो मैं महान अमृत सागर की एक बूंद मात्र हूँ, जो उड़कर आकाश की ओर चली गई है। मैं गिरकर पुनः उस अमृत धारा में मिल गया जो उस सागर की तरफ जा रही है। यदि मैं अपने पापों की गर्मी के कारण रास्ते में ही सूख जाऊं, तो पुनः उस कण के रूप में गिरूं और अंततः अमृत कणों के साथ अपने को फिर उसी सागर में गिरा दूं, जहां हर बीज अमृतमय है।
0: इन महान पंक्तियों को लिखने वाले श्री गंगाधर मेहर भारत की स्वतंत्रता चाहते थे। एक कलाकार हमेशा ही आजादी की कल्पना करता है, और इस कल्पना को साकार करने के लिए वो अपनी कला को ही हथियार बनाता है, ना कि किसी अस्त्र शस्त्र को।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, स्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। कार्यक्रम आजाद हिंद स्वराज संस्थान संचालनालय, रविंद्र भवन परिसर, भोपाल 462002।
3: और अब दीजिए हमें इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।

इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गायन, वादन, लोकगीत, गजलें और बहुत कुछ। आज आप सुनेंगे दो गायन। पहली प्रस्तुति होगी स्वाति तिवारी के गायन की।

0: ये प्रस्तुतियां हुई भारत भवन में आयोजित गायन पर्व में। तो अब प्रस्तुत है स्वाति तिवारी का गायन।
1: एक छोटा टपक।

0: और यह है डॉक्टर ऋषि मिश्र का गायन।
1: मिश्र पीलू में एक कजरी सुना रहे, क्योंकि मौसम ऐसा ही है सुहाना, तो बहुत सुंदर कजरी है वही।

कौन है, घिर आई है काली बदरिया। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि घिर आई है काली बदरिया, राधे बिन लागे न मोरा जिया। इस बार राधा जी छोड़ के गई उनको।

नहीं प्रोफेशनली तो हॉबी के तौर पे तो गाते ही हैं, उसमें आप लोग का साथ मुझे चाहिए, तब जाके ये कजरी सिद्ध होगी, क्योंकि ये कजरी भी है, ये दादरा भी है, मैं कहा इसको ठुमरी अंग से रहा हूँ।

ये था आज का कार्यक्रम सुरसागर, जिसमें आपने पहले सुना स्वाति तिवारी का गायन और दूसरी प्रस्तुति रही डॉक्टर ऋषि मिश्र के गायन की। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निःशुल्क।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: विवेकानंद के जीवन चरित्र में अब तक आपने जाना कि उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस देव के बीमार पड़ने पर सब शिष्य मिलकर उन्हें कलकत्ता के काशीपुर उद्यान में ले आए और सन 1886 के अगस्त के महीने में उनका देहांत हो गया। काशीपुर में पुराने भक्तों के अलावा अनेक तरुण सन्यासी गण भी रहते थे जो गुरुदेव की सेवा करने के लिए घर छोड़कर पढ़ाई छोड़कर वहां रहते थे।
1: श्री राम कृष्ण देव के देहावसान के थोड़े ही दिन बाद काशीपुर का उद्यान भवन छोड़ना पड़ा। अब नरेंद्र ने सोचा कि युवक सन्यासी गण यदि चारों ओर विच्छित्र होकर चले जाएंगे तो इस महापुरुष के आदर्श के प्रचार में विघ्न उपस्थित होगा। श्री गुरुदेव के साथ रहकर उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग रूप में जो साधना और आदर्श प्राप्त किया है उसे केंद्रीभूत करना होगा। कुछ ग्रही भक्तों ने नरेंद्र के इस मत का समर्थन किया। वे सब वैराग्यशील तरुण सन्यासी आश्रय विहीन होकर भटकते रहेंगे, ये बात उन्हें पसंद न आई।
0: यह बातें सुनकर के रामकृष्ण देव के एक ग्रही भक्त सुरेंद्रनाथ मित्र ने आकर के नरेंद्र से कहा, भाई एक आश्रम बनाओ जहाँ श्री रामकृष्ण देव का चित्र, भस्मादि और उनके द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं को रख करके नियम अनुसार पूजा अर्चना हो सके, जहाँ काम कुंचन त्यागी तुम भक्तगण एक स्थान पर रह सको। कभी कभी हम लोग भी वहाँ आएंगे। मैं काशीपुर के बगीचे में रामकृष्ण सेवा के लिए जो कुछ मैं दिया करता था वहाँ भी दूंगा।
1: ये बात सुनकर नरेंद्र नाथ आनंद से आत्मविभोर हो गया और एक मकान की खोज में लग गए। नरेंद्र नाथ और उनके वराहनगर निवासी मित्र भवनाथ के अदम्य प्रयास से वराहनगर के गंगा तट के समीप भुवन दत्त का एक जर्जर उद्यान भवन 11 रुपए मासिक किराए पर लिया गया। भुवन दत्त का मकान असल में ताकी के जमींदार मुंशी बाबुओं का था। ये मकान जीर्ण और परित्यक्त था, इसी से लोग उसे भुतहा मकान कहा करते थे। इस जीर्ण भुतहा मकान में केवल 6 कमरे थे। टैक्स के लिए निर्धारित 11 रुपए के अतिरिक्त रसोइये को 6 रुपए महीना और मठवासियों के अन्य खर्चों के रुपए भी सुरेंद्रनाथ देते। इस प्रकार उनके माहवार दान की रकम लोगों के बढ़ाने के साथ साथ बढ़कर 100 रुपए तक हो गई।
0: मटवरा नगर के परामाणिक घाट रोड में टाकी के मुंशियों के ठाकुर घर के पीछे पश्चिम के हिस्से के भग्न जर्जर मकान के ऊपरी तल्ले के भीतरी हिस्से में था। रास्ते पर एक दरवाजे से घुसकर थोड़ी खुली जमीन को पार करने पर सीढ़ियों से चढ़कर के लकड़ी की रेलिंग और खंबे वाले बरामदे के दक्षिण दिशा के सामने का बड़ा घर पहले किराए पर था, बाद में ऐसे ही खुला पड़ा रहता। भीतर के मठ का हिस्सा बाहर के रास्ते से दिखाई नहीं पड़ता था, काफी निर्जन था। अभी पूरा मकान धराशाही हो गया है। बाहरी हिस्से को छोड़कर के भीतर के मठ के हिस्से का कोई भी चित्र नहीं मिलता है। पीछे की ओर साग सब्जी का बगीचा था, सहजन के पेड़, एक बेल वृक्ष और कुछ नारियल तथा आम के पेड़ थे। एक तालाब भी था। बगीचे में कोई खास साग सब्जी नहीं होती थी, बस डेंगू के डंठल, 2-4 कुमड़े, खीरे और केले आदि होते। एक कुड़िया माली था, उसे केलों के नाम से पुकारा जाता था।
1: कोई तरकारी भाजी नहीं रहने पर शशि महाराज बीच बीच में बगीचे में घुसकर डेंगू, कुमड़े का साग, सहजन के डंठल या झड़े हुए फूल, माली जो कुछ पाते पल भर में तोड़कर या हसुए से काट कर ले आते और उड़िया भाषा में अरे अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं लो कहते हुए पीछे पीछे दौड़ता हुआ आता। कभी गाली देता, चिल्लाता, किंतु शशि महाराज इस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते। अपनी जिद पर अड़े हुए अपने मन से चले आते। इसे लेकर सभी आपस में खूब हंसी मजाक करते। वैसे मठ में निवास करने वाले सब के साथ माली की काफी दोस्ती थी।
0: एक समय का अन्न किसी दिन मिल जाता था तो किसी दिन नहीं। थाली, बर्तन आदि कुछ भी न थे, अतः घुया के पत्ते पर भात रख करके उसे ही खाना पड़ता। और भोजन भी क्या था, केवल उबले हुए कुंदरू के पत्ते और भात, और वह भी घुया के पत्तों पर रखकर, जिससे मुंह में खुजली हो जाती थी।
1: इतने कष्ट, फिर भी कोई चिंता ना थी। भक्तों की संख्या एक एक दो दो करके बढ़ती रही। कैसा उत्साह था। पूजा, जप, ध्यान सदा चलता रहता था। कभी कीर्तन भी शुरू हो जाता था। कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और अंदर आनंद से कीर्तन हो रहा है। फिर तो ऐसा रंग जमता कि बाहर आदमियों की भीड़ लग जाती थी।

0: कीर्तन बंद होने पर भी बाहर लोग खड़े रहते और चिल्लाते,
1: अरे बंद मत कीजिए, बंद मत कीजिए, बहुत आनंद आ
2: रहा है। नीचे की मंजिल के भीतर कमरों की ओर बहुत दिनों की गंदगी और झाड़ झंकार इस तरह हो गए थे कि वहाँ सियारों और सांपों का बसेरा था। ऐसी धारणा थी कि बहुत दिन पहले टाकी के खूंखार जमींदार के जमीन में वहाँ बहुत नर हत्याएं हुई थी। इसी से उसे भूत घर कहा जाता था और कोई उसे किराए पर नहीं लेता था। इसी कारण से मठवासियों ने इसे 10 रुपए के किराए पर प्राप्त कर लिया था। ऊपरी मंजिल पर सीढ़ी से चढ़ने पर काली तपस्वी का कमरा था। बाद में एक छोटे जीने से चढ़ और उतर कर पूजा के आयोजन का घर था, जिसमें फर्श पर एक हाथ लंबा और एक हाथ चौड़ा एक चौकोर मिट्टी का हवन कुंड था। वहां से ठाकुर घर जाया आया करता था। सीधे जाने पर बरामदे के सामने रसोई घर था। बाईं ओर लंबा हॉल था, जिसे दानवों का कमरा कहा जाता था। इसके बाद बगल में ही भोजन करने और हाथ मुंह धोने का कमरा था। इसके बाद एक अंधेरी गली पार कर शौचालय और सीढ़ी से नीचे उतरकर बगीचे के अंदर से तालाब में जाने का रास्ता था।
0: हाल में दीवारों पर अनेक देवी देवताओं, अवतारों और क्रास पर बंधे ईसा मसीह के चित्र टंगे हुए थे। ठाकुर घर में धूनी देकर के उन सब चित्रों के आगे शशि महाराज संध्या समय एक हाथ में धूनी दानी में जलाकर और दूसरे हाथ से दीप लेकर के जय गुरुदेव श्री जय गुरुदेव कहकर धूप दिखाया करते थे। हाल में एक किनारे पर एक लकड़ी के तख्त पोष के ऊपर कुछ संस्कृत, बंगला और कुछ अंग्रेजी की पुस्तकें रखी हुई थी। शेष जगह में मिट्टी का खोल, तबला, मृदंग, करताल रखा था। निकट की दीवार पर तानपुरा टंगा था। हाल ही साधुओं का शयन गृह था। दर्शकों और भक्तों के आने पर उसी में बैठकर के बातचीत होती थी, किंतु उस हाल का सभी कार्यों में उपयोग होता था। बिछावन में एक छोटे तकिए के साथ एक चटाई एक व्यक्ति के लिए क्रमवद रूप में बिछी रहती। आगंतुकों के लिए अथवा दूसरी जगह बिछाने के लिए कोई 2-4 चटाइयां थी जो फर्श पर ही बैठते थे।
2: ठाकुर घर के बीच में श्री राम कृष्ण का बिस्तर, धरती पर चटाई, गद्दी, चादर और उस पर तकिया लगा था और श्री राम कृष्ण का चित्र उस पर रखा था। बिस्तर के पैर की तरफ श्री राम कृष्ण की अस्थि का ताम्र कलश और उनकी पादुका एक चौकी पर रखी थी। पूजा के पात्र के सामने बैठकर शशि महाराज नित्य पूजा आदि करते थे। शशि महाराज के द्वार संध्या में आरती करना एक अपूर्व कार्य था, जो देखने लायक दृश्य था।
0: जब वे धूप धूना, खोल, करताल, वाद्य यंत्रों के साथ आरती के अंतिम चरण में चामर ढुलाते हुए भाव में उन्मुक्त होकर के जय गुरुदेव श्री गुरुदेव कहकर के भीष्ण हुंकार करते हुए ताल ताल पर नृत्य कर एक ओर से दूसरी ओर तक नाच नाच कर घूमते फिरते, तब से भीतर जिस अपूर्व भक्ति भाव का संचार होता उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसा लगता मानो पूरा मकान कांप रहा है। दर्शकगण श्री रामकृष्ण के भंडार घर से उनके साथ स्वर मिला करके जय गुरुदेव श्री गुरुदेव का उच्चारण करते करते आवेग में नृत्य करने लगते।
2: मठ के गुरु भाई अपने आप को भूत तथा दानव कहते थे, क्योंकि भूत दानव शिव जी के अनुयायी हैं और जिस कमरे में सब एक साथ बैठते थे उसे भूत का कमरा कहते थे। जो लोग एकांत में ध्यान धारणा और पाठ आदि करते थे वे लोग दक्षिण की ओर के कमरे में रहते थे। काली द्वार बंद करके अधिकतर उसी कमरे में रहते थे, इसलिए मठ के गुरु भाई उस कमरे में और उत्तर की ओर जो कमरा था उसमें नैवेद्य रखा जाता था। उसी कमरे में खड़े होकर लोग आरती देखते और वहीं से भगवान श्री राम कृष्ण को प्रणाम करते थे। नैवेद्य वाले कमरे से उत्तर में दानवों का कमरा था। भूतों के कमरे के उत्तर की तरफ एक और छोटा सा कमरा था, वो पानघर के नाम से पुकारा जाता था। यहाँ भक्तगण भोजन करते थे। भूतों के कमरे के पूर्व कोने में दालान थी। उत्सव होने पर भोजन आदि की व्यवस्था इसी कमरे में की जाती थी। दालान के ठीक उत्तर की तरफ रसोई घर था। पूजा घर और काली तपस्वी के कमरे के पूर्व की ओर बरामदा था। बरामदे के दक्षिण पश्चिम कोने में वराह नगर की एक समिति का पुस्तकालय था।
0: ये सब कमरे दुमंजिले पर थे, जीने दो थे, एक तो पुस्तकालय और काली तपस्वी के कमरे के बीच से और दूसरा भक्तों के भोजन करने वाले कमरे के उत्तर की तरफ। नरेंद्र आदि भक्तगण इसी जीने से शाम को कभी कभी छत पर जाते थे। वहां बैठकर वे लोग ईश्वर संबंधी अनेक विषयों की चर्चा करते थे। कभी श्री रामकृष्ण की बातें, कभी शंकराचार्य की, कभी रामानुज की और कभी ईसा मसीह की बातें होती थी। कभी हिंदू दर्शन की बातें भी होती थी, तो कभी यूरोपियन दर्शन का प्रसंग चलता था, कभी वेदों, कभी पुराणों और कभी तंत्रों की कथाएं हुआ करती थी।
2: भूतों का कमरा ही उन लोगों के साधन भजन और वार्तालाप विवेचना आदि का मुख्य केंद्र था। यहाँ नरेंद्र नाथ के देव दुर्लभ स्वर का संगीत सुनकर सभी मुक्त हो जाते, भाव विभोर हो जाते। हरि नाम कीर्तन आदि भी यही होते। फिर संगीत शिक्षा, शास्त्र अध्ययन, भक्तों से सत चर्चा आदि से भी ये कमरा गूंजता रहता और इन सभी कार्यों के केंद्रीय रत्न स्वयं नरेंद्र नाथ थे। सुंदर सुगठित उनका सबल शरीर, उनकी ज्योतिर्मय देह कांति, प्रशस्त ललाट पर प्रतिभा के चिन्ह, प्रशांत बदन में अंकित वीरत्व और दृढ़ संकल्प, विशाल युगल नयनों की अपूर्व मोहिनी शक्ति, बोलचाल में प्रस्फुटित एक स्वच्छंदता और आत्मविश्वास, तथापि वेशभूषा में वैराग्य की सुस्पष्ट छाप तथा आचार व्यवहार में निश्चलता, सहृदयता और दूसरों के प्रति श्रद्धा सदा व्यक्त होती रहती थी।
0: उनके चिंतन में अभ्युत साहस, गंभीर्य और प्रचुर ज्ञान का समावेश था। उनके कार्य में महावीर के समान क्लांतिहीनता और गुरु भक्ति थी। कुल मिलाकर यह नवीन युवक स्वतः ईश्वर निर्दिष्ट नेता प्रतीत होता और बिना कहे भी किसी को उन्हें पहचानने में देर नहीं होती। कहने की आवश्यकता नहीं कि श्री रामकृष्ण के निर्देशानुसार नरेंद्र नाथ के प्रति अगाध्य प्रेम के फलस्वरूप और नरेंद्र के व्यक्तित्व के प्रभाव से युवक भक्तों ने बिना मीन मेक के और निर्विरोध रूप में उन्हें उच्च आसन प्रदान कर दिया था।
2: श्री रामकृष्ण की सेवा करने के लिए दीर्घ काल तक एक साथ रहने तथा साधन भजन आदि के द्वारा वे आपस में प्रेम के जिस बंधन में बंध चुके थे वे छिन्न नहीं हो सकता था। विशेष रूप से श्री रामकृष्ण के आदर्श की रक्षा करने के लिए नरेंद्र संगबद्ध होने की आवश्यकता समझकर बालकों को सदा उत्साह देने लगे। कोई कोई गृही भक्त उन लोगों को फिर से संसार में लौट जाने के लिए परामर्श देने लगे। कुछ बालक परीक्षा आदि के कारण अभिभावकों के अनुरोध से फिर से घर लौटने के लिए बाध्य हुए। नरेंद्र नाथ उस समय तक आर्थिक विषयों की भली भांति व्यवस्था ना कर सके, इसलिए उन्हें हर समय मठ में रहने का अवसर नहीं मिलता था। उनके मकान के बारे में जो मुकदमा शुरू हुआ था वो अभी समाप्त नहीं हुआ था, अतः नरेंद्र को बाध्य होकर ही घर में रहना पड़ता था। नरेंद्र की अनुपस्थिति में अभिभावक गण उनका उदाहरण देकर संसार में लौटने के लिए बालकों से आग्रह करने लगे। नरेंद्र स्वयं अपने परिवार की देखभाल करते थे, इसलिए उतने जोर के साथ वे प्रतिवाद ना कर सके।
0: इसी बीच एक नई विपत्ति आ खड़ी हुई। महात्मा रामचंद्र दत्त आदि कुछ भक्तों ने प्रस्ताव किया कि तुम लोग साधु सन्यासी हो, कब कहां रहोगे निश्चित नहीं है, श्री गुरुदेव के देहावशेष हमें दे दो, हम उसे उचित स्थान पर स्थापित करके मंदिर निर्माण करेंगे। राम बाबू ने काकुड़गाची के अपने बगीचे वाले मकान को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया था, पर बालक भक्तों ने किसी भी तरह गुरुदेव के देहावशेष को ग्रही भक्तों को देना स्वीकार नहीं किया। फलस्वरूप एक बड़ा झगड़ा उठ खड़ा हुआ। शशि और निरंजन उस ताम्र पात्र के रक्षक थे, वे किसी भी तरह से किसी दूसरे को देने को राजी न हुए। राम बाबू भी उसे पाने के लिए दल बल के साथ प्राण प्रण से चेष्टा करने लगे। झगड़े की संभावना को निकट देख बुद्धिमान नरेंद्र ने अपने गुरु भाइयों को बुला करके कहा,
3: महापुरुषों के देहावशेष के बारे में शिष्यों के विवाद धर्म जगत में कई बार हुए हैं, इसमें संदेह नहीं, परंतु इसलिए उसी पथ का अनुसरण करना हमारा कर्तव्य नहीं है। हम सन्यासी हैं। श्री रामकृष्ण के पवित्र जीवन से हमें जो महान आदर्श मिला है, उसी आदर्श को सामने रखते हुए जीवन को गढ़ना ही इस समय हमारा प्रधान कर्तव्य है और यही हमारी सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। इस प्रकार की एक लज्जाजनक घटना की स्मृति कि श्री रामकृष्ण के शिष्यों ने देहावशेष पर कलह किया था, भविष्य की संतानों के लिए छोड़ जाना बहुत ही अनुचित है, अतः उन्हीं लोगों की इच्छा के अनुसार काम होने दो। यदि हम श्री रामकृष्ण का आदर्श कार्य रूप में परिणित कर सकें तो देखोगे समग्र जगत हमारे पैरों पर लौटेगा।
0: शशि महाराज ने नरेंद्र की इस बात का प्रतिवाद नहीं किया, देहावशिष्ट भस्म और अस्थि का कुछ भाग रख करके बाकी को तांबे के पात्र के साथ लौटाने के लिए वे सहमत हुए। अंत में शुभ दिन देख करके रामकृष्ण के ग्रही एवं सन्यासी भक्तों ने सम्मिलित होकर के काकुड़गाछी के योग उद्यान में पवित्र ताम पात्र को स्थापित कर दिया। इस तरह गुरु भाइयों में प्रेम प्यार का जो सूत्र पात्र हुआ था, उसे प्रशंसनीय उदारता के द्वारा नरेंद्रनाथ ने अंकुर अवस्था में ही निवशिष्ट कर दिया।
2: इस प्रकार एक प्रबल विरोध को दूर कर नरेंद्रनाथ कुछ निश्चिंत हुए। नरेंद्रनाथ सांसारिक अभाव आदि के कारण बाध्य होकर घर में रहते तो जरूर थे, पर रात्रि और दिन का अधिकांश समय वो वराहनगर के मठ में बिताया करते थे। कलकत्ते में भी नरेंद्रनाथ केवल घर के ही काम में लिप्त न रहते थे। जो सब सन्यासी युवक अभिभावकों के शासन से घर लौटकर परिवार वालों के साथ रहते थे तथा परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, अवसर पाते ही नरेंद्र उनसे भी मिल लेते थे और संसार के साथ सभी प्रकार का संबंध छिन्न करने के लिए उन्हें प्रेरित करते रहते थे। नरेंद्र के उपद्रव से अभिभावक गण चिंतित और अधीर हो उठे। भय तथा धमकी आदि से वे नरेंद्र नाथ को रोक न सके।
0: नरेंद्र के उत्साह और आदर से प्रेरित होकर के युवक गण फिर से एक एक करके मठ में लौट आए। नरेंद्र नाथ भी जहाँ तक संभव था तत्परता के साथ परिवार की व्यवस्था करने लगे। मकान के अधिकार को लेकर के उनके संबंधियों ने जो मुकदमा चलाया था, उसका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। खैर, उक्त मुकदमे की अपील में भी नरेंद्र की विजय हुई। इसके साथ दिसंबर महीने के शुरू में संसार के साथ सभी संबंधों को छिन्न कर वे स्थायी रूप से मठ में आकर के रहने लगे। बाबू बलराम बासु, नाट्य सम्राट गिरीश चंद्र बोस, श्री रामकृष्ण वचनामृत के मूल लेखक महेंद्र नाथ गुप्त और सबसे बढ़कर सुरेंद्र नाथ मित्र प्राण प्रण से नवीन सन्यासियों को सहायता और उत्साह प्रदान करने लगे।
2: बिना भोजन, बिना बिस्तर, सभी प्रकार से शारीरिक सुख की उपेक्षा करते हुए दिव्य भाव में विभोर कुमार सन्यासी गण श्री गुरुदेव के पवित्र चरित्र और उपदेशों की चर्चा दर्शन शास्त्र, वेदांत, पुराण, भागवत आदि का पाठ तथा जप, ध्यान, कठोर तपस्या आदि में रत हो गए। श्री गुरुदेव के मृत्यु से व्यथित भक्तों के लिए अब नरेंद्रनाथ ही एकमात्र सहारा, आशा और भरोसे के केंद्र थे।
0: वे ही नव प्रतिष्ठित मठ के माता, पिता, रक्षक, भृत्य, पालक सभी कुछ थे। कभी धर्म चर्चा में लगे हुए भाइयों को डरा धमका कर भोजन करने के लिए बाध्य करते, कभी किसी को जबरदस्ती स्नान कराते, तो कभी लगातार रात भर से जागते हुए किसी ध्यान मग्न सन्यासी को बलपूर्वक पकड़कर बिस्तर पे लाकर के सुला देते। यदि वे इस प्रकार से प्रत्येक का ख्याल न रखते तो उनमें से कई कठोर तपस्या के कारण शरीर छोड़कर चले गए होते।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आजादी का महापर्व, आजादी का महापर्व, प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति एवं साथी कलाकार मुंबई द्वारा भव्य सांगीतिक प्रस्तुति।

0: 15 अगस्त 2026 को शाम 6:30 बजे हंस ध्वनि सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश निशुल्क।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: ये मेरा इंडिया।
1: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब आपको बता देते हैं कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सुबह 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम जीवन सौरभ, अक्षय निधि कार्यक्रम आप सुन सकेंगी 7:10 से। भक्ति गीतों का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम भक्ति संगीत में 7:20 से।

वतन का राग कार्यक्रम में केंद्रित होगा भीष्म साहनी पर, सुनिएगा 8 बजे से, और 8:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम बाल सभा। टेक गुरु कार्यक्रम सुनिएगा 9 बजे से, 9:30 पर प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। देश के संस्थान ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 10 बजे से, 10:30 पर सुनिएगा सूरज प्रसाद सिंह पर केंद्रित कार्यक्रम आजाद हिंद। नगर से जुड़ी कुछ खास खबरें सुनिएगा परिक्रमा में 11 बजे से, और रेडियो रिपोर्ट आप सुन सकेंगे इसी के बाद ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव के दूसरे दिन की। 11:30 पर सुनिएगा काव्य कुंजन में रश्मि रथी का भाग 9। ये जानकारी कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बजे हैं। इसी के साथ हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।